0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, चाहे दी गई राशि कितनी भी हो। वित्त मंत्रालय ने कहा गया है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर ढांचे के तहत आने वाले लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये जानकारी दी।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान अर्बन मोबिलिटी सहित कई उपलब्धियां हासिल हुई हैं। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन ने कल नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में एक शताब्दी सेवा के 100 कार्यों में आरएसएस नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल डॉ तमिलिसाई सौंदरराजन ने लिखी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा कि यह पुस्तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी भर की सेवा, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करती है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की सेवा पहल गरीबों, हाशियों पर पड़े लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंची है, जिनमें श्रमिक, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि को 3

0: 1,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए करने की घोषणा की है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में दिया गया। उन्होंने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवाएं जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का 22वां संस्करण कल उत्तराखंड के औली में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह औली परीक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। ये अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच अंतर संचालन व्यवस्था को मजबूत करना, उभरती चुनौतियों का समाधान करना और द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर इसे मध्य और दक्षिण अमेरिका की रूढ़िवादी विचारधारा वाली सरकारों को देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने संसद को बताया कि स्लोवाकिया, नॉर्थ मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता को पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को देने पर विचार किया जाएगा। विदेश विभाग के अनुसार इस धनराशि का प्रयोग अमेरिका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। सुरक्षा बलों का संयुक्त दल खोज और बचाव अभियान चला रहा है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। क्रिकेट में भारत ने कल दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स से आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

0: जय हिंद जी। संधु साहब जय हिंद।
1: जय हिंद जी। जय हिंद। रंगा सिंह जी सुनाओ की हाल चाल है।
0: हाले चाले वाह वाह भली, तुसी अपना सुनाओ।
1: साढ़े बढ़िया
0: बढ़िया ही होना चाहिए, क्योंकि किसान का जो हाल चाल ठीक होगी ना तो फिर ताइयो अपने काम कार वाल खेती बाड़ी वाल चंगी तवज्जो दे सकदा।
1: गल ना इदा उल्ट पुलट भी होंगी है रंगा सिंह जी।
0: वो किवें
1: भी जे फसल बाड़ी वधिया होवे
0: जी
1: फिर बंदे दा काम करन भी जी करता है।
0: बिल्कुल सही गल है।
1: हाँ जी। ते जे अगों कुछ नज़र ना आए
0: ते
1: फिर बंदा कहना क्यों मेहनत करनी इन्नी।
0: देखो गल ये आ कि एवं नहीं एक कहावत बनी कि मेहनत अगे लक्ष्मी ते पखे अगे पौ। मेहनत करांगे ते देखो वधिया फसल दा झाड़ जिहड़ा आपां लै सकदे आ, चाहे कोई भी फसल होए, सौनी होए, हाड़ी होए या फिर सहायक धंधे क्यों ना हो।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो पक्की गल है। देखो हुण तां समां देखो रंगा सिंह जी, ये है कि रोजाना की आमदन के नाल नाल असीं अपने घर दीआं लोड़ां दा भी ध्यान रखिए और फसली भिन्नता वल भी ध्यान दईए।
0: बिल्कुल,
1: ये नहीं भी आपां कणक झोना कणक झोने वाली ध्यान दईए, होर बहुत सारियां फसलां ने
0: जी
1: जिन्हें असीं बीज सकदे हां विच थोड़े वक्फे दीआं, ते उहदे नाल की हुंदा है कि इक तां देखो कि फसली भिन्नता आ गई, एक सानू वाधू जी आमदन मिल जाती है।
0: बिल्कुल, वेखो गल ये आ कि लागत की जिहड़ी भरमार पै चुकी आ ना, कि आपां लागत ज़्यादा लाउण डए होए आमदन अपनी उत्थे दी उत्थे खड़ी आ। इस नूं आपां जे जोड़ दीए कि खेती जिहड़ी खड़ोत बन चुकी आ, सो इस नूं या इस दे चक्कर नूं तोड़न वास्ते आपां नूं होर फसलां की भी बिजाई जिहड़ी आ ओह नाल दे नाल करनी पऊगी।
1: हुण जिदां देखो गल करदे हुंदे आ कि तेल बीजां दी साडे मुल्क च काफ़ी घाट, कई बार बाहरों भी मंगाने पैंदे आ, वह फिर साडा जिहड़ा महंगे भी पैंदे आ।
0: बिल्कुल,
1: जे किसान वीर ध्यान देण ते हुण तां इन्ना

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से यह आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर के 6:40 हो रहे हैं। आओ सरवण करिए मानस गान प्रोग्राम विचों श्री रामचरित मानस के लड़ीवार पाठ की 198वीं कड़ी।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्रीराम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्रीराम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है।

0: शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम पेश कीता जाएगा। आज दे इस प्रोग्राम विच काम दियां गल्लां दे नाल मेरी खेती फलां दी पौष्टिक बगीची विशा बारे जानकारी देंगे डॉक्टर रचना अरोड़ा। 7:45 ते पंजाबी वार्ता सुनोगे, पंजाबी सत्थ दा निकास ते विकास। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुखविंदर सिंह ढिल्लों। रात 8 जापान च होन जा रही एशियाई खेडा बारे प्रोग्राम चेयर्स फॉर भारत 20th एशियन गेम्स 2026 सुनोगे साढ़े दिल्ली केंद्र तो। इस तो बाद 8:30 जिंदगी हसीन है प्रोग्राम पेश किया जाएगा। रात 9 सुनोगे न्यूज़ एट 9 ते 9:15 स्पॉटलाइट। रात 10:02 ते प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश पेश किया जाएगा। इस दे नाल ही समाचार भी रोजाना वांग अपने मिथे समय अनुसार प्रसारित किते जाएंगे। एसी साडे अज प्रसारित होन वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा तुसी साडे प्रोग्राम न्यूज़ ऑन AIR ते वेव्स ऐप राही भी सुन सकदे हो। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले सवेर दे 6:55 हो रहे ने। आओ सुनिए संस्कृत विच समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। विदेश मंत्रालयेन उक्तं यत् नवदिल्ल्यां सद्य एव सम्पन्नस्य 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अवसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तथा चीनदेशस्य राष्ट्रपतेः शी जिनफिंग इत्यस्य च मध्ये जाते संवादे अनेके विषयाः चर्चिताः। ह्यः सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री भारतस्य चिन्ताः प्रस्तुतवान् तथा उभाभ्यां पक्षाभ्यां पारस्परिक मूलचिन्तां प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शनीया इति प्रतिपादितवान्।
2: चर्चाओं के दौरान कई मुद्दे सामने आए। दोनों देशों के बीच में जब बात हुई लीडरशिप लेवल पे, प्रधानमंत्री ने भारतीय चिंताओं को भी रेखांकित किया, उनका भी उल्लेख किया और इस बात को रेखांकित किया कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के मुख्य चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और 3 पारस्परिक सिद्धांतों यानी कि पारस्परिक हित, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक संवेदनशीलता द्वारा निर्देशित होना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता उक्तवान् यत् विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य उपवेशनस्य अनन्तरं सऊदी अरब देशस्य विदेश मंत्रिणा सह अपि उपवेशनं कृतवान्। तत्र क्षेत्रीयानां अन्ताराष्ट्रियानां च घटनाक्रमाणां विषये चर्चा जाता। सऊदी अरब देशे सद्यः एव जाते आक्रमणे भारतेन निन्दा कृता। षड् राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः यमुना नद्याः पुनरुद्धाराय किशाऊ बहुउद्देश्य बंध परियोजना संबद्ध संधौ हस्ताक्षराणि कृतानि। एतेषु राज्येषु उत्तर प्रदेशः, उत्तराखण्डः, हिमाचल प्रदेशः, हरियाणा, राजस्थानः अथ दिल्ली च सम्मिलिताः सन्ति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः उक्तवान् यत् केन्द्र प्रशासन

प्रोग्राम चल रहा सोनी सवेर। प्रोग्राम च अगला गीत मोहित चौहान ते अलीसा मंडोसा दी आवाज़ में।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सितंबर 2022 विच एक मता पास करके इस दिन नूं मनाउण दा ऐलान कीता सी। ते पहली बार ये दिन 16 सितंबर 2023 नूं मनाया गया सी। हुण तुहाडे मन विच ये ख्याल जरूर आवेगा कि आखिरकार इस दिन मनु मनाउण लई 16 सितंबर नूं ही क्यों चुनिया गया। ते ओ इसलिए क्योंकि 16 सितंबर 1977 नूं जर्मन डॉक्टर आंद्रियास ग्रुंडजिंग ने ज्यूरिक विच दुनिया की पहली सफल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी की सी। ते इस प्राप्ति ने दिल दे रोगां दे इलाज का सारा नज़रिया ही बदल के रख दिता सी। इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिल दे इलाज दी अजिही तकनीक है जिथे ओपन हार्ट सर्जरी यानी छाती दा वड्डा चीरा लगाए बिना ही दिल दी बंद नाड़ां दा इलाज कीता जांदा है। एक बरीक जी नाली जिसनों कैथीटर कहिंदे है उसकी मदद नाल खून दियां नाड़ियां राहीं दिल दे रोगां दी जांच ते इलाज कीता जांदा है। इस विच एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वॉल्व रिपेयर, जमांदरू दिलां दे नुक्स जिवें कि दिल दे सुराख बंद करन दियां विधियां आउंदियां ने। इस दिन नूं मनाउण दा उद्देश लोगां विच दिल दियां बीमारियां बारे जागरूकता पैदा करना, घट चीर फाड़ वाले आधुनिक तकनीकां दे लाभ दसना ते समय सिर जांच ते हार्ट अटैक दौरान तुरंत मैडिकल सहायता दी महत्ता नूं समझाउणा है। दोस्तों, सियाणे कहिंदे आ ना कि परहेज नालों इलाज चंगा। अपने दिल ते शरीर दा बहुत सारा ख्याल तुसी सारिआं ने रखना है ते इसलिए रोज़ाना कसरत, संतुलित खुराक ते तनाव मुक्त जीवन तो वधिया होर की हो सकता है।

करके इस दिवस की नींह रखी। वैसे इस दी शुरुआत सितंबर 2023 विच हवाना विखे G77 अते चीन सम्मेलन की विचारधारा विचों हुई सी। इस दिन नूं मनाउण दा उद्देश सिर्फ नवीआं काढ़ां दा जशन मनाउणा ही नहीं सगों यह यकीनी बनाउणा है कि तकनोलॉजी का लाभ समाज के हर व्यक्ति तक पहुँचे, अमीर ते विकासशील देशां विचाले डिजिटल पाड़ा जिहड़ा ना उसनूं हटाया जावे, गरीबी सेहत सिक्ख्या ते जलवायु च बदलाव वर्गियां गंभीर चुनौतियां दा हल विज्ञानिक सोच नाल कढ़िया जावे ते विकासशील मुल्क आपसी ज्ञान साधन ते नवीआं खोजां नूं इक दूजे नाल सांझा करन तां जो सारे रल मिल के अगे वध सकन। दोस्तों, विज्ञान उदों ही सार्थक हुंदा है जदों मनुखता दे काम आवे ते इह दिन वी सानूं इह संदेश दिंदा है कि असीं विज्ञानिक सोच अपनाईए, नवीआं खोजां नूं उत्साहित करिए ते तकनोलॉजी दी वरतों मनुखी भलाई लई करिए।

0: ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, 8:15 ਵਜੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ 8:30 ਵਜੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों के लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमरीका संयुक्त युद्धाभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों के लिए 0 व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति से व्यापारी लेन देन का लगभग 96% हिस्सा प्रभावित नहीं होगा। छूट दर केवल 2000 रुपए के अधिक के निर्दिष्ट व्यापारी लेन देन पर ही लागू होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुल छूट दर संग्रह के 5% से छोटे व्यापारियों को यूपीआई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 प्रति लेन देन होगी। वहीं व्यक्ति से व्यक्ति व्यापारी P2PM श्रेणी के तहत UPI QR कोड के माध्यम से हर महीने 1,00,000 रुपए तक प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों को सभी लेन देन पर अनिवार्य रूप से 0 MDR की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा व्यक्तियों के लिए मुफ्त UPI लेन देन पर कोई मासिक सीमा, लेन देन की संख्या की सीमा या अलग अलग स्रोतों के आधार पर कोई कैप नहीं है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गन्ना किसानों और चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
3: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर

0: वेस्ट फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को एफआरपी का लगभग 99.5% का भुगतान हो चुका है और एफआरपी भुगतान के मामले में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने 26 हेक्टेयर बंजर भूमि केंद्रीय गृह मंत्रालय को निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह भूमि अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए दी गई है।
2: मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख सांस्कृतिक, धार्मिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा है। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विशिष्ट अतिथि और पर्यटक लगातार वहां आ रहे हैं। ऐसे में इस इलाके की सुरक्षा संवेदनशीलता काफी बढ़ गई है। खन्ना ने कहा कि इस क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से अयोध्या में एनएसजी की तैनाती स्थायी तौर पर जरूरी हो गई है। एनएसजी केंद्र की स्थापना राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और अयोध्या में किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने में सहायता करने के उद्देश्य से की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए निर्धारित मासिक प्रोत्साहन राशि 3,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दी है। एक रिपोर्ट।
3: ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मासिक प्रोत्साहन राशि में वृद्धि आशा कार्यकर्ताओं के योगदान को मान्यता देने और उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सुश्री गुप्ता ने कहा कि इससे उनके काम के प्रति उत्साह बढ़ेगा और उन्हें अपनी सेवा जारी रखने में मदद मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली में 6,725 आशा कार्यकर्ता कार्यरत हैं। आमतौर पर प्रत्येक आशा कार्यकर्ता लगभग 2,000 लोगों या 400 परिवारों से जुड़ी होती हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले 10,000 छात्रों के लिए छात्रावास बनाने का भी निर्णय लिया है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया गया। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600 सैनिकों ने भाग लिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अभ्यास औली के साथ साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है।
6: इस अभ्यास का उद्देश्य पर्वतीय और अर्धपर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त सैन्य अभियानों के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता बढ़ाना है। इसमें पैदल सेना आधारित अभियानों पर विशेष जोर दिया जाएगा। अभ्यास के दौरान दोनों सेनाएं परिचालन पद्धतियों का आदान प्रदान करेंगी और संयुक्त योजना एवं संचालन को मजबूत करेंगी। प्रशिक्षण में निगरानी और टोही के लिए ड्रोन तथा स्वायत्त प्रणालियों का उपयोग किया गया है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधुनिक हथियार प्रणालियों का प्रदर्शन भी होगा। दोनों सेनाओं के विशेषज्ञ उभरती तकनीकों और बहुक्षेत्रीय युद्ध से जुड़े विकास पर विचार भी साझा करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बिहार जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करेंगे और प्रभावित किसानों के परिवारों से भेंट करेंगे।
7: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने दौरे की शुरुआत पटना के दिघवारा और मनेर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वेक्षण से करेंगे। इसके बाद वे हाजीपुर के तरसिया और सरायपुर गांव का दौरा करेंगे। पटना में श्री चौहान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। बिहार में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य के 15 जिलों में लगभग 50 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। अभिषेक दास, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है।

0: से दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ ही सभी भारतीय सामान न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त मिलेंगे। न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब अमरीकी डॉलर का निवेश करने पर सहमति जताई है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि भारत में अपनी मजबूत आर्थिक नींव, निजी क्षेत्र की गतिशीलता और बढ़ती तकनीकी क्षमताओं के बल पर वैश्विक विकास को गति देने की क्षमता है। कोष के उप प्रबंध निदेशक नाइजेल क्लार्क ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया। उन्होंने ये बयान भारत की 5 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद जारी किया है। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा और नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी से मुलाकात की थी। अमरीकी सरकार यूरोप और मध्य पूर्व के देशों को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सैन्य सहायता में कटौती कर मध्य और दक्षिण अमरीकी सरकार को देगी। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्लोवाकिया, उत्तरी मैसिडोनिया, ट्यूनिशिया और इराक के लिए स्वीकृत 5,20,00,000 डॉलर की सैन्य सहायता पनामा, पेरू, इक्वाडोर और कोलंबिया को दी जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग अमरीका के आसपास मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद से निपटने और पनामा नहर की सुरक्षा के लिए किया जाएगा। भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। नई दिल्ली में कल अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत को 160 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारत ने 15वें ओवर में 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत की तरफ से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 57 रन बनाए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच कल दिल्ली में ही खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी आज ऐसी ही स्थिति रहेगी। बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। वहीं केरल में एर्नाकुलम, पत्तनमथिट्टा और इडुक्की जिलों में तेज वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में तटीय इलाकों में ऊंची लहरें उठने की भी चेतावनी दी गई है। नेपाल में बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,399 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में और शव मिलने के बाद ये संख्या बढ़ी है। करीब 5,170 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 13,742 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 6 राज्यों के बीच हुए जल समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की गागर में बढ़ेगा जल, यमुना भी होगी स्वच्छ। पत्र के अनुसार 32 किलोमीटर लंबी झील बनवाने का प्रस्ताव, 97,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दैनिक जागरण के अनुसार 8 दशक से लंबे किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों के बीच समझौता। अमर उजाला लिखता है, 90% पैसा केंद्र का, 4 राज्यों को पानी, 2 को बिजली का लाभ। जनसत्ता का शीर्षक है, निर्यात की छलांग, व्यापार घाटा कम, चालू खाते ने लगाया गोता। पत्र के अनुसार निर्यात 26.12% बढ़कर $44 अरब हुआ। लोकसत्य के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमर्श 2026 सम्मेलन में कहा, AI और ड्रोन से बदलेगा भविष्य का युद्ध, रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत की आधारशिला। पंजाब केसरी ने बाल सुरक्षा जरूरी शीर्षक से लिखा है, भारतीय कानून के सामने झुका बेटा, बच्चों के यौन शोषण की सूचना देने को राजी। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, ट्रंप प्रशासन को झटका, अमेरिका में नए स्टूडेंट वीजा नियमों पर कोर्ट की रोक, डाक मतपत्र पर रोक का ट्रंप का प्रस्ताव खारिज। राजस्थान पत्रिका ने सर्वोच्च

0: न्यायालय का बड़ा निर्णय देते हुए लिखा है। डॉक्टर उपभोक्ता संरक्षण कानून के दायरे में ही रहेंगे, 31 साल पुराने फैसले में दखल देने से इनकार। फैसले से मरीज चिकित्सा सेवाओं में कमी पर उपभोक्ता आयोग में जा सकेंगे। दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, उत्तराखंड में केदारनाथ पैदल मार्ग पर अब हेलमेट के बिना एंट्री नहीं। गिर रहे पत्थर, 100-100 के जत्थे में जा रहे श्रद्धालु, 21 किलोमीटर रास्ते पर 13 डेंजर जोन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, लोगों के बीच किसी भी राशि के UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। महाराष्ट्र सरकार ने 2025-26 पेराई सत्र में किसानों की लंबित भुगतान के लिए चीनी मिलों को रियायती ऋण देने का निर्णय लिया। दिल्ली सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए मासिक प्रोत्साहन राशि 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए करने की घोषणा की। राष्ट्रीय राजधानी के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 10000 विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण भी स्वीकृत। भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास उत्तराखंड के औली और राजस्थान के महाजन रेंज में शुरू। न्यूजीलैंड संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लागू करने का विधेयक पारित किया। और भारत ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government says there will be no charges at all for person-to-person UPI transactions, irrespective of amount transferred. Maharashtra government decides to provide soft loans to sugar mills to clear pending dues of farmers for 2025-26 crushing season. Delhi government decides to double monthly incentive for ASHA workers from 3,000 to 6,000 rupees to also build hostels for 10,000 students studying in colleges and universities across the national capital. India-US joint military exercise Youth Abhyas begins at Oli in Uttarakhand and Mahajan field firing range in Rajasthan. New Zealand's parliament passes legislation to implement its free trade agreement with India. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 7 wickets in the second T20 international to take unassailable 2-0 lead in the 3-match series. Government has clarified that there will be no charges at all for person-to-person P2P UPI transactions, irrespective of the amount transferred. Finance Ministry said that payments to merchants up to 2,000 rupees, along with transactions covered under the Zero Merchant Discount Rate (MDR) framework for small merchants, will also remain free. The Ministry said that consequently, approximately 96% of all P2M transactions will remain unaffected. It said that MDR will apply only to specified merchant transactions above 2,000 rupees. The ministry said that MDR is neither a tax nor a charge collected by the government or National Payments Corporation of India, NPCI. It is distributed among payment ecosystem participants, including banks and payment application providers, to support the operation and continued expansion of the UPI ecosystem. NPCI has said that a revised UPI merchant discount rate framework has been introduced on select merchant transactions effective from the 15th of next month, while keeping UPI free for consumers. Our correspondent reports that a dedicated fund for promoting use of UPI by small merchants will be set up with contribution of 5% of total MDR collections.
3: The Finance Ministry said that charges will apply only to person-to-merchant transactions exceeding 2,000 rupees. It said that UPI app providers are explicitly prohibited from levying platform fees or hidden charges. The Ministry said that banks have been advised to ensure that merchants do not pass merchant discount rate charges to customers for UPI payments. A nominal MDR of 0.4% will be levied on person-to-merchant transactions about 2,000 rupees, while for high-value transactions of 75,000 rupees and above, MDR will be capped at 300 rupees per transaction. The ministry informed that small merchants receiving up to 1 lakh rupees per month via UPI QR codes under the person-to-person merchant classification will continue to enjoy mandatory zero MDR for all transactions. Akshit Vaidyan, Akashwani News, Delhi.
2: Maharashtra cabinet has approved soft loans of around 750 crore rupees for cooperative sugar mills to clear pending fair and remunerative price (FRP) dues to sugarcane farmers.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। भारत ते अमरीका दरम्यान सांझा फौजी अभ्यास कल उत्तराखंड दे औडी विखे शुरू होया। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत नाल मुक्त व्यापार समझौते नूं लागू करन लई कानून पास कर दिता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा फंड का कहना है कि भारत कोल अपनी मजबूत आर्थिक बुनियाद ते निजी खेतर की गतिशीलता के बल ते विश्व विकास नूं अगे वधाउण की समर्थ है। ते भारत ने दूजे 2020 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान नूं 7 विकटां नाल हरा के 3 मैचों की लड़ी में 2-0 की जेतू लीड लै ली है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपीआई लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे अधीन आने वाले लैण देण और व्यापारियों 2,000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चार्ज सिर्फ 2,000 रुपए तो वधे व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते ही लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप प्रदाता प्लेटफॉर्म फीस या लुकवे खर्चे नहीं वसूल सकेंगे। मंत्रालय ने बैंकों को हदायत की है कि वो ये यकीनी बनाएं कि व्यापारी यूपीआई भुगतान राही मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का बोझ काका ते ना पाउन। 2,000 रुपए तो वधे व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते 0.4% दी मामूली MDR दर लागू होगी, जबकि 75,000 रुपए अते इस तो वधे उच्च मुल वाले लैण देण ते MDR दी वध तो वध सीमा 300 रुपए प्रति लैण देण निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने दसिया कि व्यक्ति तो व्यापारी श्रेणी तहत यूपीआई QR कोड राही प्रति महीना 1,00,000 रुपए तक की रकम प्राप्त करने वाले छोटे व्यापारियों लई सारे लैण देण ते 0 MDR की सहूलत जारी रहेगी। इस तो अलावा रेलवे, दूर संचार, बीमा, ईंधन अते खेतीबाड़ी समगरी के खेतर विच 2,000 रुपए तो वध दे लैण देण ते 5 रुपए प्रति लैण देण की 1 साल MDR दर लागू होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि व्यक्तियों लई मुफ्त UPI लैण देण ते कोई मासिक कोटा लैण देण दी गिनती दी सीमा जां वक वक पदरां वालियां सीमावां लागू नहीं होंगियां। राजेश बाली, आकाशवाणी खबरां, जलंधर।
0: मंत्रालय अनुसार व्यक्ति ते व्यापारी विचकार होण वाले कुल लैण देण विचों लगभग 96% लैण देण प्रभावित नहीं होणगे। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि MDR ना तो कोई टैक्स है ते ना ही सरकार जां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वालों लाया गया कोई चार्ज। इस नूं UPI दे संचालन अते निरंतर विस्थार विच सहायता लई बैंकां ते भुगतान एप्लीकेशन मुहैया करवाउण वालियां विचकार वंडिया जांदा है। भारत अमरीका सांझा फौजी अभ्यास कल उत्तराखंड के औली विखे शुरू होया। उद्घाटनी समारोह औली विखे विदेशी सिखलाई केंद्र विखे आयोजित किया गया। यह अभ्यास राजस्थान विच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विखे भी किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश दोहां फौजां विचकार आपसी तालमेल नूं मजबूत करना, उभरदियां चुनौतियां नाल निपटना अते

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओम्बड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: प्रभजोत जी, मैं सुनिया वसदे वेड़े प्रोग्राम च कुछ तब्दीली हुई है।
3: बिल्कुल सुखजीत जी, तब्दीली तो हुई है।
2: ओ केड़ी तब्दीली है भाई?
3: देखो जी, जेड़ा प्रोग्राम आंदा सी ना बुधवार नु, ते ओ हुन हो गया शनिवार नु।
2: यानी कि झांजरां दे बोर हुन शनिवार छन क्या करनगे?
3: बिल्कुल जी, ते जेड़े शनिवार नु प्रोग्राम सी ना, मेरी कलम तो सांझ शक्ति रूपा, ए तुसी सुन सकोगे बुधवार नु।
2: यानी कि बुधवार दी झांजरां दे बोर वाली फरमाइश शनिवार नु छन क्या करेगी, ते शनिवार दे सारे सिलसिले असी बुधवार पेश करया करांगे
3: जी।
4: प्रसार भारती, एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन विच कपड़े पाउन तो पहला चेक नहीं कीता सी की?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। हुण नेड़े दे बैंक जाके पाटे पुराने नोट बदलो। जे बैंक मना करे ता आरबीआई दे ओंबड्समैन नु शिकायत करो। आरबीआई कहंदा है जानकार बनो सचेत रहो।
2: प्रोग्राम चल रहा है जी महक पंजाब दी। प्रोग्राम च आखरी गीत मन्नत नूर दी आवाज़ च।

नहीं दोस्तो, जिंदगी एक अजिही किताब है जिसका हर सफा अपने आप विच एक कहानी है। किते खुशियां दे रंग ने, किते गम दियां परछाइयां, ते किते मिलाप दी मिठास, ते किते विछोड़े दी टीस। कई बार असीं अपनी जिंदगी दे कुछ सफ़े बड़े चाह नाल पढ़दे हां, ते कुछ सफ़ियां नूं पढ़दे हां पुरानियां यादां साडे सामने आ खड़दियां। पर शायद जिंदगी दी खूबसूरती भी इसे विच है कि इस विच हर तरह दे अहसास शामिल ने। गज़लां दे प्रोग्राम विच अगली गज़ल पिनाज़ मसानी दी आवाज़

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। प्रोग्राम शुरू हो गया जी। हेलो फरमाइश आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते प्रोग्राम लेके हाजिर हो गई है जी। तुहाडी होस्ट ते दोस्त देविका। भाई दोस्तों, तुहानू सारियां नू पता है कि इस प्रोग्राम विच तुसी सुन सकते हो अपने पसंदीदा हिंदी फिल्मी गीत। तो इसलिए करना की है वह भी मैं तुहानू दस दिनी हाँ। भाई इसलिए तुसी चुकना है फोन ते मिलाना साडा नंबर। जी हाँ, साडा नंबर है 2342-143। ये नंबर मिला के पहुँच जाना तुसी साडे स्टूडियो, साडे नाल करनियां गल्लां बातां, सानू दसनी अपनी फरमाइश। तो जेड़े कॉलर सानू जलंधर तो बाहरों कॉल करनगे ना, वो जलंधर का एरिया कोड लगाना ना भुलन। जलंधर का एरिया कोड है जी 0181। तो जो तक असी अपने पहले कॉलर का इंतजार करते हैं ना, आओ तुहानू प्रोग्राम विच सुनवाने लता मंगेशकर ते किशोर कुमार का गाया एक गीत।

0: साथ
1: बिल्कुल
0: अरे पहुंचा देंगे उसके कानों तक हम ये देश।

0: वक्त की है रात तेरी है और वक्त की है रात तेरी है।
1: किशोर कुमार महेंद्र कपूर ते साथियां दे गाए इस गीत तो बाद साढ़े अगले कॉलर भी साढ़ा नंबर 43-143 मिला के साढ़े को ना पहुंचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने, कितों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हेलो
2: हां जी, प्यार भरी सत श्री अकाल जी सारे आकाशवाणी परिवार को।
1: सत श्री अकाल जी, कौन

0: लता मंगेशकर दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश विच साढ़े अगले कॉलर भी साढ़ा नंबर 2342173 मिला के पहुंच गए ने। आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: हैलो नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने।
1: फरमाइश
0: दस दो, अज केड़ी लेके आए हो, केड़ी फरमाइश
1: पूरी करनी है। फिल्म है जी रफ्तार, मैं तेरी हीर हूँ। बहुत मेहरबानी
0: जी। जी जरूर, तेरे गीत आएगा तुहाडे रेडियो सेट ते, पर एक छोटे जे अंतराल तो बाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने
1: लिए। ओके जी, बाय बाय।
2: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: काली ने कचरा कर दिया सबके सामने।
1: वे सुन खानिया, सुन जानिया।
0: रानी की बच्ची इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी थी।
2: अरे बुद्धू, बापू ने कहा है

0: मोहम्मद रफी ते आशा भोसले दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे कोल अगले कॉलर भी आ गए ने, आओ जानते हैं कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो
1: सतिवाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने?
1: मैं जैब सिंह खैरा पिंड कलारा जी नाभा जिला पटियाला से बोल रही हूं।
0: जैब सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने? ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲਿਆਏ ਹੋ?
1: तब से तुम्हें देखा है आंखों में तुम हो, अंधी यही कहते हैं आंखों में तुम्हें तुम हो।
0: लो जी एक गीत आ रहा है तो हाडे रेडियो सेट ते, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने लिए।

0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
1: नमस्कार जी, राम सिंह बोलता जी।
0: राम सिंह जी कितों बोल रहे हो?
1: जी मंडी लादुका नेड़े जिला फाजिलका तो जी।
0: मंडी लादुका तो राम सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
1: वधिया वधिया मैडम जी, तुसी सुनाओ
0: जी। बहुत वधिया, साडा भी हाल चाल।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: ते आज सुनाओ केड़ी फरमाइश पूरी कर दी है, केड़ा गीत सुनना चाहते हो?
1: असी जी मैडम जी गदर फिल्म दा।
0: गदर फिल्म दा केड़ा गीत?
1: मैं निकला गद्दी लेके लाहौर आया।
0: लो जी ये गीत आ रहा है तो रेडियो सेट ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने।
1: शुक्रिया जी।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: प्रोग्राम चल रहा जी, हैलो फरमाइश आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो। प्रोग्राम च साडे अगले कॉलर भी साडे कोल आ पहुंचे ने। आओ जानते हैं कौन आए ने, कितों आए ने ते केड़ी फरमाइश लेके आए ने। हैलो हैलो
2: सत श्री अकाल जी।
1: कौन बोल रहे ने ते कितों बोल रहे ने?
2: हैलो
1: हैलो हां जी, कौन बोल रहे
2: जी? हरचरण सिंह रखरा बोल रहे हैं जी।
1: हरचरण जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल ने?
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी
2: बहुत देर बाद कॉल लगी है।
1: अच्छा, देर बाद लगी है।
2: गलबात बहुत अच्छी हो रही है
1: जी। जी शुक्रिया।
2: आवाज थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है थोड़ी
1: जी। शुक्रिया,
2: बहुत अच्छी गलबात कर रहे हो
1: जी। शुक्रिया जी। ते हरचरण जी, देर बाद भी कॉल लगी है ते प्रोग्राम दे अखीर दे नेड़े तेड़े ही, मतलब थोड़ा जे ही रह गया टाइम प्रोग्राम च, है ना?
2: हां जी
1: जी, दस दो। हां जी,
2: बंबई का चोर किशोर कुमार दा आवाज विच हसरत ही रही
1: लॉजिक
2: में। वर्डिंग बहुत अच्छी है जी।
1: जी जी,
2: कुछ मेरे दिल दे करीब है। बहुत अच्छा गाना गाया हुआ है।
1: लो जी, तुहाडे दिल दे करीब है ते असी तुहाडी फरमाइश भी पूरी करांगे जिहड़ी तुसी अज सुनन दी कीती है। गीत आ रहा तुहाडे रेडियो सेट ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करन लई।

0: किशोर कुमार दे गाए इस गीत तो बाद प्रोग्राम हैलो फरमाइश च साडे अज दे आखरी कॉलर भी साडे नाल आ पहुंचे ने। आओ जानदे हां कौन आए ने ते कित्थों आए ने। हैलो सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते कित्थों बोल रहे ने। गुरदास जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम विच, की हाल चाल है जी। गुरदास जी उन प्रोग्राम दे खत्म होने च ना बस थोड़े जे मिंट ही बाकी रह गए ने, ते छेती छेती अपनी फरमाइश दस दो केड़ा गीत सुनवा दिए।
1: दिलवाले फिल्म दा कोई भी सुना दे जी।
0: दिलवाले फिल्म दा कोई भी गीत सुनवा दिए। लो जी अपन तुहाडी फरमाइश पूरी कर रहे हैं ते तुहानू सुनवान जा रहे हैं दिलवाले फिल्म चो लिया एक गीत कुमार सानू दी आवाज़ च। उम्मीद है तुहानू पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करन लई।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 11 बजे ने, हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी।

0: यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के P2M लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई क्षेत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
2: सहकारी चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री चौहान राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास के 22वें संस्करण का उद्घाटन समारोह उत्तराखंड के औली में आयोजित किया जा रहा है। औली प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस समारोह में दोनों सेनाओं के 600-600 सैनिक भाग ले रही हैं। ये अभ्यास औली के साथ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भी आयोजित किया जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
3: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित महान साधिका ने अपनी दिव्य स्वर साधना से भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व भर में गौरवान्वित किया। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। केरलम में अन्नाकुलम और इडुक्की जिलों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश चंडीगढ़ दिल्ली में भी आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पैंदी।

0: इस धमाकेदार गीत दे नाल मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ जी प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च सानू कई सारे स्रोतियां ने अपनी फरमाइश दे गीत लिख के भेजे ने। मैसेज दी फॉर्म विच उन्होंने सानू मैसेज किया है जी 94-655-3677 ते। तुसी भी इस नंबर ते मैसेज कर सकदे हो ते दस सकदे हो कि तुसी केड़ा गीत सुनना चाहुंदे हो। असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडी पसंद दे गीत तुहाडे तक लैके आईए। आओ फिर देखते हैं कि साडा अज दा पहला मैसेज किदा आया है। पहला मैसेज आया जी पिंड अलवाणा म्याना तहसील पायल जिला लुधियाना तो दर्शन सिंह अवतार सिंह जबरजंग सिंह चीमा महतबीर सिंह रायपुर दा। अगले साथी ने जी पिंड वड़िंग खेड़ा जिला श्री मुक्तसर साहिब तो भोला सिंह सिद्धू पूरा सिंह गहलोत राजा सिंह वड़िंग मेन बाजार हठूर तहसील जगराऊं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह रजिंदर कौर इंजीनियर अमनदीप सिंह सिमरजीत कौर हठूर पंचकुला सेक्टर 9 तो आशु चुग अश्विनी चुग गोविंद चुग टोनी दीवान लव दीवान राधे भविक टिंगरा सिद्धार्थ नगर दरियापुर बागली तो गजानन येले नवदीप येले विश्वदीप येले अशोक येले। अगले साथी ने श्री फतेहगढ़ साहिब तो रामनाथ अतापुर सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर पिंड नथाना बठिंडा तो हरजिंदर छिंदा ते इस तो अलावा होर भी कई सारे मैसेजेस आए ने। बजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी विश्वकर्मा सोनाली विश्वकर्मा सोनम आशीष विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तो। अगला मैसेज आया जी जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार नरगिस खातून दा। ते अगले साथी ने रिम्पी सिंह पाल सिंह सलीम खान तनवीर कौर पिंड पहेरी तहसील अमलो जिला फतेहगढ़ साहिब तो। आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है मलकीत सिंह दी आवाज विच।
1: हे शावा
2: हे शावा
1: हे शावा
2: ओ हे शावा

प्रोग्राम चल रहा है जी तमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो लिखते ने अगले साथी ने जी रावर करनाल तो ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया बलविंदर सरा गुणतास रमनदीप मनिंदर सरा पिंड मोरजट सिखा हनुमानगढ़ तो अगले साथी ने हीरा मनी वर्मा पारस मनी वर्मा पुष्पेंद्र मनी वर्मा ते नोखेलाल वर्मा दंतरेगी भाटावारा छत्तीसगढ़ तो अगली फरमाइश आई है जी जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति लक्ष्य एंजल नेहा अंजलि शुभम ते लवली ए लिख देने जी पिंड ककरेली तो मखू तो मैसेज है बिरला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी मनीष बजाज दा अगले साथी ने चकला बाजार समाना शहर तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता रानी जिंदल पप्पू स्माइल खुशदिल हंसमुख लाल जिंदल संजीव सुनीता बंटी जिंदल आरजू महक खुशदिल हरजीत कैंत मौजी कलोनी डाबा लुधियाना तो लिखते ने अगली फरमाइश है क्रियांश बगड़िया योगेश बगड़िया ओम बगड़िया रजत ते गरिमा बगड़िया भी गांव बांडीवाला फजिलका पंजाब तो मोहाली चंडीगढ़ तो मैसेज है टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप ते कालका तो लिखते हैं शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज जसपाल भारती वीना भारती सुरेंद्र मनदीप डिंपल युवराज हैप्पी ए लिखते हैं जी साउथ एविनिया अबोहर तो सतीश कुमार बांसल पिंड सावंतखेड़ा नेड़े मंडी डब्बाली तो संजय डींगिया नमन डींगिया अपार डींगिया बागपत उत्तर प्रदेश तो अगले साथी ने मेन बाजार मंडी लादुका जिला फाजिलका तो वरिंदर कालरा रेखा कालरा परीक्षित कालरा ते प्राची ढींगरा भोपालगढ़ राजस्थान तो मैसेज है धर्मेंद्र छीपा कपिल छीपा ईशा छीपा ईशान छीपा ते पूजा परिहार दा सब्जी मंडी झज्जर तो बिट्टू पाटिया रीटा पाटिया रजत पाटिया मयंक पाटिया ते अगले साथी ने मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिट्टू सप्पल प्रभजोत सप्पल मनजोत सप्पल पिंड कबूर शाह खुबन जिला फाजिलका तो बलतेज

जोत हरमन हैरी हैप्पी शिवा गोप प्रेम गोप कपिल गोप शिवांश गोप संगीता गोप लिपित दिवाली गोप पश्चिम सिंह भूम चाईबासा झारखंड तो पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति अरोड़ा ते भूमिका अरोड़ा ते पिंड इस्लामवाला जिला फाजिलका तो मोहनलाल राठी ओम प्रकाश राठी शगुन राठी लवकुश वर्मा शत्रपाल सिंह खंगूरा रजिंदर सिंह खंगूरा बाबू सिंह मेनेवाला काका बट्टी आओ फिर इन सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दें हंसराज हंस दी आवाज़ विच।

साथी ने पिंडते डाकखाना टोरोवाल तहसील बलाचौर जिला नवांशहर पंजाब तो तृप्ता कुमार थांडी डॉक्टर प्रियंका थांडी डॉक्टर प्रशांत थांडी डॉक्टर प्रियम थांडी भामिका ते बाणी थांडी पिंड यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र तो मैसेजर संतोष खड़से ते विनोद खड़से दा अगले साथी ने अनिल कुमार वर्मा माया देवी वर्मा राहुल कुमार विनीत कुमार सोनम वर्मा सदर बाजार कुरावली तो लेवाई छत्तीसगढ़ तो गुलाबदास मानिकपुरी ते राजा दास मानिकपुरी श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव देशमुख जगुताई राजे कुमार सचिव देशमुख प्रथमेश सवर्द हर्षिता सानवी ते प्रणाली देशमुख इलगदने जी मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद तो ते अगला मैसेज है मनदीप सिंह दीपा दा बस स्टैंड जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो आओ फिर एना सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर कर दिया नछत्तर गिल ते जसपिंदर नरूला दी आवाज़ विच।

प्रोग्राम चल रहा जी तवां जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है चंडीगढ़ तो सतीश अनेजा बिमला अनेजा शिफाली शैफी ते मास्टर डेविस दा अगले साथी ने जी जलालाबाद वेस्ट तो सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी ते निमित आहूजा मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तनवी लक्ष्य सोनी मोहन मोहिनी रितिक बलवीर सिंह लिखते हैं जी जिला मुरादाबाद पिंड दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो अगले साथी ने सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गाव्या मल्होत्रा सुच्चा सिंह पाठक ते विनोद पुरी अनारकली बाजार जगराओं तो अगली फरमाइश है जी बेअंत सिंह बस स्टैंड जलाल दीवाल जिला लुधियाना तो लिखते ने निखिल भाटिया नीति भाटिया महरीन भाटिया ब्रैमटन कैनेडा तो इंजीनियर अशोक ग्रोवर परवीन ग्रोवर विक्रमजीत ग्रोवर अनमोल सिंह पवनीत ग्रोवर आदर्श नगर बठिंडा तो बुलहार शाह तो लिखते ने सूरज लोंडे प्राची ते एकलव्य लोंडे मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमा खन्नी मोहम्मद अल्तमश खन्नी रमेश गोड़ ते मोहम्मद शादाब खन्नी ए मैसेज है जी वैष्णव कलोनी सनावत तो मोहम्मद यासीन हाशमी नाजमा बेगम हाशमी मोहम्मद तौसीफ हाशमी मोहम्मद तैमूर हाशमी ते मोहम्मद कलीम अंसारी नवी बस्ती गंज डुडवारा तो अगले साथी ने जी कस्बा बराड़ा जिला अंबाला तो रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका मन्नत गुरकिरत राहुल ते गुरशब्द सिंह राहुल अर्शदीप सुरजीत सिंह ए मैसेज है जी अमरकोट तो संतोष भाकरे सुनैना सुकन्या ते सविता भाकरे लिखते ने शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र तो नरेश मल्होत्रा नीतू लक्ष्य मल्होत्रा कोयल मल्होत्रा नंदचंद मल्होत्रा खैल बाजार पानीपत तो शिवाजी कलोनी रोहतक तो मैसेज है पीयूष सिक्का कोयल सिक्का ते डुगू भाविका सिक्का दा इंद्रजीत मांगा ते नीलम मांगा लिखते ने जी पिट्सबर्ग कैलीफोर्निया यूएसए तो शिवाजी चौक कटनी तो मैसेज है अनिल तामरकर तामरकार अमर तामरकार दिलीप वर्मा राजू रजन रजक संजीव वर्मा विपिन गुप्ता अरुण कनौजिया संजय सोनी पवन यादव सुनील जैन लालू सोना मोना हनी यश ते सौम्या छत्तीसगढ़ दंतरेगी तो भागवत वर्मा शांति देवी नीलावती विनीता रुद्र वर्मा अगले साथी ने सतीश मिगलानी विवान मिगलानी सीमा महावीर संधु मलोट कैंप रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा डॉक्टर मदन लाल वर्मा नजदीक बस स्टैंड भुज हनुमानगढ़ फाजिलका तो पिंड डाका नाखुईया सरवर तो मैसेज है जी रमेश बिल्ला चावला रायजल हेजल विहान चावला आस्था जयश्री संतोष हेमंत दीपक रमेश रिबू बब्बू ते विहू चावला दा अगले साथी ने बिहारी कलोनी शहादरा दिल्ली तो वीना मस्कीन तुलसी मस्कीन आशीष राजा डब्बू सम्राट चंडीगढ़ तो राहुल खुराना रचिता खुराना केशु रिधान खुराना पिंड फ्रांसी हिसार तो मैसेज है राजकुमार दूधी प्रमोद कुमार दूधी पुष्पेंद्र कुमार दूधी दा पिंड फुलो मिठी बठिंडा तो हरजत सिंह ढिल्लो दीपिंदर सिंह गुरवारिस सिंह ढिल्लो भोला सिंह बैनीवाल ते अनीता संधु रोहित संधु रितेश संधु शिखा संधु प्रीतिशा संधु ते मैक्स ए मैसेज लिखते ने जी हरगोबिंद नगर नवां शहर तो सुरिंदर संधु दे नाल आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद आ प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आं

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी ते इस प्रोग्राम च अगला मैसेज आया है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान तो संगीता कवर दातार सिंह शेखावत तुषार सिंह रिंकी शेखावत दा अगले साथी ने मेहम गेट नाभा तो सोमदत्त कैरव ज्योति राणी गुरमंत शंभूदयाल खटक विमला देवी खटक अमरजीत सुंदरलाल योगेश कुमार दीपक कुमार ते कुमारी पूजा खटक ए लिखते ने जी पिंड जाखोद राजस्थान तो अगले साथी ने हुमनजीत सिंह नवजोत कौर हरजोत सिंह रंजीत विहार पटियाला तो अगली फरमाइश आई है जी योगनगर बुढ़लाडा पंजाब तो प्रेमलता मेहता नरेंद्र मेहता सुनीता हनी ते सिमरन मेहता दी अगले साथी ने मोहब्बत नगर कपूरथला तो करनैल सिंह भट्टू गुरफतेह सिंह ते हरनीस कौर पिंड जामका अमृतसर तो लिखते ने योगी टेलर दविंदर सिंह राणा राजा सुखा जोगी ते अमन पलक सोनी अगले साथी ने सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान तो रमेश चंद्र चौहान मोहिनी चौहान कल्पित चौहान गर्वी ते हिमाक्ष एम खलील कुरैशी नुसरत बेगम एजाद कुरैशी ते अरिबा हबीबा लिखते ने जी पटियाला रोड गंज रुडवारा उत्तर प्रदेश तो गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा परवीन तनेजा पायल निताशा ते कैरवी तनेजा नरगोड़ा छत्तीसगढ़ तो मैसेज है मन्नत कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी ते दिशा गोस्वामी दा अगले साथी ने एसएम जावेद गुमला झारखंड तो वड़िंगखेड़ा पंजाब तो मैसेज है मिंटू टोमस पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा दा अगली फरमाइश है बूटा बिंदर सिंधा तालीवाल वाला तो प्रगट सिंह तालीवाल रवि पारसोदी जसवीर कौर ते बलराम राज गुरसिमरन वीर कौर मान हुसनप्रीत कौर मान ये लिखते ने जी अगले साथी ने अमित कुमार

कुमार सरोज सुमन सदूर शहर राजस्थान तो गंज टुडवारा तो शमसुल कमर राही शाहीन फातिमा अदनान खान फैजान खान ते अनु खान ते पिंड कोतला कला अमरजीत तो लिखते ने अमरजीत कंदोला हरजिंदर कौर दीपक अंजलि विजय गोयल बजीतपुर कटियावाली फाजिलका तो अश्विनी गोयल प्रीतम सरपंच गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब तो संत राम चावरिया अंकुश कुसुम ते पूनम आओ फिर इन्होंने सब की रली मिली पसंद आ प्रोग्राम का अगला गीत सुनद मनमोहन वारिस की आवाज़

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਮਕ ਜਲੰਧਰ ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने

0: स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य एमडीआर लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर एमडीआर शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेनदेन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: चीनी मिलों को राहत देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के वर्ष 2025-26 के पेराई सत्र में किसानों की बकाया और लाभकारी मूल्य के भुगतान के लिए सस्ता कर्ज देने का निर्णय लिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह निर्णय कल मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

0: चीनी मिलों के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के सॉफ्ट लोन की मंजूरी देने का निर्णय कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इन ऋणों पर लगने वाले ब्याज का वहन करेगी। श्री फडणवीस ने कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलें मौजूदा गन्ना पेराई सत्र के लिए काम शुरू कर सकेंगी और गन्ने की खरीद कर सकेंगी, जिससे मिलों और किसान दोनों को लाभ होगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से तीन दिन की रूस यात्रा पर है। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: इस विधेयक को विपक्षी लेबर पार्टी के समर्थन से पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 93 और विरोध में 29 वोट पड़े। न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मेलके ने कहा कि समझौते से निर्यातकों को तत्काल और बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये उच्च स्तरीय व्यापार समझौता इस वर्ष के अंत तक लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत भारत के लिए न्यूजीलैंड के लगभग 95% निर्यात पर शुल्क या तो समाप्त कर दिया जाएगा या काफी कम कर दिया जाएगा। इस समझौते के दायरे में आने वाले आधे से अधिक उत्पाद समझौता लागू होने के पहले दिन से ही शुल्क मुक्त हो जाएंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ईरान के साथ संघर्ष को लेकर अमरीकी कांग्रेस में मतभेद बने हुए हैं। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का आखिरी मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मोज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित एमएस सुब्बुलक्ष्मी की जयंती पर आज देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 331 अंक बढ़कर 74,335 जबकि निफ्टी 117 अंक की बढ़त के साथ 23,235 पर था। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आहुन सुनदे हैं प्रोग्राम वसदे वेड़े।

चाहिए। नजम है जी ठंडे बुरज तो। शहीदी दिना दे चलदियां नतमस्तक होण लई फतेहगढ़ साहब पहुंचे हाँ। शहीदी दिना दे चलदियां नतमस्तक होण लई फतेहगढ़ साहब पहुंचे हाँ। ठंडे बुरज की उतली मंजिल उत्ते खड़े हाँ। शीत का प्रकोप है, दंदोड़िका हो रहा है। जिथे तक नज़र जाती है संगत का समुंदर है। नाल आई बेटी ठंड नाल कंबदी है, निग लई मेरे विच विच वड़दी है। अपनी शाल मोढ़ियां तो ला मैं उसके दुआले लपेटदी हाँ। इस पावन धरत का इतिहास उसनू दसन लई बुरज दे एक कोने विच खलो के साकाए सरहंद का जिक्र छेड़दी हाँ। उसनू सुनाउंदी हाँ पोह दियां उन्हां तिन यख रातां दी दास्तान। उसनू सुनाउंदी हाँ पोह दियां उन्हां तिन यख रातां दी दास्तान। जदों बिरध दादी अते दो निक्कियां जिंदां जाबर दा सामना करदियां बुरज विच बंद सी। बर्फीली हवा सहार रहियां सी, धर्म हेत साका करन लई तैयार हो रहियां सी। सहसा नीझ नाल सुनदी मेरी बेटी मैनू टोकदी है। वह अपने अंदरले तर्क नू ठल पाउण लई साके दी दास्तान नू विच ही रोकदी है। मैनू सवाल करदी है पोह दे दिनां विच निग्गे रहण लई उन्हां दे समान विच कोई गर्म कपड़ा नहीं सी। मेरी सोच विच परिवार विछोड़े दी रात उतरदी है। मेरी सोच विच परिवार विछोड़े दी रात उतरदी है। जंगली राहां ते साहिबजादियां नू उंगल ला के तुरी जांदी माता गुजरी दी छवि उभरदी है। मैं साके दी दास्तान जारी रखदी हाँ। सरसा नदी दे कंढे ते वरते भाणे बारे बेटी नू दसदी हाँ। वेखदी हाँ बेटी दियां अखां विच सिल है। शहादत दी ए दास्तान उसदी होंद नू हिला रही है, उसके अंदर हलचल मचा रही है। वह चुफेरे नज़र घुमाउंदी है, गुरद्वारे की मुख इमारत वल सिर नवाउंदी है। दुआले लपेटी शाल ला के मेरे हाथ फड़ाउंदी है ते भरे गले नाल आखदी है इनू अपने कोल रखो, अज इन्नी ठंड नहीं है। भरे गले नाल बोलदी है इनू कोल रखो, अज इन्नी ठंड नहीं है। अगली नज़म जो लैके हाजिर हैं वह है अजे बचा है। हुण जदों कंप्यूटर युग सिखर ते है, AI दा जादू सिर चढ़ बोल रहा है। जदों लगभग हर चेहरा पासवर्ड मंगता है, हर संबंध लॉगिन की म्याद विच सीमित हो गया है, मनुखी कदरां कीमतां दा दुवाला निकल चुका है। हुण जदों अंदरला सप खुड विचों बाहर निकल आया है, अपना फन फैला के डंगल लई तैयार बर तैयार खड़ा है, अजिहे वक्त विच भी किसी दियां अखां विच नमी बची हुई है। दिल बाहां खोली अपने अंदर समाउण लई तैयार खड़ा है। हाले भी जे कोई मनुख बिना नोटिफिकेशन खुश हो जाता है, किसी पुराने गीत की धुन ते रुक जाता है, ख्यालां विच ही अणजाण सफर ते तुर पैंदा है। किसी मानस का मन अजे भी किसी के दुख नूं सुण के संताप हंडांदा है। दिमाग भावें टैक्नोलॉजी की गूंज है, पर दिल अंदर प्रार्थना का शब्द गूंजता है। अजे भी जे कोई मनुख किसी रोंदे नूं वेख के मूँह फेर लंघण दी थां उसका अंदर टटोलदा है, उसके मन दियां परतां फरोलदा है, उसका दुख जान चुपचाप कुछ महसूसता है, तुर अंदर तक हिल जाता है, निशब्द हो सोचता है। जे एक हथ अजे भी दूजे हथ का निघ पालदा है तो मन लेना चाहिदा है मनुखता दे पैर अजे पूरी तरह उखड़े नहीं, जहान अजे भी किते ना किते मनुखी कीमतां ते टिकिया होया है। बंदा अजे पूरी तरह मशीन होण तो बचा होया है, नज़म है जी दर्द वगण दिओ। मन दियां दरारां विच असी किन्ना कुछ भर लैंदे हाँ। पीड़ दे कंकर, यादां दी धूड़, अणकहे शब्दां दा बोझ, फिर चुप दी मिट्टी हेठ सब कुछ दब दिंदे हाँ। बाहर दी हवा नूं अंदर आउणों रोक लैंदे हाँ ते हैरानी नाल पुछदे हाँ घुटन क्यों वध रही है। साह इन्ना भारी क्यों हो गया है, अंदरों अंदरी मुक्की जांदे हाँ। जिंदगी डस्टबिन नहीं कि हर टुट्टिया सुपना इस विच सुटते जाओ। ये जिउंदा जागदा बाग है।

0: इस तरह की बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें बच्चा नीला होता है, उसे कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, इस तरह की होती है। लेकिन ये सारी बीमारियां जो हैं उनको काफी हद तक ठीक किया जा सकता है अगर उनको टाइम से डिटेक्ट कर दिया जाता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो बहुत सारे शेक हैं जो बगैर ऑपरेशन के इंटरवेंशनल टेक्निक से बंद किए जा सकते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता, इंटरवेंशनल टेक्निक जो है उससे बंद किए जा सकते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सर्जरी की लोड पड़ती है
1: जी,
0: नहीं तो ये जो है ना दे होती है। लेकिन इन सभी बीमारियों में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए टाइम से चेक कराना बच्चे को बहुत जरूरी।
1: क्योंकि कई बार बीमारी पता ही नहीं लगती जो तो बच्चा वड्डा हो जाता, थोड़ा खेड़ते खेड़ते डिग पिया या शरीर च कोई कमजोरी आई, फिर असि डॉक्टर दे कोल लेके जाने आ तो उदो सानू इन बीमारियों के बारे पता लगता है।
0: बिल्कुल सही गल है कि इसमें टाइम से अगर बीमारी डिटेक्ट हो जाती है और टाइम से इलाज हो जाता है तो काफी हद तक बच्चे ठीक हो जाते हैं। मेरे कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको मैंने बचपन में ट्रीट किया था, तो छोटे से थे, एक दो साल के थे, अभी वो जो है ना बिल्कुल यंग होके आते हैं। और कई बार ऐसे पेशेंट है उनको देख के बड़ी खुशी होती है कि उनके से शेक थे बचपन में, उसको ट्रीट किया और उसका इलाज हो गया। एक अभी बच्चा आया था मेरे पास में, उसको मैंने जो है करीब 8-9 महीने का बच्चा था जब मैंने देखा था, तो उसको एक साइनोटिक हार्ट डिजीज थी जिसे कहते हैं TGA, कंजेनाइटल ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। वो ऐसी बीमारी है जो कि अगर उसको इलाज ना किया जाए, ऑपरेशन ना किया जाए, तो बच्चा जो है वो नहीं जिंदा रहता। तो उसको एडवाइस किया था सर्जरी के लिए, उसमें सर्जरी होती है आर्टीरियल स्विच ऑपरेशन, मीन्स नाड़ियां उल्टी जुड़ी होती हैं उसमें, जिसमें जो फेफड़ों को ले जाने वाली नाड़ी होती है वो दूसरे चैम्बर में होती है, और जो है बॉडी में ले जाने वाला एओटा होता है वो दूसरे चैम्बर से निकलता है, तो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं। तो उस टाइम उसका जो ऑपरेशन हो गया था, अभी वो करीब करीब जो है 10 साल के बाद में मेरे पास में दोबारा चेक कराने आया
1: जी,
0: उसी के लिए, और बच्चा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इज डूइंग एवरीथिंग, दौड़ रहा है, खेल रहा है, सब कुछ कर रहा है
1: जी, जी,
0: बिल्कुल देख के उसको बहुत खुशी होती
1: जी। डॉक्टर साहब, इस दिल की बनतर के हो जी है, किद्दां दा बनिया होया दिल, सानू किद्दां असी किसे नूं डिस्क्राइब करांगे कि यह दिल है? अक्सर असी कहने होने कि मुट्ठी भर दिल है जी, की सचमुच मुट्ठी दे आकार दा हुंदा है?
0: बिल्कुल सही कहते हैं, ये इसका साइज लगभग मुट्ठी के बराबर ही होता है। ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मींस मांसपेशियां होती हैं, इसमें 4 चैम्बर होते हैं, जो 4 चैम्बर जिसमें ब्लड आता है, राइट साइड चैम्बर होते हैं जिसमें ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो गंदा ब्लड जिसे कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, वो आता है, फिर वो लंग्स में जाता है ब्लड, वहां पे ऑक्सीजनेशन होता है, फिर ऑक्सीजनेशन करके बॉडी जो है पंप करती है लेफ्ट साइड के हार्ट चैम्बर में, और वहां से फिर बॉडी में सर्कुलेशन होता है
1: जी,
0: सब जगह जाता है। ये कुदरत का एक बहुत ही जो है ना नायाब तोहफा है, और काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जो नेचुरल हार्ट है उसको बहुत सारी कोशिश की गई आर्टिफिशियल हार्ट बनाने की, लेकिन अभी तक कोई आर्टिफिशियल हार्ट नहीं बनाया जा सका।
1: बिल्कुल,
0: तो ये नेचुरली बहुत ही एक नायाब शरीर का अंग है
1: जी,
0: जो शुरू से काम करता है, मतलब इसमें कभी कोई रेस्ट नहीं करता। बाकी सारे शरीर के हिस्से देखे उनको रेस्ट करने का टाइम मिलता है, हार्ट को कोई रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिलता,
1: चाहे आप
0: सोते भी हो तब भी चल रहा है, जाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब जगह हर वक्त चलता रहता
1: जी।
0: तो हार्ट का जो है ना ध्यान रखना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, पुराने वेलियां विच कहंदे सी कि जे किसी नूं हार्ट अटैक हो गया तो इहदे बचण दी उम्मीद बड़ी घट है, जां कोई दिल दी बीमारी हो गई ये तो हुण बहुत ही औखा ऑपरेशन होवेगा। पर जिवें जिवें मैडिकल साइंस ने तरक्की कीती है, दिल दे ऑपरेशनां च भी आधुनिकता आ गई है। तुसीं एक नाम लिया सी जी इंटरवेंशनल दा, ठीक है जी, इस तकनीक दे जरिए ऑपरेशन थोड़े सुखाले हो गए ने जी?
0: जी हाँ, अभी जो है ना बीमारियां थी जिनमें जो है ना रिस्क बहुत ज्यादा था, अगर उनको जो है खाली दवाइयों से ट्रीट करते थे तो उसमें जो है ना आगे चल के हार्ट फेलियर होने का रिस्क रहता था, रिकवरी नहीं होती थी। लेकिन नवी टेक्निक से, जिसे इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी या इंटरवेंशनल टेक्निक कहते हैं, जिसमें एंजियोप्लास्टी करते हैं, स्टेंट लगाते हैं, और नई टेक्निक आई है अभी जिसे, उसमें स्टेंट की जगह पे एक दवाई का बैलून होता है, ड्रग बैलून कहते हैं, उससे उसको अंदर से जहाँ पे ब्लॉकेज होते हैं उनको खोल देते हैं, और कुछ दिन के बाद में जो है नाड़ियां अंदर से हील हो जाती हैं, नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिसमें कि स्टेंट की भी लोड नहीं पड़ती, कि बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिसमें 3 नाड़ियों में ब्लॉकेज है, पहले ये सारे पेशेंट जो है ना सर्जरी के लिए जाते थे बाईपास, लेकिन अभी ये नवी टेक्निक्स है तो उसमें जहाँ पे ज्यादा ब्लॉकेज है कहीं पे स्टेंट लगाने की जरूरत है, कहीं पे दवाई के बैलून है, तो वो पेशेंट जिसमें तीनों नाड़ियां बंद हैं उनको भी ट्रीट किया जा सकता है इसी टेक्निक से। और इन पेशेंट में काफी रिजल्ट भी अच्छे हैं और उनकी लाइफ भी लगभग नॉर्मल सी हो जाती है। तो अगर टाइम से पेशेंट आ जाता है, अगर कहते हैं पहले

0: एक घंटे के अंदर अगर पेशेंट आ जाता है और जो ब्लॉकेज है उसको खोल दिए जाते हैं तो ऑलमोस्ट 98-99% पेशेंट को बचाया जा सकता है
1: जी। और ऑपरेशन तो बच जाता है ते नाल दी नाल हॉस्पिटल भी टाइम कट लगता है।
0: यस, इसमें अभी जो है ना बहुत कम टाइम लगता है। अब कोई भी एंजियोप्लास्टी या ये नई इंटरवेंशनल टेक्निक से होती है हॉस्पिटल में एक या दो दिन से लगता है। कोई पेशेंट होता है जिसमें कि तीन दिन रुकना पड़े, नहीं तो ज्यादातर एक दिन में ही छुट्टी हो जाती है। आ जाए और उसका ऑपरेशन किया और नेक्स्ट डे जो है ना चले गए और सब कुछ चलते फिरते। ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट को व्हील चेयर पे भेजो, हमेशा वैसे भेजो। हम तो जो भी पेशेंट होता है उसको डिस्चार्ज करते हैं, चला फिरा के भेजते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि तुसी अपना नॉर्मल रोजाना वॉकिंग शुरू कर दो, सैर शुरू कर दो
1: जी,
0: और बहुत जल्दी अपना जो है काम भी शुरू कर दो
1: जी। डॉक्टर साहब, ब्लॉकेज का नाम लिया, हुण साडे विच बहुत सारे ये सोचते होंगे कि ब्लॉकेज क्यों हो जाती है, की कारण है जी इसका?
0: जी जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका। ब्लॉकेज एक्चुअली शुरू होती है जो नाड़ियां होती हैं, नाड़ी की सबसे अंदर की जो लाइनिंग होते हैं उसे कहते हैं एंडोथीलियम
1: जी।
0: ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइनिंग है। अगर जब तक ये नाड़ी जो है अंदर से एंडोथीलियम सही काम करती है तो ब्लॉकेज ना होता। लेकिन जब ये अंदर की लाइनिंग डैमेज होते हैं, जैसे पाइप है, पाइप में अगर अंदर से जो है ना अंदर से डैमेज होता है, रस्टिंग हो जाए, जम जाए, तो वहां पे फिर रस जमने लगती है अंदर से, पाइप में बंद हो जाता है
1: जी जी।
0: तो उसी तरह ये जो पाइपें हैं जो दिल की नाड़ियां, अंदर से अगर वो एंडोथीलियल लाइनिंग डैमेज हो जाती है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है
1: जी।
0: एक कोलेस्ट्रॉल होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए जरूरी भी होता है, बहुत सारे जो है हार्मोन्स और बहुत सारी बॉडी के फंक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। लेकिन कुछ कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कहते हैं, VLDL कहते हैं या लाइपोप्रोटीन ए कहते हैं, इस तरह के ये जो कोलेस्ट्रॉल हैं ये शरीर के लिए नुकसानदेह करते हैं
1: जी।
0: तो वो कोलेस्ट्रॉल उसमें जमा होने लगते हैं और धीरे धीरे जो है ना वो अंदर से ब्लॉकेज करने लगता है। लेकिन होता क्या है कि अगर ब्लॉकेज जो है ना 50-60% से नीचे होता है तो पता नहीं चलता ऊपर से, लेकिन अचानक अगर वो ब्लॉकेज है वहां पर रप्चर करता है, जैसे होता है ना वोल्केनो है, जो अचानक जो है ना रप्चर किया उसमें से लावा निकलने लगा, उसी तरह ये रप्चर कर जाते हैं और वहां पे ब्लड क्लॉट बन जाता है, उससे हार्ट अटैक होता है
1: जी।
0: तो लगभग 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पहले कोई सिम्टम्स नहीं आया, पहले कोई तकलीफ नहीं थी, वो अचानक जो है ना वहां पे जो है ना खून जम जाता है, ब्लॉकेज आ गई और उससे अटैक हो जाता है
1: जी।
0: वो पेशेंट जो है ना ज्यादा रिस्क में होते हैं और उसको अगर टाइम से नहीं दिया था, इसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने का भी रिस्क रहता है। जैसे अभी आपने सुना होगा एक जो केस हुआ था राजू श्रीवास्तव, एक जो है कॉमेडियन था, वो जो है ना एक्सरसाइज करते करते ये हो गया। लेकिन मीडिया में बहुत सारे टाइम पे ये दिखाया गया कि उनको जो है ना वो तो बढ़िया जो है दौड़ रहे थे ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल की वजह से जो है ना उसमें हो गया। इसमें ट्रेडमिल का कोई दोष नहीं है, उनको डायबिटीज थी, जिनको डायबिटीज होती है उनको ब्लॉकेज होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये पेशेंट जो होते हैं इनको अपना चेकअप कराना चाहिए और स्क्रीनिंग करके देखना चाहिए कि कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं। और ये पेशेंट हाई रिस्क होते हैं जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बोल की रिकमेंडेड लेवल है उस पर रखना चाहिए और सारे रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने चाहिए
1: जी। डॉक्टर साहब, आम लोगों के विच धारणा यह है कि असी बहुत ज्यादा वसा वाली चीजा, चर्बी वाली चीजा खाधी, ऑयली चीजा खाधी तो वह साड़िया नाड़ा के विच जम जाता है, कि ये भी एक कारण बनता है कि वहम ही है?
0: नहीं, वहम नहीं है। इसमें जो है ना हमें सभी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो जो फैट है, अगर हम सैचुरेटेड फैट खाते हैं ज्यादा, तो सैचुरेटेड फैट की क्वांटिटी जो है 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10% ज्यादा है तो वो सैचुरेटेड फैट जो है नाड़ियों में जमने का रिस्क ज्यादा होता है। उससे जो है ना जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, TG जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बढ़ जाता है
1: जी।
0: ये खराब होते हैं। ये इस तरह के जो वेजिटेबल ऑयल यूज कर सकते हैं उसमें ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट जो है ना वो नाड़ियों को डैमेज कर जाता है। तो ये सही बात है कि बहुत सारे जो मार्केट में जो सामान यूज करते हैं उसमें जो है वो अच्छा फैट नहीं यूज करते, तो वो उससे जो है खराब होने के। लेकिन अगर जैसे देसी घी खाते हैं स्मॉल क्वांटिटी में तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। ओलिव ऑयल है, जैतून का तेल जिसे कहते हैं, वो अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा नुकसान नहीं करता। तो जैसे कोकोनट ऑयल है वो भी खा सकते हैं, या सरसों का तेल है थोड़ी सी क्वांटिटी में, बट एज ए होल ज्यादा जो है फैट वाली चीजें नहीं खानी,
1: अवॉइड
0: करनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो शुगर है। शुगर जो है ना, जो प्लेन शुगर जिससे एकदम से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, जैसे चीनी हो गई या बहुत सारी, या सिंपल जैसे कनक की रोटियां ही हो गई या चावल हो गए या बहुत सारी जो है मिठाइयां हो गई, इनसे अचानक ज्यादा अगर शुगर वो खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी में अलग सिस्टम होता है, जो जो हम खाते हैं वो डायरेक्ट

0: उसी फॉर्म में नहीं जाता है शरीर में
1: जी।
0: वो पहले हजम होगा, डाइजेस्ट होगा, उसके छोटे छोटे जो है ना मॉलिक्यूल्स जो है वो बनेंगे, तो वो उसमें जो है ना फिर से अपटेक होता है
1: जी।
0: तो इसलिए जो है ना खाली फैट ही नहीं, शुगर का भी जो है कंट्रोल रखना चाहिए। शुगर अगर कंट्रोल होगी तो फिर जो है ना ये रिस्क घट जाता है।
1: डॉक्टर साहब पुराने बुजुर्ग कहते होंगे सी ना, असी तो घ्यो दे पीपे पीपे पी जाते सी, पर असी वर्जिश भी बहुत करते सी, असी काम भी बहुत करते सी, ते असी पचा लेंदे सी। अजोकी जिंदगी जिहड़ी रामप्रस्त है और ये पचा नहीं हुंदियां चीजां, इसी वजह करके असी बीमार हो जाने
0: जी। अल्टीमेटली हम खाते क्यों है, हमें हमें एनर्जी चाहिए, हमें प्रोडक्शन चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है, फैट से भी मिलती है। तो अगर आपका उतना रिक्वायरमेंट है, आपका उतनी एक्सरसाइज लेवल है, तो आप ये थोड़ा सा ज्यादा भी खा सकते हैं। लेकिन जिसकी रिक्वायरमेंट ही कम है, जो कि एक्सरसाइज करता ही नहीं है, तो वो जितना भी खाएगा तो वो बॉडी में स्टोर ही होगा,
1: स्टोर होना जी, बीमारी करना
0: जी।
1: डॉक्टर साहब ओपन हार्ट सर्जरी की लोड कदों पैंदी है?
0: ओपन हार्ट सर्जरी की लोड अभी काफी घट गई है। ओपन हार्ट सर्जरी की लोड उसमें पड़ती है जहां पे इंटरवेंशनल टेक्निक से नहीं ठीक किया जा सकता
1: जी,
0: जहां पे नाड़ियों में जिनका एंजियोप्लास्टी नहीं की जा सकती, या स्टेंट नहीं लगा सकती, या बैलूनिंग नहीं की जा सकती, उनको जो है ना बाईपास की लोड पड़ती है। या कुछ जो है जो वैल्व चेंज होते थे पहले, जैसे एओटिक वैल्व सिकुड़ हो जाते थे, या मिट्रल वैल्व उस लीक करने लगते थे, तो इन टेक्निक में अब ओपन हार्ट की सर्जरी पड़ती थी
1: जी।
0: लेकिन अभी नवी टेक्निक इसमें भी आ गई है, जिससे कि ये वैल्व भी जो है ना बगैर ऑपरेशन के चेंज किया जा सकता है।
1: अच्छा जी।
0: हाँ जी
1: जी,
0: ये तो है। अभी वो टेक्निक थोड़ी सी महंगी है लेकिन यूज होती है
1: जी।
0: तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी बहुत हाई रिस्क है, सर्जरी नहीं की जा सकती उम्र की वजह से, या और दूसरी बीमारियों की वजह से, या हार्ट ही बहुत वीक हो गया, तो उन सब में इस टेक्निक का बहुत ज्यादा यूज होता है कि वो बगैर ऑपरेशन के कैथेटर टेक्निक से उसको वाल्व को चेंज कर देते हैं, या वाल्व को बंद कर देते
1: जी।
0: हैं
1: जी। डॉक्टर साहब तुसी क्या सी कि दिल हाले तक असि नहीं बना सके
0: जी,
1: आर्टिफिशियल वाल्व बन जाता है,
0: वाल्व बन जाता है, वाल्व को चेंज किया जा सकता है
1: अपने,
0: जब तक अपना जो नेचुरल हार्ट है वो नेचुरल है
1: जी।
0: तो लेकिन जो वाल्व अगर जो खराब होते हैं तो वाल्व को जैसे सर्जरी से चेंज किया जाता था वो आप बगैर ऑपरेशन के भी।
1: चलो ये जुड़ती एक गल आती है, कई बार असि अखबारों भी पढ़िया, टेलीविजन से भी देखिया कि फलां व्यक्ति का दिल बदल दिता गया, दिल सानू फरानी इन्नी दूरी ते मिलिया और उदे वास्ते एक वखरा रस्ता बनाया गया ताकि वेले सिर दिल पहुंच सके, ये दिल दा बदलना की हुंदा
0: जी? जी इसे ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो फिर लाइलाज है, जो उसमें जो है ना कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, ना ही इंटरवेंशन से किया जा सकता है, ना ही कोई बाईपास सर्जरी से किया जा सकता है उन मरीजों में, या बच्चों की बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि जो है नहीं ठीक की जा सकती, उनमें हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है। ये सक्सेसफुल है, काफी हमारे जो है ना देश में काफी होता है। ज्यादातर जो ऑपरेशन जो है वो साउथ में ज्यादा है, चेन्नई में काफी होते हैं, हैदराबाद में काफी होते हैं, मुंबई में भी होते हैं, दिल्ली में भी होते हैं, लेकिन उधर ज्यादा होते हैं। तो हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और कई मैं पेशेंट है मैंने देखे हैं और मेरे पेशेंट वापस आए हैं तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद, तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी सक्सेसफुल है। बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि डोनर मिलना मुश्किल होता है
1: जी,
0: और कुछ कायदे कानून ऐसे होते हैं जिसको जो है डोनर नहीं मिल पाता
1: जी,
0: नहीं तो ये एक अच्छी टेक्निक है
1: जी,
0: जो
1: जी,
0: उन पेशेंट के लिए जिनके लिए कुछ नहीं किया जा
1: जी। डॉक्टर साहब हर वरे 16 सितंबर वाले दिन असी मनाने जी इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी डे, ठीक है जी, ये भी सीधा सीधा दिल नाल जुड़दा, दिल के इलाज दीआं नवीआं तकनीकां दे नाल जुड़दा, ते ए जिहड़ी आधुनिक तकनीक है हुण दिल दे वड्डे वड्डे ऑपरेशनां तों बचा के तुहानूं छोटे छोटे ऑपरेशनां दे जरिए तंदुरुस्त कर दिंदी है जी।
0: बिल्कुल सही कहा। अभी जो टेक्निक है जिससे कि एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी करते हैं, या अंदर से बैलूनिंग करते हैं, या वाल्व को चेंज करते हैं, या फिर वैल में रिपेयर करते हैं, ये सारी टेक्निक इंटरवेंशनल टेक्निक कहलाती हैं। इंटरवेंशन मीन्स ये मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक है जिसमें कि एक पैर की या हाथ की नाड़ी से जो है अंदर से पतला सा कैथेटर होता है उसके थ्रू जाके ये सब किया जाता है। ज़्यादातर इस तरह के प्रोसीजर्स हैं वो होश में किए जाते हैं, कोई बेहोशी नहीं करनी पड़ती है, सिंपल सा एक लोकल इंजेक्शन लगा के किया जा सकता है। ज्यादातर पेशेंट जो है ना टॉलरेट करता है, आराम से कंफर्टेबल लेटा रहता है और इलाज हो जाता है, और बढ़िया इलाज हो जाता है। तो वही चीजें जो कि कुछ चीजें जो दवा से नहीं ठीक की जा सकती उनका इलाज इंटरवेंशनल टेक्निक से किया जाता है,
1: यानी कि ये दवा वांगू काम करते
0: हैं। जी हाँ। लेकिन दवा भी साथ में जरूरी होती है, तो दवा प्लस इंटरवेंशन ये दोनों ही चीजें जरूरी है
1: जी,
0: दवा तो चाहिए
1: जी। डॉक्टर चलते साढ़े सुनने वाले नूं की कहोगे, खास तौर पर उन्होंने जो चुप चुप रहिंदे ने बोलते नहीं, कि उन्होंने खतरा ज्यादा तो नहीं हो जाता दिल दी बीमारियां का?
0: देखिए ये जो है ना चुप रहना, और ये एक तो मैं कहूंगा कि सबसे पहले तो खुश रहिए।

0: और खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुश रहते हैं तो बॉडी में बहुत सारे अच्छे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे अच्छे जो है फीलिंग अच्छी होती है। दूसरी चीज़ जो है ना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज हर बंदे को ही करना चाहिए, हमने लिए कम से कम आधा से एक घंटा जरूर निकालना चाहिए, किसी भी फॉर्म की एक्सरसाइज हो वो करें, और 6 से 7 घंटा सोना भी ज़रूरी है
1: जी।
0: और खाने में हर तरह का खाना खा सकते हैं कंट्रोल क्वांटिटी में
1: जी।
0: तो जो अच्छा खाना है वो ज़्यादा खाएं, जो खराब है, जो समटाइम होता है कि बच्चे होते हैं वो फास्ट फूड, या किसी को, बहुत से लोगों को भी फास्ट फूड पसंद है, वो कभी कभी खा सकते हैं, थोड़ा बहुत खाने में कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए
1: जी।
0: तो अच्छी आदतें डालें, और कुछ हैबिट्स जो है ना, जैसे एक्सरसाइज करने की, टाइम से सोने की, अच्छी चीजें खाने की, और खुश रहने की
1: जी,
0: ये अच्छी आदतें जरूर रखें
1: जी। इसलिए तो कहते हैं दिल खोल लेते अगर यारों के साथ, ना खोलना पड़ता आज औजारों के साथ।
0: बिल्कुल जी। अगर आपके जो है स्ट्रेसफुल लाइफ से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, या बहुत सी गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होती हैं, वो ज्यादातर उन लोगों को होती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं, जो सोते ही नहीं है, ठीक है, हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो हर वक्त टेंशन मत रखिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है उसका बिल्कुल सांझी करो, और जो है जो भी आपके कोल डॉक्टर है, जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है या और दूसरी बीमारियां हैं, तो उसके साथ में जरूर साझा करो और जाके दिखाओ, एक बार चेक जरूर कराना चाहिए
1: जी।
0: जो आपका डॉक्टर कहता है उस पर विश्वास भी रखना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: और उसको फॉलो करना चाहिए, तो जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक होगी
1: जी। जी सो डॉक्टर अनवर तुसी साडे स्टूडियो चाहे बहुत ही वधिया तरीके नाल दिल दीआं वख-वख बीमारियां दा किवें आधुनिक तरीकियां नाल इलाज कीता जा सकदा उस दे बारे खोल के विस्तार पूर्वक जानकारी दित्ती, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
0: थैंक यू, सानू भी बहुत खुशी हुई।
2: सो जी जिहड़ा अज दा ए दिन खास मना रहे ना, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी दिवस, इहदे उपलक्ष दे विच डॉक्टर अनवर खान होना ने बहुत ही सोहणे तरीके नाल दस्सिया कि घबराण दी लोड़ नहीं है, जे दिल दी कोई बीमारी हो भी गई है तो डॉक्टर कोल जाके तुसी इलाज जिहड़ा करवा सकते।
3: और दूजा जिहड़ी ओह मेजर टिप दे गए ने ओह ए दे गए ने कि खुश रहो
2: जी,
3: जिंदगी नूं जियो, स्ट्रेस ना लो।
2: बिल्कुल जी, ते फिर असीं वी स्ट्रेस नहीं लैणा, ते असीं इक गीत सुणीए।
3: बिल्कुल जी
2: जी।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਸਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਤੇ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 1 ਵਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के पांचवें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का यह सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन शामिल होगा। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा सेमी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उच्च स्तरीय मुख्य भाषण, पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापार

0: छूट दर के अंतर्गत लेनदेन के साथ साथ व्यापारियों को 2000 रुपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेनदेन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के पीटूएम लेनदेन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेनदेन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्वच्छता ही सेवा 2000

0: पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2000 रुपए से अधिक के P2M लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रुपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रुपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के अंतर्गत स्वच्छता के लिए चिन्हित स्थलों और अधिक आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ पहल के जरिए स्वच्छता से समृद्धि को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के उत्पादों के लिए 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं का बाजार खोलेगा और देश में रोजगार तथा आय बढ़ाने में मदद करेगा। ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार मतदान हुआ। सदन ने युद्ध शक्तियों से संबंधित प्रस्ताव को 220 के मुकाबले 204 मतों से मंजूरी दी। प्रस्ताव के अंतर्गत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने की क्षमता पर रोक लगाई जा सकती है। ये मतदान मध्य अवधि चुनाव से पहले ईरान संघर्ष पर प्रतिनिधि सभा का अंतिम मतदान हो सकता है। संघर्ष के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल आपूर्ति प्रभावित होने के बीच अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें भी मुद्दा बनी हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साथिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बलक्ष्मी की जयंती पर आज देश भर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने उनके योगदान का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी स्वर साधना ने भारतीय संगीत और संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने वाली एक ढाल है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 361 अंक बढ़कर 74,364 पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा।

0: फौजी वीरो जय हिंद। मैं निधि चुग लैके हाजिर हाँ हिंदी फिल्मां दे गीतां नाल सजिया ए गुलदस्ता। तो फिर इस गुलदस्ते विच्चों पहला गीत है जी फिल्म सरगम दा। ज़्यादा देर नहीं करते तो हाजिर करते हाँ तुहाडे लई लता मंगेशकर ते रफी जी दी आवाज़ विच प्रोग्राम दा है पहला गीत।
1: डफली वाले डफली बजा

फौजी वीरो प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है फिल्म असली नकली दा। इस गीत नू अपनी सुरीली आवाज नाल सजाया है मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर ने।

फौजी हीरो ए प्रोग्राम जारी रहेगा। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। फिलहाल तुसी सुनोगे हुण तो कुछ देर बाद 1:40 ते पंजाबी खबरां, ते उस तो बाद साडे दिल्ली केंद्र तो उर्दू च खबरां 1:50 ते।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान UPI लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दरां विच कटौती ते छोट की बजाय सरकार नूं टैक्स संबंधी तजवीज़ां च देश नूं पहला रखना चाहिए है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो भूटान के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगे। धरती ते जीवन की रक्षा विच ओजोन परत की अहमियत बारे जागरूकता पैदा करने लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों ते यूनिवर्सिटियों विच पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाउण दा फैसला किया है। हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान UPI लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि छोटे व्यापारियों लिए 0 मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे अधीन आने वाले लैण देण अते व्यापारियों 2,000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। मंत्रालय अनुसार इस दे नतीजे वजो व्यक्ति अते व्यापारी विचकार होने वाले कुल लैण देण विचों लगभग 96% लैण देण प्रभावित नहीं होएगा। MDR सिर्फ 2,000 रुपए तो वध मुल ते निर्धारित व्यापारिक लैण देण ते ही लागू होएगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि MDR ना तो कोई टैक्स है अते ना ही सरकार जां भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI वालों लाया गया कोई चार्ज। इस नूं UPI दे संचालन अते निरंतर विस्थार विच सहायता लई बैंकां ते भुगतान एप्लीकेशन मुहैया

0: जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना, ना, ना।

0: ਫੌਜੀ ਵੀਰੋ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਧੀ ਚੁਗਨੂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੈ ਹਿੰਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ
1: ਨਮਸਕਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਫਰਹਤ ਨਾਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਕਾ ਕਰ ਸੇ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀਓ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਕੋ ਸਰਵੋਪਰੀ ਰੱਖਣੇ ਕਾ ਆਹਵਾਨ भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोककर नष्ट किया हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी हौसी ने शहर को निशाना बनाने से इनकार किया और हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान अब समाचार विस्तार से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर से जुड़े प्रस्तावों में देशहित को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि कर दरों में कमी छूट या रियायत की मांग से पहले राष्ट्रहित पर ध्यान दिया जाना चाहिए वित्त मंत्री आज बेंगलुरु में इंटरनेशनल टैक्स रिसर्च एंड एनालिसिस फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिन के सम्मेलन न्यू एज टैक्सेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थी श्रीमती सीतारामन ने शिक्षाविदों शोधकर्ताओं और थिंक टैंक से कर नीति पर स्वतंत्र शोध को बढ़ावा देने का आग्रह किया
2: The question should not only be
3: सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि इस साल के बजट में हमारे क्षेत्र को क्या मिलेगा बड़ा सवाल यह है कि अगले दो दशकों में भारत की टैक्स व्यवस्था कैसी होनी चाहिए क्योंकि देश विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है इसके लिए टैक्स नीतियों पर बेहतर और व्यापक शोध की जरूरत है साथ ही जहां भी संभव हो ऐसी नीतियों के व्यावहारिक विकल्प सामने आने चाहिए जिन्हें वास्तव में लागू किया जा सके
1: विदेश मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब कर समुद्र में पाकिस्तानी नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर कड़ा विरोध दर्ज कराया मंत्रालय ने कहा कि इससे भारतीय नौसेना की एक पाकिस्तानी नौसैनिक इकाई से टक्कर हुई घटना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मंत्रालय ने कहा कि अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही की अग्रिम सूचना संबंधी समझौते का सीधा उल्लंघन है मंत्रालय ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों को ये बताने को कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी सैन्य इकाइयों को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और दोनों

0: पक्षों के बीच संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करना चाहिए। मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक को भी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के समक्ष विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। थल सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आज से 3 दिन की रूस यात्रा पर हैं। यात्रा का उद्देश्य भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों और सैन्य सहयोग को और मजबूत करना है। जनरल सेठ रूस के थल सेना के कमांडर इन चीफ कर्नल जनरल आंद्रेई मोर्दोवीचेव के साथ पेशेवर सैन्य सहयोग और प्रशिक्षण सहित आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वे मॉस्को में राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे और रूसी रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर भूटान के विदेश मंत्री योनपो डीएन ढुंगेल के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भूटान नरेश से मुलाकात करेंगे और भूटान के प्रधानमंत्री से भी भेंट करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। इसका उद्देश्य मैत्री और सहयोग के मौजूदा घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नीति आयोग की इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली शीर्ष प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश रहा है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा हैं। इस सूचकांक का शुभारंभ आज नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा किया गया, जिसमें उपराष्ट्रीय स्तर पर ई गतिशीलता के लिए नीतिगत ढांचा और क्रियान्वयन परिणाम दोनों का विवरण दिया गया। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा है कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। श्री गौबा ने कहा कि 2040 तक सभी नई कार बिक्री का 40% विद्युत वाहन होंगे। उन्होंने बताया कि 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का अधिकतम स्कोर 84 रहा, जो 2024 में 77 था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करेगा। ये सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती, निवेश आकर्षित करने और प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को साथ लाएगा। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में 6 देशों के पवेलियन, 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक समर्पित स्टार्टअप पवेलियन भी शामिल है। भारत के प्रमुख सेमीकंडक्टर सम्मेलन और प्रदर्शनी सेमिकॉन इंडिया को संयुक्त रूप से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सेमीकंडक्टर विनिर्माण और प्रौद्योगिकी सहित पूरे सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम के उभरते रुझानों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पैनल चर्चा और रणनीतिक सत्र आयोजित किए जाएंगे। यह सम्मेलन भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए साझेदारी, निवेश के अवसर, तकनीकी सहयोग को तलाशने तथा विश्वसनीय वैश्विक सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि लोगों के बीच सामान्य रूप से किसी भी राशि के यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों के लिए शून्य व्यापारी छूट दर के अंतर्गत लेन देन के साथ साथ व्यापारियों को 2,000 रूपए तक के भुगतान भी मुफ्त रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यूपीआई शुल्क केवल 2,000 रूपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पीटूएम लेन देन पर लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यूपीआई ऐप उपलब्ध कराने वाली कंपनियां किसी भी तरह का प्लेटफॉर्म शुल्क नहीं लगा सकती हैं। मंत्रालय ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि व्यापारी यूपीआई भुगतान पर लगने वाला मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR का शुल्क ग्राहकों से न वसूलें। 2,000 रूपए से अधिक के पीटूएम लेन देन पर 0.4% की सामान्य MDR लगेगी। वहीं 75,000 रूपए या उससे अधिक के बड़े लेन देन पर MDR शुल्क अधिकतम 300 रूपए प्रति लेन देन होगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज कोलकाता में करोड़ों रुपए के चिटफंड मामले में 6 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। ईडी की एक टीम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ उत्तर कोलकाता के नारकेल डांगा इलाके में एक कारोबारी के घर पहुंची। सूत्रों के अनुसार कारोबारी ने आकर्षक रिटर्न का वादा कर लोगों से धनराशि जुटाई और इसे विभिन्न क्षेत्रों में निवेश किया। इसी मामले में उत्तर और दक्षिण कोलकाता के 5 अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान कल से देश भर में शुरू होगा। ये अभियान 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष

0: ज्ञान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। ये विषय स्वच्छ और विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में सामूहिक भागीदारी और साझा जिम्मेदारी के महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
1: साल 2017 में शुरू हुआ स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह अभियान हर साल आयोजित किया जाता है और देश भर के लोगों को अपने आसपास की सफाई की जिम्मेदारी लेने और स्वच्छता में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर के अवसर पर शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण भी किया जाएगा। राज्यों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा पूरी होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को विशेष स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे खुले में शौच की समस्या खत्म हुई है और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को भी बढ़ावा मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा ले रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी दल के साथ हैं।
2: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय दल आज राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्रीय टीम ने पटना जिले के मनेर और दानापुर के दियारा क्षेत्रों का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर हो रहे इस दौरे के दौरान श्री चौहान राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे तथा प्रभावित किसानों और परिवारों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बैठक में बाढ़ की स्थिति, आपदा प्रबंधन, राहत और बचाव कार्यों तथा प्रभावित किसानों को दी जा रही सहायता की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, पंजाब, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज इसी तरह का मौसम रहेगा। दिल्ली में शाम को हल्की बारिश होने का अनुमान है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिजली चमकने के साथ तूफान की आशंका है। आज विश्व ओजोन दिवस है। इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस का विषय है ठंडे ग्रह के लिए वैश्विक कार्रवाई। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोककर एक सुरक्षा कवच का काम करती है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने पर्यावरण की रक्षा के साथ टिकाऊ आर्थिक विकास का उदाहरण पेश किया। मुंबई में 32वें विश्व ओजोन दिवस के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत तय लक्ष्यों को विकास से समझौता किए बिना हासिल किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: यमन के हौसी विद्रोहियों ने आज दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के F-15 जेट को मार गिराया है। हौसी का यह भी कहना है कि पिछले कुछ दिनों में सऊदी अरब ने उनके विभिन्न जिलों पर 450 से ज्यादा हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
4: हौसी सेना के प्रवक्ता यहया सरी ने बताया है कि यमन के मारिब प्रांत के ऊपर सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया गया है। उनके अनुसार स्थानीय स्तर पर बनी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से सऊदी लड़ाकू विमान को निशाना बनाया गया। हालांकि सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने कहा कि इन हमलों में आम नागरिक हताहत हुए हैं। इससे पहले आज सुबह इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र स्थल मक्का में सऊदी अरब के सिविल डिफेंस ने संभावित हवाई हमले की चेतावनी जारी की है। हौसियों ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता लागू करने का विधेयक पारित कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच शुल्क में भारी कटौती और व्यापार विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में करीब 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 297 अंक बढ़कर 74,301 पर रहा। आज भारतीय शास्त्रीय संगीत की अमर साधिका और भारत रत्न से सम्मानित MS सुब्बुलक्ष्मी की जयंती है।
5: कर्नाटक संगीत की रानी कहे जाने वाली MS सुब्बुलक्ष्मी भारत की सबसे सम्मानित शास्त्रीय गायिकाओं में से एक थी। 16 सितंबर 1916 को

तमिलनाडु के मदुरै में जन्मी सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार बनी। डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी पहली रिकॉर्डिंग 10 साल की उम्र में की थी। कुंभकोणम में महामहम उत्सव में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक प्रस्तुति दी जब वे महज 16 साल की थी। डॉक्टर एम एस सुब्बुलक्ष्मी ने कई भाषाओं में प्रदर्शन किया जिनमें हिंदी, बंगाली, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत और कन्नड़ शामिल है।

0: सुब्बू लक्ष्मी ने अभिनय के क्षेत्र में भी प्रवेश किया और कई फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने अपनी फिल्म की शुरुआत वर्ष 1938 में फिल्म सेवा सदन से की। फिल्म मीरा में उनके अभिनय को भी काफी सराहा गया।
1: परमेश्वर के सामने राजा क्या, स्वामी क्या, गुलाम क्या, गौवें चराने वाले ग्वाल बालों के साथ मायावी कृष्ण को नाच गाना नहीं भाया, दुर्योधन के आलीशान महल को तज कर दीन विदुर की कुटिया को भवा ने क्या नहीं अपनाया।
0: पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
2: इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी उनके योगदान का स्मरण किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का कर से जुड़ी नीतियों पर राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आह्वान। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौसैनिक टकराव के लिए पाकिस्तान के नौसैनिक इकाइयों के अस्वीकार्य आचरण पर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध व्यक्त किया। नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सूचकांक 2025 जारी किया। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने के मामले में दिल्ली का शीर्ष प्रदर्शन। सऊदी अरब ने कहा उसने मक्का के पास हौसी ड्रोन को रोक कर नष्ट किया। हमले के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है।
4: ਤੂੰ ਅੱਜਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ।
5: ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਕਦੇ ਮਾਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
4: ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?
5: ਐਚਆਈਵੀ
4: ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾਰ ਵੀਰੇ, ਤਾਂ ਸੁਣ। ਐਚਆਈਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੂਈ ਸਰਿੰਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਯੌਨ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੂਨ ਜਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
6: ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਏਡਜ਼ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1097 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।
3: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੰਗਲੀ ਧਰਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਾਏ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜੁਗਨੀ।

0: टीका ला लिया हूं तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाना।
0: ए तो फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनूं एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: प्रोग्राम चल रहा जी रंगली धरती ते अज इस विच तुसीं आनंद मान रहे हो नेता सिंह परवाना ते उनां दे साथियां ते गाए लोक गीतां दा। आओ हुण सुणदे आं उनां दी आवाज़ विच मिरसा।

0: प्रोग्राम रंगली धरती अज इस विच तुसी नेता सिंह परवाना ते उन्हां दे साथियों ते गाए लोक गीत सुने। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। इस वेले दोपहर दे 3 बज गए ने। हुण साडी अज दी पहली सभा खत्म हुंदी है। अपनी दूजी सभा दे प्रोग्राम लैके शाम 4 बजे फिर तों हाजिर होवांगे। तद तक ले दिओ इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार। DTH की पंजाबी प्रसारण सेवा का यह जलंधर केंद्र है। साढ़े स्टूडियो की कड़ी मुताबक इस वेले दोपहर के 3 बज रहे हैं। आओ सुनते हैं हुण तक दी मुख खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरमियान UPI लेन देन ते कोई चार्ज नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि दरां विच कटौती अते छोट दी बजाए सरकार नू टैक्स संबंधी तजवीज़ां विच देश नू पहला रखना चाहिदा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तों भूटान दे 2 रोज़ा सरकारी दौरे ते ने धरती उत्ते जीवन दी रक्षा विच ओजोन परत दी अहमियत बारे जागरूकता पैदा करन लई अज विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा 2026 मुहिम कल तो पूरे देश विच शुरू हो रही है। यह मुहिम 17 अक्तूबर तक जारी रहेगी। पंजाब दे जल सप्लाई अते सैनिटेशन मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने सूबे विच स्वच्छता ही सेवा मुहिम लई कीतियां जा रही तैयारियां दा जायजा लिया। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब दे 80% खेतों तक नहरी पानी पहुंच चुका है अते इस नूं 100% तक लैके जाण दा टीचा है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया कि आने वाले सीजन दौरान सूबे तो बाहरों आने वाले झोने नूं विक्री लई किसी भी मंडी विच दाखल नहीं होण दित्ता जाएगा। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के कॉलेजों अते यूनिवर्सिटियां विच पढ़ रहे 10,000 विद्यार्थियों लई होस्टल बनाउण दा फैसला किया है। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ अते दिल्ली विच भारी मीह पैण दी पेशीनगोई कीती है। इस सन हुण तक दीआं मुख खबरां।

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तेजिंदर सिंह हाजिर हाँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम विच असीं तुहाडे वल्लों भेजियां जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं शामिल करदे हुए तुहाडे वल्लों कीती जांदी

नमस्कार, तुहाडा मनपसंद प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां लेके मैं तुहाडा दोस्त ते आरजे तेजिंदर सिंह हाजिर हाँ। दोस्तों, इस प्रोग्राम विच असीं तुहाडे वल्लों भेजिया जांदियां प्यार भरियां चिट्ठियां नूं शामिल करदे होए तुहाडे वल्लों कीती जांदी पंजाबी गीतां दी फरमाइश नूं पूरा करदे हाँ। दोस्तों, अज दी भज दौड़ ते तनाव भरी जिंदगी च हर कोई खिजिया खिजिया रहिंदा है ते हमेशा खिजे ते गुस्से च रहना जिथे तुहाडी दोस्ती ते रिश्तेदारी च विगाड़ पाउंदा है उत्थे हसना ते चंगा बोलना तुहाडे दोस्तां ते रिश्तेदारां दी गिनती च वाधा करदा है। दोस्तों, जेकर तुसीं ध्यान दिओगे तां एक गल सामने आवेगी कि हसण ते चंगा बोलन नाल कोई मुल नहीं लगदा, पर इस दे फायदे बहुत ने। इसलिए हमेशा हसदे रहो क्योंकि मुल ना लगदा हसने दा। दोस्तों, प्रोग्राम दी पहली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजण वाले ने गगड़ साहिर हाजीपुर तों केहर सिंह, मोहन, चित्राम, गुरमीत, सदेश कुमार कुलियावाला जी, ते इस दे नाल ही कुलदीप सिंह संधू, गुरविंदर सिंह संधू, यादविंदर सिंह यादवीर सिंह संधू, डब वाली हरियाणा तो जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय, अनिल, मीना बकोलिया ते मीनू बकोलिया, चौंक बत्तियां वाला पिंड माधोपुर जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो बलविंदर बिल्ला माधोपुरी, राज कौर, ज्योति गोल्डी, राम लाल खरोड़ा, बब्बू टिवाणा अते सारा माधोपुरी लाणा, पिंड इस्लाम वाला जिला फाजिलका तो सोन लाल राठी, ओम प्रकाश लाल राठी, शगन राठी, लवकुश वर्मा, हनु राठी, अमन गोड़, कंचन बीरट, कुलदीप ढींगड़ा पिंड कुड़ियाणा, बाबू सिंह साने वाला तो, छत्रपाल सिंह खंगूड़ा, रजिंदर सिंह खंगूड़ा, गुरमंज सिंह विरक पिंड कमाल वाला तो, रणजीत कौर भट्टी, बोड़ सिंह भट्टी ते काका भट्टी। दोस्तों, इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुनदे हां प्रोग्राम दा पहला गीत।

0: பயன்பட்டு
1: दोस्तों तुसी सुन रहे सी सुखशिंदर शिंदा नछत्तर गिल ते साथियों की आवाज़ विच खूबसूरत गीत मुल ना लगदा नचने दा। दोस्तों हर वरे 16 सितंबर नू ओजोन परत की सुरक्षा बारे जागरूकता वधाउण लई विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1994 इस दिन का ऐलान किया। 16 सितंबर 1987 नू ओजोन परत नू नष्ट करन वाले पदार्थां ते मोनिट्रियल प्रोटोकॉल ते दस्तखत किए गए सन। दोस्तों ये जो ओजोन परत है सूर्य तो आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणा तो धरती तो आने तो बचाउंदियां ने। यह परत इंसाना च चमड़ी कैंसर अखा की बीमारी ते कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वर्गियां समस्यां तो बचाउंदी है। दोस्तों प्रोग्राम की अगली फरमाइश लिए सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया ते पप्पी भाटिया।

दोस्तों तुसी सुन रहे सी चांदी राम ते शांति देवी दी खूबसूरत आवाज़ विच गाया होया गीत मित्रा दा छल्ला। दोस्तों उंज तां हसना सेहत लई बहुत चंगा हुंदा है, पर जेकर कुड़ियां ज़्यादा हसन तां लोकी की दा की समझ लैंदे ने। इसे हासे नूं लै के कई लिखण वाले ने बहुत सोहणे गीत लिखे, जिन्हां चों एक गीत सुनण दी फरमाइश करन वाले ने बाड़ियां कला तों हुशियारपुर तों बूटा राम हांडा विनय उमंग ते नीरज हांडा, इसी तरह सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र तो नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े ते आकाश कुमार, इसी तरह पिंड तंगोरी जिला मोहाली पंजाब तो गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसवीर कौर, महकप्रीत कौर ते सहजप्रीत कौर, मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाणा तो विनोदपुरी वीपी रंजू, अशोकपुरी सुशील, बीकेपुरी कैलाशपुरी अनीता ममता मेघा ते पूजापुरी, गगन कपूर गुंजन कपूर ते लालसा कपूर, रामा मलिक कुणाल मलिक निधि मलिक, इसी तरह हरीशपुरी सतीशपुरी राकेशपुरी विनोदपुरी पालीपुरी डीसीपुरी अरनपुरी ते नेहापुरी एकतापुरी शम्मी बोधी सुनीलपुरी वीकेपुरी ते आरएसपुरी, इसी तरह पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता राणी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया ते बेबी आरजू जाजोरिया। दोस्तों इन्हां सारयां दी फरमाइश ते सुणदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत।

दोस्तों तुसीं सुन रहे सी मुहम्मद रफ़ी की आवाज़ विच खूबसूरत गीत चिट्टे दंद हसनों नहीं रहिंदे। प्रोग्राम की अगली फरमाइश लई सानू चिट्ठियां भेजन वाले ने पिंड आजम वाला तहसील फाजिलका तो सोन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, जसवंत जसवंत कौर। इसी तरह राज मिस्त्री पिंड माहूआणा बोदला ढाणी नेड़े थाणा अरनी वाला तो सुरिंदर कौर बूक, बलविंदर कौर बूक ते रीना बाई। गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवांशहर तो सुरिंदर संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिक्षा संधु ते होर उन्हां दे परिवारक मैंबर। मुहम्मदपुर सोत्र ढाणी रतिया तो जीवन सिंह बूक, शंटी बूक, सिमरन बूक, शल्या राणी, गुरछिंदर बूक, बब्बू बूक, कुलदीप बूक, कीरत बूक, भूषण खेड़ा, जशन बूक ते होर पूरा बूक परिवार। इसी तरह मंडी हरजी राम मलोट तो महेश गर्ग, सुषमा गर्ग, जशन गर्ग, विनोद गर्ग ते होर परिवारक मैंबर। मखू फिरोजपुर तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज। दोस्तों इन्हां सारिआं दी फरमाइश ते सुणदे हां जी प्रोग्राम दा अगला गीत।

मन करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। तू बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूँ आँख का पानी। हाथ खाली

आम अखौत है कि जैसी संगत तैसी रंगत, पाव जिस तरह का संग हुंदा है उस तरह का रंग संगत करन वाले ते भी चढ़दा है। नेक जना दी संगत नाल उस तरह ही शुभ गुणा का रंग चढ़दा है ते कुसंगत विच कुमत ही हिस्से आउंदी है ते कुकर्म जिंदगी का हिस्सा बन जाते ने। इसे करके संगत सच्ची होनी चाहिदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच सत संगत ही उत्तम संगत दसी गई है। पर हुण प्रश्न ए उठदा है कि सत संगत की है। गुरबाणी इस बाबत चानण पाउंदी है। फरमान है, सत संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम वखाणी है। एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। सत संगत विच नाम ही बोहित है, जो पवसागर विच फसे हुए जीव नू पारले बन्ने लौंदी है। राग गुजरी विच उचारे हुए शब्द विच पंचम पातशाह स्पष्ट करदे ने कि सत संगत तो बिना यह पवजल तरिया नहीं जा सकता। मेरे माधव जी, सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कास्ट हरिया। सरवण करदे हां भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया यह शब्द।

0: मेरे माधव जी सतसंगत मिले सुतरिया। इस शब्द का गायन किया सी भाई बलविंदर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। गुरमत विच मानस जन्म का प्रयोजन भाव मकसद निर्धारित किया होया है, वह है अपना मूल पछानना, भाव उस प्रभु की जोत विच अभेद होना, उस प्रभु का दीदार करना। इस वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सानू सुचजी जीवन जुगत भी दर्शाती है। विशेष तौर पर संतां दा संग उत्तम संगत दस्या गया है। ये प्रभु नाल मिलाप करवाउण दा नेक कारज संत भाव गुरु दे हिस्से ही आउंदा है। एक वचन रूप विच जिथे संत पद आया है उत्थे संत तो भाव गुरु है। कबीर सेवा को दुए पले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। पंचम पातशाह गौड़ी सुखमणी रचना दी 23वीं अष्टपदी दे पहले पदे विच फरमाउंदे ने, संत संग अंतर प्रबडीठा। सुनदिआं जोगिंदर सिंह कंग होरां पासों ये वार्ता।
1: ये पावन तो शहीदां दे सरताज, शांति दे पुंज, बाणी दे बोइत अते राग दे तनी, धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी दे मुखार बिंद तों उन्हां दी शाहकार रचना सुखमणी साहब दी 23वीं अष्टपदी दे आरंभ विच उचारण की हुई है, जो राग गौड़ी विच धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पावन अंक 293 ते सुशोभित है। पावन गुरबाणी विच संत संग अथवा संतां दी संगत दा परिपूर वर्णन उपलब्ध हुंदा है। संत संग सदा ही गुणकारी अते पर उपकारी है, जिस द्वारा मनुखी मन प्रभु दे रंग विच रंगिया जांदा है अते भटकदे मन नूं संतोख ते सहज मिलदा है। पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी राग राम कड़ी विच अंकित करदे हन, पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया। संत संग विच मन आनंद विभोर हो जाता है अते विसमादी रंगण विच रंगिया जाता है। पंचम दातार राग सोठ विच बख्शिश करदे हन, महा आनंद पए सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर सो मन मानिया, रंग रते बिस्मादे। संत संग हरी नाम दी औख दे के सब रोग कट देंदा है अते चंचल मन निर्मल हो जाता है, फिर यही निर्मल मन प्रभु प्राप्ति का राध सेरा बन जाता है। पंजवें पातशाह जी का राग बिलावल विच फरमान है, महिमा साधु संग की सुर हो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पए चीता। संत संग करदिआं मन ना डोलदा है ना ही तृष्णा विच जोड़दा है, सब बंधन छुट जाते हैं, मोह परमिट जाते हैं, फिर पार ब्रह्म नाल ही नेड़ता बन जाती है। राग भैरों विच पंजवें सतगुरु जी अभिव्यक्त करते हैं, संत मंडल में हर मन वसै, संत मंडल में दुर्त सब नसै, संत मंडल में है निर्मल रीत, संत संग होए एक प्रीत, संत मंडल तहा का नाओ, पार ब्रह्म

मन रोशन हो जाता है। राग आसा विच दो पद्यां वाली रचना भाव दुपदे विच साध संगत की महिमा बयान की गई है कि जिन्हां नूं गुरु अपनी संगत विच रख के प्रभु नाम सिमरना सिखाउंदा है उन्हां दे सगले मनोरथ पूरे हुंदे ने, तृष्णा अग्नि मिट जाती है, गफलत दा हनेरा दूर हो जाता है, ते उस जीव दे मन अंतर विच जिवें चन चढ़ पैंदा है। गुरु शब्द आत्मिक जीवन प्रदान करन वाला नाम जल है। जेड़ा भी इस नाम जल दा पान करदा है मानो परम पदवी अर्थात उच्ची आत्मिक अवस्था दा धारनी हो जाता है। करण करावन सरण परिया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। सरवण करदे आ भाई जगतार सिंह अते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द।

करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया। इस पावन रचना का गायन किया भाई जगतार सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते चैनलों के माध्यम से निर्यात को सुगम बनाना है। 3 लाख रुपए से अधिक की निर्यात खेपों के लिए वैध RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता बनी रहेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जन सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
2: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: महान कलाकार अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से उनके सहज अभिनय, अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और शानदार काम ने भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर गहरी छाप छोड़ी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के विदेश मंत्री लिन्यो डी एन थुंगेल से मुलाकात की और व्यापक सहयोग की समीक्षा की। इस दौरान विकास, साझेदारी, ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में भारत भूटान की बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। इस सूचकांक में उपराष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे और कार्यान्वयन परिणामों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। दक्षिण कोरिया में विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिली शाह, मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा ने

0: 10 मीटर एयर राइफल R2 टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। राकेश निदागुंडी, आनंदा कृष्णा और स्वरूप उन्हालकर ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल R1 स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 864 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.9 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो की कड़ी ते 6:05 हो रहे हैं। चलो हुण पेश है अज दे प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। सब तो पहला अज दियां खास खबरां। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपे लैण देण ते हुण नहीं लगेगा कोई चार्ज। युद्ध नशियां विरुद्ध ते नशा मुक्ति मुहिम तहत मलोट विखे करवाया गया राज पद्धरी समागम। इस मौके डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा कि नशियां दे खात्मे लई समाज दे हर वर्ग दा सहयोग जरूरी। सेहत मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि सरकारी रिंदरा हस्पताल विखे स्थापित किया जा रहा है 300 बैड का ट्रोमा सेंटर। मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल ने दस्या है कि खेडां वतन पंजाब दियां विच पहली बार शामिल की गई टैनिस बॉल टिकट ते मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ते दिल्ली विच भारी मीह पैण की पेशीनगुन की। हुण खबरां विस्थार दे नाल। सरकार ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति तो व्यक्ति दरम्यान यूपी लैण देण ते कोई चार्ज नहीं लगेगा, भावें भेजी गई रकम किन्नी भी होवे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि छोटे व्यापारियों लिए जीरो मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR ढांचे तहत आने वाले लैण देण ते व्यापारियों को 2000 रुपए तक के किए जाने वाले भुगतान की मुफ्त रहेंगे। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चार्ज सिर्फ 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यक्ति माफ करना व्यक्ति तो व्यापारी लैण देण ते ही लागू होगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि UPI ऐप प्रदाता प्लेटफार्म फीस या लुकमें खर्चे नहीं वसूले जाएंगे। मंत्रालय ने बैंकों को हिदायत की है कि वह यह यकीनी बनाने कि व्यापारी UPI भुगतान लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR का बोझ गाहकों से ना पाउण। 2000 रुपए तो वध दे व्यक्ति तो व्यक्ति लैण देण ते 0.4% मामूली MDR दर लागू होगी, जबकि 75,000 रुपए और इस तों वध दे उच्च मुल वाले लैण देण लई MDR की वध तों वध हद 300 रुपए प्रति लैण देण ते तय की गई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कल 3 साल पूरे कर रही है। इस योजना तहत 30 लाख लाभपात्रियों को रजिस्टर करने का दायरा टीचा पूरा कर लिया गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 शुरू की गई सी। इस योजना का उद्देश 18 पछाणे गए कित्यां विचों लगे रवायती कारीगरां अते कारीगरां नूं व्यापक सहायता प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश विश्वकर्मा के रवायती हुनरां नूं संस्थागत सहायता आधुनिक उपकरण वित्त तक पहुँच हुनर अपग्रेडेशन अते बाजार संपर्क प्रदान करके मजबूत करना है। यह उन्होंने उत्पादकता आमदन अते उद्यमी संभावना वधाउण दे योग भी बनाउंदा है। सूखम छोटे अते दरम्याने उद्यम मंत्रालय कल कोलकाता विच इस योजना की 3री वरेगंढ मनाएगा। केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी अते पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी इस समागम विच मौजूद रहणगे। नशियां विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध अते नशा मुक्त मुहिम तहत अज मलोट विखे राज पद्धरी समागम कराया गया। इस समागम विच समाजिक सुरक्षा अते स्त्री ते बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने मुख मेहमान वजों शिरकत करदिआं कहा कि नशियां दे मुकम्मल खात्मे लई समाज दे हर वर्ग दा सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा है कि नशियां विरुद्ध लड़ाई केवल सरकार जां प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं सगों हरेक नागरिक की सांझी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा है कि सरकार की युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम के सार्थक नतीजे सामने आ रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि नशे दे कंट्रोल लई पेंडू अते शहरी पद्धर ते नशा रोकू कमेटियां दा गठन किया गया है। नशा वेचण वालियां दी सूचना देण वालियां दा नाम पुलिस प्रशासन वल्लों गुप्त रखिया जा रहा है। पंजाब सरकार वल्लों नशियां दे खात्मे लई चलाई जा रही मुहिम नूं जमीनी पद्धर ते होर प्रभावशाली बनाउण दे उद्देश नाल विधानसभा हलका भूआ विच कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू चक दी अगवाई हेठ सरपंचां पंचां अते VDC मैंबरां नाल विशेष समीक्षा मीटिंग की गई। मीटिंग दौरान पिंडां विच नशियां दी रोकथाम नशा तस्करी विरुद्ध की जा रही कार्रवाई अते सरकार दी मुहिम नूं होर मजबूत करन संबंधी विस्थार नाल विचार वटांदरा किया गया। इस मौके कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारू ने कहा कि पंजाब सरकार वल्लों नशियां विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम तहत नशा तस्करी विच शामिल व्यक्तियों नूं खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने दसे अंकड़े अनुसार सूबे विच हुण तक करीब 70,000 नशा तस्करां नूं गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पंजाब दे सेहत ते परिवार भलाई अते मैडिकल सिक्ख्या ते खोज मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने सरकारी रजिंद्रा हस्पताल विखे 10 सितंबर 2026 नूं होए हस्पताल दे पहले सफल किडनी ट्रांसप्लांट मगरों सेहतयाब हो रहे मरीज अते उसकी किडनी दान करन वाली पत्नी नाल मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना तहत यह जीवन रक्षक किडनी ट्रांसप्लांट बिल्कुल मुफ्त किया गया है अते मरीज ते उसकी पत्नी दोवें ही सेहतमंद ने अते हुण हस्पताल तों छुट्टी लैके अपने घर जा रहे हैं। डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि सरकारी रजिंद्रा हस्पताल विखे 300 बैडा का ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जा रहा है, जबकि 50 बैडा वाला क्रिटिकल केयर यूनिट भी अंतम पड़ा ते है। यह खबर तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर। मैंबर पार्लीमेंट डॉक्टर रजिंद्र कुमार चब्बेवाल ने पंजाब रामपुर सुनला विखे खेडां वतन पंजाब दियां तहत

रथ बिना किसी काम का नहीं। हुण इस गल ते ध्यान मारे ये पता लगता है कि जिहड़ी सथ है वह पिंड वास्ते किन्नी लाजमी चीज़ सी। हर वर्तारे दे आरंभ होण पिछे बहुत सारे कारण हुंदे हन। जेकर सथ दे आरंभ होण बारे सोचिए तां सैकड़े साल पिछे जाना पै सकता है। शायद ये गल जंगली युग तीक भी जा सकती है जदों मनुख इकला हुंदा सी ते इकला शिकार ते जांदा। पर उन्हें देखिया कि जे एक बंदा शिकार करता है तो शिकार हथों निकल जाता है। रल के पांच सत्त बंदे शिकार करते हैं तो शिकार कर लेंदे सी। सो वो साथ भी किसी तरीके सथ तक पहुँचे। सथ सिर्फ पंजाब जा भारत की ही नहीं सगो दुनिया भर का परतारा है। यूनान के शहर एथन्स के प्रसिद्ध फिलोसफर सुकरात का लोगों नाल बहस करना सथ की होंद वाल इशारा करता है। एथन्स शहर के नेड़े एक पहाड़ी सी जिसनों एथन्स की छत कहा जाता सी। उस उपर सुकरात की महफल हर रोज़ जुड़ती सी। वह लोगों नाल विचार वटांदरे करता नवीं नवीं गल्लां सुणाउंदा। यह गल सथ वल ही संकेत करती है। पंजाब दे पिंडां दी सथ भी नौजवान पीढ़ी नूं नवीं नवीं गल्लां दसदी। उन्हां नूं जिंदगी दे तजर्बे सथ विच ही पता लगदे सन जिवें कि एथन दी छत उपर सुकरात हर रोज़ होर लोगों नूं गल्लां सुणाउंदा सी। हुण जेकर पंजाब दी सथ दे आरंभ बारे देखिया जावे तो पहला वड्डा कारण है जरूरत। मनुख अज जिस तरह रह रहा है पहला इस तरह नहीं सी रहिंदा। पहला हर एक चीज़ लई दूसरे ते निर्भर होना पैंदा सी। हर काम लई दूसरे बंदे दी सलाह लैनी पैंदी सी। अज वांग संचार दे साधन इन्ने ज़्यादा नहीं सन। बिजली कोई नहीं सी हुंदी। सो किसी भी काम नूं करन लई किसी बजुर्ग की किसी तजर्बेकार की सलाह लैनी पैंदी सी ते इह घरों घरी जा के काम संभव नहीं सी। तो इस काम लई पिंड दे लोक किसी एक थां ते जुड़न लगे। हौली हौली वह थां बैठने वाली जिहड़ी सी सथ दा रूप धारण कर गई। अगला जिहड़ा मुख इहदा कारण है सथ दे पैदा होण दा घरां दी थां दा तंग होना। जेकर पिंडां दे बणतर ते नज़र मारीए तां पिंड दी जिहड़ी बणतर है वह एक किले वर्गी हुंदी सी। पिंड दा एक मुख दरवाजा सी। उस दरवाजे दे विच दी चाहे सज्जे मुड़िए जां खब्बे मुड़िए इक्को गली सारे पिंड दे उपर नूं गेड़ा कढ के मुड़ उस दरवाजे विच आ रलदी सी। ते पिंडां दी ज़्यादातर बणतर जिहड़े लाल डोरे दे अंदर पिंड हुंदे सी उहनां दी गुलाई च बणतर हुंदी सी। सो घर तंग रखे जांदे सी। घरां दी बणतर तंग रखण दा कारण चोरां दा भी बहुत खतरा सी कि चोर आउणगे ते डंगर पशु होर चोरी ना होवे। इसे करके गलियां दी बणतर भी बहुत तंग हुंदी सी। सो जदों घरां दे विच मर्दां ने वेले होना ते उहनां नूं बैठण लई गल्लबात करन लई किसे थां दी जरूरत सी। उही थां हौली हौली सथ दा रूप धारण कर गई। हुण इत्थे इक होर गल भी आउंदी है कि औरतां भी घर विच थां पालदियां सी। औरतां नूं भी वेले बैठ के दराणियां जठाणियां नाल होरां नाल गल करन लई कुछ थां चाहीदी सी। सथ दे आरंभ होण दा सब तों वड्डा कारण वेल ही है क्योंकि जिहड़ा मनुख है उह जदों कम करके थकदा है तां अपने शरीर नूं दुबारा कम करन दे योग बनाउण लई किसी ना किसी तरीके कोई ना कोई हल कढ़दा कोई मनोरंजन का साधन चाहुंदा सी। ते इह घरां दे विच संभव नहीं सी। अज वांग तां बिल्कुल भी संभव नहीं सी क्योंकि अज घरां दे विच मनोरंजन दे समां बतीत करन दे अनेकां साधन ने रेडियो तो लैके टीवी LED तक। पर उदों इस तरह का कोई साधन नहीं सी। उदों दुपहरां वेले सत्थां दे विच इकट्ठे होना उत्थे ताश खेडणी एक दूजे नाल गल्लां करनियां कई बार दूसरे पिंडां तों जां राह विच चलदे बंदे भी सत्थां विच बैठ के गल्लां सुणा दिंदे सन ते हौली हौली उह थां पक्का ही सथ बण गई सी ते इह आदत बण गई कि उत्थे जा के बैठणा है वेले वेले असीं समां पास करना है। अगला जिहड़ा इहदा मुख कारण बणदा पिंडां च सथ ते पैदा होण दा खेतीबाड़ी दे कम्मां लई सलाह लैण संबंधी। हुण जे देखिया जावे तां अज तों सैकड़े बड़े पहला खेती का कम सुखाला नहीं सी। अज तो सारी खेती ट्रैक्टर ट्रालियाँ कह लिए तकनीक के उपर आधारित है पर पहला सारा कुछ कुदरती हुंदा सी। बलदा नाल खेती करनी जिमें अजकल खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी ते खेतीबाड़ी विभाग के अफसर ते कर्मचारी पिंडां विच जांदे हन किसान मेले लगदे हन किसानां नूं नवीं खादां बारे बीजां बारे दसदे हन। ये जड़ा सारा काम सी ये उस वेले पिंडां विच सथ करदी सी। सथ

0: कहते हैं कि जब हौसलों में फौलाद और रगों में जीतने का जुनून हो तो कठिन से कठिन चुनौती घुटने टेक देती है। जापान के आइची नागोया की धरती पर आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में इसी की वानगी पेश करने के लिए भारतीय दल तैयार है। इस बार उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी पिछली बार की तरह न सिर्फ पदकों का शतक पार करेंगे बल्कि मेडल्स के नंबर्स को उससे भी आगे ले जाएंगे। हमें इस बार सभी खेलों में न सिर्फ पदक बल्कि स्वर्णिम सफलता की उम्मीद है। हमारे जांबाज एशिया के सबसे बड़े खेल मंच पर तिरंगा लहराने और पिछले सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ने के दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबले को तैयार है। 4 सालों की कठिन तपस्या और कड़ी चूर मेहनत से निकले पसीने की बूंदों से आची नागोया की जमीन को सींचा जाएगा और फिर उससे सोने चांदी और कांसे के पदकों की फसल लहलाएगी। इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ आकाशवाणी की तरफ से पेश है विशेष श्रृंखला चीयर फॉर भारत। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद शूटिंग कुश्ती बॉक्सिंग तीरंदाजी और स्क्वाश की। इन खेलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, भारत की युवा महिला पहलवान सारिका मलिक और खेल पत्रकार अभिषेक रॉय। हमारे साथ सारिका मलिक मौजूद हैं तो सवालों की शुरुआत कुश्ती से ही करते हैं। सारिका, चाहे एशिया का सबसे बड़ा खेल मंच एशियन गेम्स हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा खेल मंच ओलंपिक, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसमें हमें पदकों की सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है। पिछली बार एशियन गेम्स में हमारे पास 1 सिल्वर समेत कुल 6 पदक थे। अब खुद कई प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम की सदस्य रही हैं और अपने साथी खिलाड़ियों की प्रतिभा को अच्छी तरह से जानती हैं। इस बार कुश्ती में क्या उम्मीदें हैं?
1: इस बार कुश्ती से हमें पहले की तरह ही बहुत उम्मीदें हैं। भारत में कुश्ती खेल जो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, बहुत ही फेमस खेल है। ओलंपिक्स में और एशियन गेम्स में हमेशा ये मेडल देता है। हर ओलंपिक्स में आप देख सकते हैं 2004 से कुश्ती ने मेडल दिए हैं और एशियन गेम्स में भी हर साल 4 से 5 मेडल तो कम से कम कुश्ती देता ही है। इस बार भी हमारी जो टीम है वो बहुत ही शानदार तैयार हुई है, बहुत ही अच्छे प्लेयर्स उसमें हैं। आप बात कर सकते हैं निशा दहिया की, जो कि आपने ओलंपिक्स में भी देखा था, उनको इंजरी जरूर हुई थी ओलंपिक्स में लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो बहुत ही शानदार था। आप बात कर सकते हैं सुजीत कलकल की, जो कि अभी फिलहाल वर्ल्ड नंबर 1 चल रहे थे, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट आप बोल सकते हैं, वो रेसलिंग में हैं और उनसे पूरी उम्मीद है कि वो गोल्ड ही लेके आएंगे। आप देख सकते हैं दीपक पूनिया, एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं, और मानसी हलावत है, मनीषा भनवाला है, प्रिया मलिक हैं जो कि 2 बार की जूनियर वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो टीम हमारी बहुत ही अच्छी है और हम हमेशा की तरह उनसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं।
0: तो अभिषेक, कुश्ती दल में होंगजू एशियन गेम्स के मेडलिस्ट दीपक पूनिया, अमन सहरावत और अंतिम पंघाल फिर से मौजूद हैं। आपको लगता है कि आची नागोया में गोल्ड मेडल का बैरियर टूटेगा और हमारे खाते में स्वर्णिम सफलता भी आएगी?
2: बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने पहले भी मेडल इस प्लेटफॉर्म में ये जीत चुके हैं तो इनको पता है कि किस तरह का कंपटीशन होगा, क्या लेवल है। और जहां तक अंतिम पंगल का बात करें तो वो 2-टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट है, उनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। पेरिस ओलंपिक्स में उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था लेकिन उसके बाद से जिस तरह से उन्होंने टर्न अराउंड किया है, लगातार वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है इंटरनेशनल लेवल पे। दीपक पूनिया एक नए वेट क्लास में आ रहे, वो 86 में थे, अभी इस बार वो

0: ऊपर 97 में आ रहे हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस इस प्लेटफॉर्म में काम आएगा। सुनील कुमार जो ग्रीको रोमन में 87 में, वो भी काफी अच्छा खिलाड़ी है, वो भी मेडल जीत चुके थे लास्ट टाइम, तो ये एक काफी एक्सपीरियंस और यंग टीम का कॉम्बिनेशन है रेसलिंग में।
1: सारिका, एशियन गेम्स से पहले पहलवानों की तैयारियों पर खास ध्यान दिया गया, उन्हें न सिर्फ एक्सपोजर के लिए बाहर भेजा गया बल्कि विदेशी जमीन पर ट्रेनिंग भी दी गई और फॉरेनर कोच ने भी हमारे पहलवानों को ट्रेनिंग दी, इसका कितना फायदा इस बार मिलेगा?
2: बिल्कुल, इसका काफ़ी फ़ायदा आपको इस बार एशियन गेम्स में देखने को मिलेगा। मैं खुद नेशनल कैंप में रह रही हूँ और ट्रेनिंग कर रही हूँ नेशनल कैंप में, तो हमारे गर्ल्स रेसलिंग में फॉरेन कोच हैं, जापनीज कोच अकाशी, जो कि बहुत टेक्निकल हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड स्टेज पे जापान जो है वो वुमेन्स में लीड करता है, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप देख सकते हैं, आप ओलंपिक्स देख सकते हैं, तो जापान के 2 से 3 गोल्ड आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो जापानीज कोच हमें उनके टैक्टिक्स बताते हैं, टेक्निक्स बताते हैं, कैसे उनके साथ कॉम्पीट करना है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रहेगी, क्या स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है, अपना ट्रेनिंग प्लान जैसे हमारा चेंज किया गया है। उनका मानना है कि जैसे बाउट्स अगर दिन में होती हैं तो हमारी ट्रेनिंग भी दिन में ही होनी चाहिए, जो हमारी बाउट प्रैक्टिसेस होती हैं।
1: अच्छा।
2: स्पीड वर्क पे उन्होंने बहुत फोकस किया है, एंड्योरेंस पे, साथ ही हमारे हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर इयान बटलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं हर तरह से। तो ऐसे ही फ्री स्टाइल में आप देख सकते हैं कोच शाको हैं, सेम अभी जो फ्री स्टाइल की टीम थी वो आर्मेनिया ट्रेनिंग के लिए गई थी, ट्रेनिंग कैंप था, बहुत अच्छा फॉरेन एक्सपोजर था। उसके बाद रशिया में उन्होंने एक टूर्नामेंट खेला जिसमें उन्हें रशियन रेसलर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पे रही, सुजीत कलकल ने वहाँ पे गोल्ड जीता, विकास कालीरमन ने ब्रॉन्ज जीता और उनके साथ ही बहुत सारे इंडियन रेसलर्स को वहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर मिला और प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। सेम अगर हम देखें तो ग्रीको रोमन की जो टीम है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, आप सुमित मलिक को देख सकते हैं, सुनील कुमार को देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं। उनके साथ भी कोच गोगी जो हैं वो लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराने के लिए, तो बहुत ही अच्छा एक्सपोजर, बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपरेशंस जो हैं वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में

0: अच्छी ट्रेनिंग, बहुत ही अच्छी प्रिपेरेशंस जो है वो रेसलर्स की चल रही हैं।
1: अभिषेक, एशियन गेम्स में हमारा 15 सदस्यीय कुश्ती दल भाग लेने जा रहा है। इसमें पुरुष फ्री स्टाइल में अमन सेहरावत 57 किलोग्राम, सुजीत कलकल 65 किलोग्राम, सागर जगलान 74 किलोग्राम, दीपक पूनिया 97 किलोग्राम, रजत रूहल 125 किलोग्राम भार वर्ग में शामिल है। वहीं महिला फ्री स्टाइल में दीपांशी 50 किलोग्राम, अंतिम पंगाल 53 किलोग्राम, मनीषा भानवाला 57 किलोग्राम, मानसी अहलावत 62 किलोग्राम, निशा दहिया 68 किलोग्राम, प्रिया मलिक 76 किलोग्राम भार वर्ग में शिरकत करेंगी। ग्रीको रोमन शैली में सुमित दलाल 60 किलोग्राम, अमन बरूनिया 77 किलोग्राम, सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नितेश सिवाज 97 किलोग्राम भार वर्ग में देश की चुनौती रखेंगे। लेकिन इतने पहलवानों की मौजूदगी में महिला दल की ज्यादा तगड़ी दावेदारी मानी जा रही है, इससे आप कितने सहमत हैं और वजह क्या है?
2: बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी वुमेन्स टीम कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते आ रही है और एक नया ब्रीड भी ऊपर आ रहा है। जैसे दीपांशी फोगाट 50 केजी में है, 17 साल की है, उन्होंने ट्रायल्स में सबको सीजन्ड प्लेयर्स को हरा के एशियन गेम्स में अपनी दावेदारी पेश की है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हमारा नेक्स्ट लेवल, क्योंकि हमें एलए ओलंपिक्स भी देखना है, तो किस तरह से यंग ब्रीड हमारी परफॉर्मेंस कर रही है। तो अंतिम पंगाल तो है ही, निशा दहिया है, सीजन प्लेयर है, उनसे उम्मीद रहेगी। पर हमें यह भी देखना है कि ये जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, चाहे वो दीपांशी हो, मानसी अलावत हो, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में इंटरनेशनल लेवल पे ये जीत के आ रहे हैं, तो एशियन गेम्स में इनको एक पास एक बहुत बड़ा मौका है कि अपने आप को जो है किस लेवल पे ये देखती है और आगे कैसे इस परफॉर्मेंस को लेके जाती है। मेंस खिलाड़ियों में मैं अमन शेरावत की बात स्पेशली करना चाहता हूं, क्योंकि उनका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है पेरिस ओलंपिक्स में, जब रेसलिंग एक बुरे दौर से गुजर रहा था, कैंप नहीं हो रही थी, फिर भी वो मेडल लेके आए हमारे लिए और उसके बाद से वो कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। तो अमन शेरावत के पास एक्सपीरियंस है, 57 केजी लोअर वेट कैटेगरीज में हमेशा फ्री स्टाइल में हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। और सुजीत कलकल 65 केजी एक ऐसे कैटेगरी में है जो कि बजरंग पुनिया का कैटेगरी कहा जाता है, और बजरंग पुनिया के बाद अगर ऐसा कोई रेसलर आया है जो इतना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो सुजीत कलकल है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मौका मैं मानता हूँ एशियन गेम्स में कि किस तरह से वो यहाँ पे परफॉर्म करते हैं।
1: एशियन गेम्स में कुश्ती में कंपटीशन का लेवल काफी तगड़ा होता है और सारिका आमतौर पर किन देशों की कठिन चुनौती होगी और उनके खिलाफ हमारी क्या रणनीति होगी?
0: बिल्कुल, एशिया को जो है वो कुश्ती का हब माना जाता है। एशिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको कुश्ती में देखने को मिलता है। एशियन नेशंस हैं जैसे जापान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, चाइना और इंडिया, ये बहुत ही तगड़े माने जाते हैं कुश्ती में, बहुत स्ट्रांग नेशंस हैं। इनकी जो टीम होती है वो काफी अच्छी होती है। आप मंगोलिया को भी ले सकते हैं, ये सारे देश काफी अच्छी टक्कर देते हैं। बहुत अच्छा कंपटीशन रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं 50 किलो में यूई सुसाकी आपको कॉम्पीट करती नजर आएंगी, जो कि कई बार की वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ऐसे ही हर एक वेट में 57 केजी में आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन काफी अच्छा। 68 में बहुत अच्छे अच्छे कंटेंडर्स हैं और 62 में भी मंगोलिया है, जापान है, 76 में किर्गिस्तान है, तो बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहेगा। और जो मेडल की दावेदारी है वो इंडियन प्लेयर्स की ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इंडिया की टीम मैं मानती हूँ कि अभी इन सब से ऊपर बढ़ के आ रही है। जापान को अगर कोई सबसे ज्यादा टक्कर दे सकता है तो वो अभी इंडिया की टीम है
1: जी। और अभिषेक, कुश्ती से अब शूटिंग की तरफ चलें तो निशाने लगाने के इस खेल में हमारी सबसे तगड़ी दावेदारी है। प्रतियोगिता की बात करें तो मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में पार्थ राकेश माने, हिमांशु ढिल्लो, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 10 मीटर एयर राइफल में इलावेनिल वलारीवान, सोनम उत्तम मस्कर, विदर्शा विनोद, मेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, नीरज कुमार, रुद्रांश पाटिल, विमेंस 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में आशी चौक से विदर्शा के विनोद, तिलोत्तमा सेन, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में केदारलिंग बी उचा गनवे, गौरव कमलजीत, विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में सुरुचि सिंह, ईशा सिंह, मनु भाकर, मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में अनिश भानवाला, विमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में ईशा सिंह, मनु भाकर, राही सरनोबत, 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में केदारलिंग बी उचा गनवे, सुरुचि सिंह, मेन्स ट्रैप में किनान चेनाई, अवर रिजवी, शपथ भारद्वाज, विमेंस ट्रैप में नीरू, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, मेंस स्कीट में अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान और विमेंस स्कीट में पारिनाज धालीवाल, राजा ढिल्लो, महेश्वरी चौहान जैसे 30 शूटर्स विभिन्न वर्गों में शामिल हैं। युवा और अनुभवी खिलाड़ियों से भरे इस दल में किन खास पर

0: नजरें रखनी चाहिए?
1: बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने धर्मेंद्र जी। पहले तो यहाँ बता दो कि शूटिंग एज ए स्पोर्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी इवेंट्स कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो। सबसे पहले हम लोग शूटर्स को हमारे देखते हैं कि ये कितने मेडल्स जीतेंगे। तो लास्ट टाइम भी जो हमारा 100 का छलांग हम लोगों ने मेडल टैली में पार किया था, उसमें शूटिंग का बहुत बड़ा योगदान था। 22 मेडल्स हम लोग लेके आए थे, उसमें से 7 गोल्ड मेडल है, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल है। उन 7 गोल्ड मेडल्स में आप देखिए तो एथलेटिक्स जो था हमारा सबसे टॉप में था, 28 मेडल्स आए थे, उसके बाद शूटिंग का नंबर है। तो इस बार भी हमें 100 से पार करना है तो शूटिंग टीम को अच्छा करना होगा। और इस बार मुझे ज्यादा होप्स इसलिए भी है क्योंकि उसके दो कारण हैं। एक कारण यह है कि इस साइकिल में अगर आप देखेंगे तो पिछले एशियन गेम्स के बाद जो पेरिस ओलंपिक्स हुआ उसमें हमने शूटिंग में काफी अच्छा किया। मनु भाकर 2 मेडल लेके आई और स्वप्निल कुसाले 50 मीटर राइफल 3 में मेडल जीता, 3 मेडल्स हमारे शूटिंग में। उसके बाद जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ लास्ट ईयर उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हमने इंडिविजुअल कैटेगरीज में मेडल्स जीते, ऐश्वर्या प्रताप तोमर, ईशा एलाविनिल। तो ये सारे जाएंगे इस एशियन गेम्स में कैरिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम लोगों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के जैसे प्लेटफॉर्म में इंडिविजुअल में मेडल जीता है। ये उम्मीद है हमें कि पिछले बार जितना 22 मेडल्स था उससे हम लोग ज्यादा जीतेंगे इस बार।
0: अगर हांगझो एशियन गेम्स 2023 में हमारे शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पदक जीते नहीं थे बल्कि कह सकते हैं कि बटोरे थे, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज समेत कुल 22 पदक जैसी आपने बात की भारत की झोली में आए थे। अभिषेक, इस बार पदकों की संख्या से आगे निकलना हमारे निशानाबाजों के लिए खुद कितनी बड़ी चुनौती होगी?
1: चुनौती तो है क्योंकि शूटिंग एशियन लेवल पे एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बहुत स्ट्रांग कंटेंडर्स है। पिस्टल में साउथ कोरिया बहुत स्ट्रांग है, चाइनीज शूटर्स है, तो बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है। बट हमारे शूटर्स कुछ कम नहीं है, हम लोगों ने प्रूव किया है। देखना यह है कि इंडिविजुअल कैटेगरी में हम लोग कितने मेडल्स इस बार जीतते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जितने मेडल्स जीते थे वो ज्यादा मेडल्स टीम कैटेगरी में आए थे, तो टीम कैटेगरी ओलंपिक्स में नहीं है। इस बार हमारे शूटर्स का ये टारगेट है कि इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन में हम लोग ज्यादा मेडल लाए ताकि उस तरह से हमारा आगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का ओलंपिक्स से क्वालिफिकेशन हो और फिर एले ओलंपिक्स का तक का टारगेट कर सके। तो यहां से हमारी जो है शुरू होती है एले ओलंपिक्स की प्रिपरेशन शूटर्स की। और बहुत सारे शूटर्स है जिनको पहला बार ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है खेलने के लिए। एक्चुअली मिक्स्ड है, नए प्लेयर्स काफी आए हैं और पुराने प्लेयर्स भी है, तो उम्मीद है काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: और सारिका, आप खुद युवा और देश की उभरती हुई पहलवान है और चोट की समस्या का सामना किया है, आपसे ये जानना चाहूंगा कि स्ट्रेंथ स्टेमिना के इस गेम कुश्ती में पहलवानों के लिए फिटनेस बनाए रखना कितना जरूरी होता है?
2: कुश्ती में फिटनेस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ना सिर्फ कुश्ती में बल्कि हर एक स्पोर्ट्स में। मोस्टली अगर हम बात करें तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जैसे बॉक्सिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, टाई कमांडो हो गया, जूडो हो गया, तो इनमें फिटनेस लेवल का बहुत आपको फर्क देखने को मिलेगा। फिटनेस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपको, इसमें पावर भी चाहिए, एंड्योरेंस भी चाहिए, स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए। आपको बाउट लड़नी है कंटिन्यू, आपकी पूरी बॉडी की पावर लग रही है, आपको सांस भी चढ़ेंगे, आपका दम भी फटेगा, उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और एक बहुत ही अच्छा फिटनेस लेवल आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। अभी अगर हम रेसलर्स की बात करें तो रेसलिंग में हमारे जो कोचेस हैं और साथ में हमारे स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के कोच भी हम फेडरेशन ने दिया हुआ है, तो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका प्रॉपर हमारे पर ध्यान है कि हमारी फिटनेस लेवल है वो बनी रहे, डाइटिशियन हमारे साथ है, हमारी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखा जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिटनेस बनाए रखना, अगर आपके फिटनेस अच्छी है तो आपको इंजरीज के चांसेस भी कम होंगे।
0: अभिषेक, भारत की तीरंदाजी टीम की बात करें तो पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोम्बदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, महिला रिकर्व टीम में कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत शामिल हैं। वहीं पुरुष कंपाउंड टीम में साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणि रत्नम तिरुमुरु और महिला कंपाउंड टीम में ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपर्थी, पृथिका प्रदीप का नाम शामिल है। कुछ दिन पहले धीरज बोम्बदेवरा ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वो इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष रिकर्व तीरंदाज बने। धीरज की इस कामयाबी से भारतीय कैंप का जोश कितना हाई होगा?
1: बहुत ज्यादा हाई होगा, क्योंकि जब एक आपका खिलाड़ी वर्ल्ड कप फाइनल जैसे प्लेटफॉर्म से जीत के आता है जिसमें सिर्फ टॉप 8 शूटर्स आर्चर्स खेलते हैं और वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, तो एक मोटिवेशन आ जाता है कि एक हमारा आर्चर जाके इतने बड़े लेवल पे जीता है। और वहां से डायरेक्टली धीरज मेक्सिको से जापान पहुंच चुका है और ट्रेनिंग कर रहा है और एक्सपीरियंस काफी है, पेरिस ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था धीरज का। तो धीरज से उम्मीद है

0: कि वो टीम को आगे लेके चलेगा, क्योंकि इस बार का जो टीम है आर्चरी का वो काफी नया टीम है। तीन प्लेयर ही जो है लास्ट एशियन गेम्स से इस बार खेल रहे हैं, उसमें से धीरज है, ज्योति सुरेखा है कंपाउंड वुमेन में, अंकिता भगत है, बाकी सारे नए आर्चर्स हैं। और लास्ट टाइम का जो आर्चरी का हमारा परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था, 9 मेडल्स हमारे आए थे, हम लोगों ने कंपाउंड में स्वीप कर गए थे हम लोग। इस बार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्चरी में LA क्वालिफिकेशन भी इस यहां से होगा, तो वो हमारी कोशिश रहेगी कि हम यहां से बर्थ निकाल सके ओलंपिक्स का भी।
1: जी, और निशाने साधने के पारंपरिक खेल तीरंदाजी में पिछले एशियन गेम्स में भारत के धनुर्धरों ने 5 स्वर्ण समेत 9 पदक जीते थे। टीम कॉम्बिनेशन को देखते हुए क्या लगता है इस बार हम उससे आगे निकलेंगे?
0: हमें आगे निकलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी है और कुछ नए भी है। ज्योति सुरेखा की अगर बात करें तो बहुत उनका एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम लोगों ने, ज्योति और ओजस ने लास्ट टाइम मिक्स्ड फॉर्मेट में कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता था और साउथ कोरिया की टीम को हराया था। इस बार उनके साथ साहिल यादव है जो कि नए प्लेयर है, लेकिन वो काफी टैलेंटेड है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उनका गोल्ड मेडल है और यही वो फॉर्मेट है जहां पे हमारा LA ओलंपिक से क्वालिफिकेशन है। तो उम्मीद है अगर उस तरह का हम लोग परफॉर्मेंस करें तो हमें LA ओलंपिक से कोटा भी मिल जाए। तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है आर्चरी के, क्योंकि दो तीन है, कि वो पूरा टीम को साथ में आगे लेके चले।
1: और सारिका, खेलों के विकास के लिए नए भारत में जिस तरह से खेल मंत्रालय, साई और तमाम खेल संघ काम कर रहे हैं, उससे खिलाड़ियों के लिए कितना माहौल बेहतर हुआ है?
2: खिलाड़ियों के लिए माहौल काफ़ी बेहतर हुआ है, काफ़ी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं एंड स्कीम्स वगैरह बहुत अच्छी अच्छी निकाली गई हैं। जैसे अगर हम खेलो इंडिया स्कीम की बात करें तो उससे बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है, टॉप स्कीम है उससे बेनिफिट मिल रहा है, ना सिर्फ गवर्नमेंट बट प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, बच्चों को जो है, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो है वो बहुत फ़ायदा मिल रहा है एंड जो कैंप वगैरह लग रहे हैं हमारे तो उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। हर तरह से रिकवरी, ट्रेनिंग, डाइट सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छे से हमें काम आ रही हैं।
1: और अभिषेक, बॉक्सिंग का जब भी नाम आता है तो पदकों की हमारी आस बढ़ जाती है। इस बार बॉक्सिंग दल में पुरुष वर्ग में जादूमणि सिंह 55 किलोग्राम, सचिन सिवाच 60 किलोग्राम, सुमित कुंडू 70 किलोग्राम, अंकुश 80 किलोग्राम, कपिल पोखरिया 90 किलोग्राम, नरेंद्र बेरवाल 90 से अधिक किलोग्राम भार वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। महिला वर्ग में साक्षी चौधरी 51 किलोग्राम, प्रीति पवार 54 किलोग्राम, प्रिया गंगा 60 किलोग्राम, परवीन हुडा 65 किलोग्राम और लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम वर्ग में देश की झंडा बरदार होंगी। इन नामों को सुनकर बेहद दमदार दावा नजर आ रहा है, आप क्या मानते हैं?
0: बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि इन बॉक्सिंग टीम की हमारी परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ गेम्स में काफी अच्छी रही है, खास करके महिला टीम की जो 5 गोल्ड मेडल वहां पे जीता। लेकिन एशियन गेम्स बिल्कुल ही डिफरेंट चैलेंज होगा, एशियन गेम्स में कंपटीशन और भी ज्यादा होने वाला है। पर हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स है जैसे लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक मेडलिस्ट है, 75 किलो कैटेगरी में खेल रही है, लास्ट टाइम उन्होंने इसी कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता था, तो उनसे उम्मीद काफी होगी। प्रीति पवार का मैं नाम लेना चाहूंगा, 54 kg में वो काफी कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रही है, एशियन चैंपियनशिप में अभी वो गोल्ड मेडल जीती है इस साल, तो ये सारा परफॉर्मेंसेस वहां पे जाके एशियन गेम्स में एक और बड़े मंच में देना, ये हमारी तैयारी दिखाएगी कि हम लोग कितना परफॉर्म कर सकते हैं वहां पे। और वैसे ही प्रिया गंगा से, ये नए टैलेंट है लेकिन इन्होंने भी एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो हमारी महिला टीम काफी अच्छा करते हुए एशियन गेम्स तक अभी तक कर रही है, उम्मीद है इनसे काफी अच्छा उम्मीद रहेगा। मेंस टीम नई टीम है, थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, पर जादूमणि सिंह है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सचिन सिवाच एक्सपीरियंस्ड है उनके पास अगेन, और नरेंद्र बेरवाल लास्ट टाइम इन्होंने मेडल जीता था। उम्मीद हमारी रहेगी कि हालांकि कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा होने वाला है बॉक्सिंग में, कि वो लास्ट टाइम का जो हमारा आंकड़ा था 4 मेडल का उससे आगे जा सके।
1: हांगझो में मुक्केबाजी में हमने लवलीना बोरगोहेन के 1 रजत समेत 5 पदक जीते थे, इनमें से 4 मेडल महिला मुक्केबाजों के नाम थे। अभिषेक, वैसे तो दोनों वर्गों में पंच के एक से एक उस्ताद नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या मेरी तरह आपको भी लग रहा है कि महिला वर्ग में पदकों की हमारी ज्यादा तगड़ी और दमदार चुनौती है?
0: बिल्कुल, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप्स जितने हो, उसमें हमारी जो वुमेन बॉक्सर्स हैं उनका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा आ रहा है और बहुत कंसिस्टेंटली से यह परफॉर्मेंस आ रहा है। सारे टॉप बॉक्सर्स को आप अगर देखें, चाहे वो चाइना की हो, कजाकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, इनको हरा रहे हैं हम लोग। प्रीति पवार ने भी इनको हराया है एशियन चैंपियनशिप का जब गोल्ड मेडल

0: जीतता हो, जब एशियन टाइटल जीत के अगर आप जब एशियन गेम्स में जाते हो तो कॉन्फिडेंस ही कुछ अलग होता है कि मैं ये इस लेवल पे जीत चुकी हूँ तो यहाँ पे भी वही कर सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा इनका कि एशियन चैंपियनशिप में हमारी टीम, महिला टीम ने काफी अच्छा किया है और एशियन गेम्स में जाके हमें रिपीट करना है वो परफॉर्मेंस।
1: सारिका, एशियन गेम्स से ठीक पहले भारतीय कुश्ती दल को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय पुरुष पहलवान डोपिंग के चलते एशियन गेम्स में उतरने से पहले ही बाहर हो गए। इसका कितना मनोवैज्ञानिक असर बाकी के पहलवानों पर पड़ सकता है?
2: इसका काफी असर पड़ेगा रेसलिंग पे, खास करके प्लेयर्स पे। जैसे एक बहुत अच्छी टीम हमारी तैयार हो गई थी और जो भी प्लेयर्स हमारे डोपिंग में फंसे हैं उनसे पूरी दावेदारी थी मेडल की। आप मुकुल दहिया को लगा सकते हैं, एशियन चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और उनको एक बहुत स्ट्रांग कंटेंडर हम मान सकते थे 86 केजी में। पूरे भारत को उनसे उम्मीदें थी। दीपांशु 130 किलोग्राम भार वर्ग में जो कि खेलने वाले थे ग्रीको रोमन में, उन पर भी डोपिंग का बैन है। और दीपक ग्रीको रोमन के ही पहलवान हैं, उन पे भी बैन लगा है। तो एक बहुत बड़ा झटका भारतीय कुश्ती के लिए ये है। तो अभी उनका नाम तो रिप्लेस नहीं हो सकता क्योंकि टाइमलाइन जो होती है एशियन गेम्स में जाने की, एंट्रीज भेजने की, वो बंद हो चुकी है। लेकिन जो हमारी टीम अभी बाकी बची है, हमें उनसे पूरी उम्मीदें हैं कि वो इन सारे मेडल्स को कवर करें।
1: जी, और अभिषेक, अब बात स्क्वाश की, टीम की बात करें तो एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय टीम में सूरज कुमार चंद पुरुष टीम और मिक्स डबल्स, वीर चोटरानी मेंस सिंगल्स और मेंस टीम, वेलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स मेंस टीम, अभय सिंह मेंस सिंगल्स और मेंस टीम में शामिल है। महिला वर्ग में युवा अनाथ सिंह, जोशना चिनप्पा के अनुभव के साथ साथ तन्वी खन्ना और शमीना रियाज की भी चुनौती होगी। इस गेम में हमारे खिलाड़ियों ने एशिया में अपनी दमदार चुनौती पेश की है, तो अनुभव और युवा जोश वाली ये टीम कितना कमाल कर सकती है?
0: बहुत कमाल कर सकती है। और मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ क्योंकि अगर अनाहत को देखें तो उनका काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। इस साल वर्ल्ड जूनियर टाइटल जीती है अनाहत और उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। और लाइक आर्चरी, स्क्वाश भी एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें एले ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन स्पॉट भी होगा, तो वो उसके लिए भी हम लोग फाइट करेंगे। हमारी मेन्स टीम लास्ट टाइम गोल्ड जीती थी और वही टीम इस बार भी उतरी है, तो वो एक्सपीरियंस भी है, तो उनसे भी हमें काफी उम्मीद रहेगी कि वो फिर से गोल्ड लेके आए। तो ओवरऑल स्क्वाश में मुझे लगता है परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहेगा। जोशना चिनप्पा जो कि बहुत ही एक सीजन प्लेयर है और इस लेवल पे काफी मेडल्स हमें दे चुकी है, वो भी मिक्स टीम में है, तो उम्मीद है कि काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा स्क्वाश से भी।
1: 2023 की बात करें तो भारत ने स्क्वाश में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। उस टीम के कई खिलाड़ी इस बार शामिल नहीं हैं। दूसरी तरफ अनाहत सिंह जैसी युवा प्रतिभा की अगुवाई में क्या भारत अपने मेडल्स के पिछले आंकड़े को पार करता दिखाई दे रहा है?
0: कंपटीशन काफी टफ है स्क्वाश में, मलेशिया होगा, बाकी टीमें और भी होंगी, तो ये देखना पड़ेगा कितना हम लोग चैलेंज कर सकते हैं टॉप कॉम्पिटिटर्स को। बट इस लेवल पे जब आप खेलते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन अलग होता है कि आप टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एशियन गेम्स में, तो आपको परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो जाता है। तो ये देखते हुए मुझे लगता है काफी अच्छा टीम परफॉर्म करेगी और अनाहत के ऊपर तो काफी फोकस रहेगा कि वो कैसा करती है। अगर वो एक सिंगल्स यहाँ से बर्थ निकाल सकती है ओलंपिक्स के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए।
1: सारिका, दबाव की परिस्थितियों में एक पहलवान के लिए अपने जज्बातों पर काबू बनाए रखना कितना जरूरी होता है, और जब आप मुकाबले में पिछड़ रही हो तब स्टैंड में लहराता एक तिरंगा और समर्थकों का एक जोश, जो आवाज उठती है स्टैंड से, वो आपके अंदर कितनी स्फूर्ति भरती है?
2: खिलाड़ियों के लिए दबाव की स्थिति में अपने माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। काफी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो दबाव में आके पिछड़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि मैं तो हार रहा हूँ, लेकिन तब आपको पीछे से शोर सुनाई देता है, चीयर सुनाई देता है, इंडिया इंडिया, तो वो आपके अंदर एक जोश लाता है कि नहीं, मुझे करना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए करना है। और तब आप वो इंडिया का कॉस्ट्यूम पहनकर मैट पे जाते हो या अपने रिंग में जाते हो। हर स्पोर्ट्स के इस पर्सन की फीलिंग सेम होती है, तो वो अपने लिए नहीं कॉम्पीट करता, वो अपने देश के लिए कॉम्पीट करता है। उसको ये होता है कि मेडल मेरा नहीं है, मेरा देश का है और मुझे अपने देश के लिए मेडल लाना है। तो प्लेयर्स में सबसे ज्यादा मैं ये मानती हूँ कि जो अपने माइंड को कंट्रोल करता है, जो अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखता है, वो हर एक सिचुएशन को टैकल कर सकता है, हर एक सिचुएशन में जीत सकता है। और रेसलिंग स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो हमारे में ऐसा होता है कि लास्ट के 10 सेकंड में भी आप अगर स्कोर ले रहे हो तो आप जीत सकते हो। आपके पास ऑप्शन बचा होता है कि आप अटैक करके स्कोर ले सकते हो। और

0: तब आपको पीछे से चीयर सुनाई देता है तो बहुत आपका मनोबल बढ़ाता है, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं, मैं अकेला नहीं हूँ
1: जी। और आपने एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती दल की तो तमाम बातें कर ली, अब आपने भी देश के लिए कई प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीतकर तिरंगे का मान बढ़ाया है, आपने आगे अपने करियर के लिए क्या लक्ष्य तय कर रखा है?
0: हर खिलाड़ी की तरह मेरा भी यही सपना है कि ओलंपिक्स में जाना है, देश को रिप्रेजेंट करना है और देश के लिए मेडल लेकर आना है। तो मेन फोकस तो एलए ओलंपिक्स का ही रहेगा। मैं भी यही चाहूंगी कि मैं एलए ओलंपिक्स में जाऊं और अपने देश का मान सम्मान बढ़ाऊं, गौरव बढ़ाऊं और वहां से मेडल लेकर आऊं।
1: और अभिषेक, चलते चलते एक सवाल कि क्या भारतीय दल आपको पदकों के मामले में पिछली बार से आगे निकलता दिखाई दे रहा है?
2: बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से हमारी प्रिपरेशन हुई है, आई थिंक काफी सब कुछ हम लोगों ने कवर किया है। हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया कि जिस तरह वहां पे हमें अकोमोडेशन मिलेगा क्रूज शिप में, कंटेनर्स में, हम लोगों ने हमारे साई सेंटर्स में, पटियाला में, बेंगलोर में एथलीट्स को उसी तरह का अकोमोडेशन दिया ताकि वो एकोमोडाइज कर जाए। बाहर हम लोग एथलीट्स को काफी भेजा गया है इंटरनेशनल एक्सपोजर के लिए, जैसे कि सारिका ने बताया, फॉरेन कोचेस काफी आए हैं, तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन हुआ है। तो ऐसा जब प्रिपरेशन होता है तो एथलीट के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रिपरेशन तैयारी हम लोग करके जा रहे हैं तो कुछ हम लोगों ने छोड़ा नहीं है, अब सिर्फ वहां पे स्टेज में जाके हमें परफॉर्म करना है, मेडल जीतना है।
1: साथियों, एशियन गेम्स का मंच तैयार है, हमारे खिलाड़ी भी हर चुनौती को तोड़कर पोडियम तक पहुंचने की जोरदार तैयारी में हैं। उम्मीद है कि आईची नागोया में होंगझोंग में जीते पदकों का न सिर्फ आंकड़ा बढ़ेगा बल्कि मेडल का रंग भी और सुनहरा होगा। सारिका मलिक, आपको उज्जवल भविष्य की दुआ के साथ साथ स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: और अभिषेक रॉय, आकाशवाणी को समय देने के लिए आपका भी धन्यवाद।
2: थैंक यू।
1: फिलहाल चीयर फॉर भारत कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 100.9 मेगाहर्ट्स, FM बैंड 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते DTS दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लो जी इस टाइम साडी कड़ी ते 8:03 हो रहे ने ते वेला हो गया है प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा।

साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।

0: ਲੋ ਜੀ ਜਨਾਲੀ ਹੁਣ ਵੇਲੋ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਇਸੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਜੀਆਰਐਮ 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਅਤੇ ਡੀਟੀਐਚ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ 'ਤੇ 8:45 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ
1: नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा अब

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और AI तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा

0: कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
1: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
2: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
3: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
4: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान

0: मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for greater industry participation in emerging technologies to make India an early leader. Leading global CEOs at Semiconductor Roundtable express confidence in India's potential. Union Cabinet approves hike in EPFO wage ceiling from 15,000 to 25,000 rupees per month. 51 lakh more employees to be benefited. Government declares Pakistan-based Shahzad Bhatti Network a terrorist organization under UAPA. New Delhi expresses deep concern at drone attack near Makkah in Saudi Arabia, urges early restoration of peace and stability in the region. A special NIA court in Chhattisgarh sentences 10 convicts to death in 2013 Jhiram Valley Maoist attack case in Bastar district. And veteran Kannada actor Anant Nag to be conferred the prestigious Dada Saheb Phalke Award for 2024.

0: चर्चा का विषय है।
1: ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है यूपीआई भुगतान में एमडीआर की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक छोटी सी दुकान, एक मोबाइल स्क्रीन और कुछ सेकंड में भुगतान पूरा। न कैश गिनने की जरूरत, न छुट्टे पैसे की तलाश, न बटुए में नोट रखने की चिंता। एक क्यूआर कोड, एक मोबाइल और पैसा पहुंच जाता है पलक झपकते ही। यही है आज का भारत, जहां यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह की चाय से लेकर बड़ी खरीदारी तक, छोटी दुकान से लेकर बड़े कारोबार तक, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है यूपीआई। लेकिन जब कोई व्यवस्था इतनी बड़ी हो जाए तो एक सवाल भी उतना ही बड़ा हो जाता है, इसे चलाने की कीमत कौन चुका रहा है। और यहीं से शुरू होती है आज की हमारी चर्चा। पिछले दिनों यूपीआई पेमेंट्स को लेकर एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट के नए फ्रेमवर्क की घोषणा की गई। आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और सीनियर बैंकर के साथ इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्र। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: इससे पहले कि अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें, आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए बता दें कि जो नया एमडीआर फ्रेमवर्क

0: आया है उसके पांच महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को किया गया यूपीआई भुगतान पूरी तरह से एमडीआर फ्री रहेगा। छोटे मूल्य के यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शन यानी 2000 रुपए तक के भुगतान पर एमडीआर नहीं लगेगा। 2000 से अधिक की राशि पर 0.4% एमडीआर लागू होगा। ये ग्राहक से लिया जाने वाला यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है बल्कि मर्चेंट साइड फ्रेमवर्क है। जिन छोटे दुकानदारों की या कारोबारियों की यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स 1,00,000 रुपए हर महीने है उनके लिए 0 एमडीआर व्यवस्था जारी रहेगी। 75,000 से अधिक के एलिजिबल ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा, यानी ट्रांजैक्शन बढ़ने के साथ एमडीआर अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ये हैं वो पांच इंपॉर्टेंट पहलू जो एमडीआर के नए फ्रेमवर्क का हिस्सा हैं। विकास जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं और आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एमडीआर, जिसकी बहुत चर्चाएं पिछले 2-3 दिनों में है, ये है क्या और यूपीआई की इस पूरी कहानी में इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई?
1: देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि यूपीआई आज देश का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी लेन देन हो रहा है ना केवल वो स्पीड के साथ हो, एक्यूरेट हो, लेकिन वो सुरक्षित भी हो। तो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है और हमें इसमें काफी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है ताकि साइबर सिक्योरिटी ना हो, संबंधित कोई समस्याएं ना हो, फ्रॉड ना हो। तो ये कस्टमर्स प्रोटेक्शन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कस्टमर्स प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनोवेशन की आवश्यकता रहती है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इतने बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जहां आज की तारीख में 56 करोड़ लोग अनबोर्ड हो चुके हैं और लगभग 6.5 करोड़ आपके छोटे बड़े मर्चेंट उसमें शामिल है, लगभग 750 बैंकों के साथ भी ये लिंक, तो कितना बड़ा, विश्व में मैं समझता हूँ ऐसा व्यवस्था कहीं भी नहीं होगा जहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए होंगे किसी पेमेंट सिस्टम में, इतने मर्चेंट्स जुड़े होंगे। और तो और इसमें लगभग 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन रोज हो रहा है और लगभग 1 ट्रिलियन जो पेमेंट जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसकी वैल्यू जो है लगभग 1 ट्रिलियन है। आप समझ सकते हैं कितने बड़े स्तर पे ये कार्य हो रहा है। तो ये स्वाभाविक है जब काम इतने बड़े स्केल पे हो जाए तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहती है। अब ये इन्वेस्टमेंट की खर्चा कौन बियर करेगा, उसमें ये बिल्कुल सही है, ये आवश्यक है कि जो आम नागरिक है, जो छोटे काश्तकार है, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं, उनको इसका कोई, उनके ऊपर कोई इसको नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कोई इफेक्ट, विशेष रूप से छोटे काश्तकार हैं। लेकिन ये है कि एक समय ऐसा आएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट से करने से हम बच नहीं पाएंगे, ताकि क्योंकि सुरक्षा भी इतनी ही आवश्यकता है जितना की गति है और पारदर्शिता है। तो मैं समझता हूँ उसमें जो आपकी जो प्लेयर्स इसमें है, उसमें आपका TPAP जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर है। फिर इसमें एक PSP बैंक है जो कि वो दरवाजा खुलता है और बैंकों के साथ जोड़ता है, मतलब बैंकों के साथ या आपकी NPCI के साथ जोड़ता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दूसरे बात, दोनों बैंक है, एक बैंक जो जिसमें डेबिट होता है पैसा कस्टमर का, और मर्चेंट का बैंक है जहां पैसा क्रेडिट होता है। तो ये सारे एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व है, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व है। तो अब सरकार ने ये प्रावधान तो रखा है कि 2000 तक इसमें कोई शुल्क नहीं देगा, मार्केट डिस्काउंट रेट 2000 से ज्यादा अगर हो तो उसमें एक सीमा रखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक का उसमें MDR लगेगा, मार्केट डिस्काउंट रेट। ये पैसा जो है, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं आपके थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाले बैंक्स, PSP बैंक जो कि पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, और जो रिसीविंग बैंक और पेइंग बैंक, इस सब में ये पैसे बटेंगे ताकि वो इन्वेस्टमेंट और कर पाए, मशीनरी में, IT में और पैसे लगाएं।
0: जी विकास जी, जब हम MDR की चर्चा कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी जहन में उभरता है और बहुत सारे श्रोताओं के जहन में भी होगा कि MDR का भारतीय अर्थव्यवस्था में किस तरीके का योगदान है, चूंकि जितनी भी कोशिशें हो रही हैं उन कोशिशों का लक्ष्य एक ही है कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, सुविधाजनक बन सके और 2047 में हम विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकें। हम इस MDR फ्रेमवर्क पर एक के बाद एक डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि MDR और भारतीय अर्थव्यवस्था का समायोजन किस तरीके का है।
1: कोई भी अर्थव्यवस्था हो, आजकल हम IT में इन्वेस्टमेंट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि कोई काम पुख्ता हो, जो एनेबलिंग सिस्टम है

0: उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। तो एमडीआर से तो सरकार के पास कोई पैसे इसमें नहीं आएंगे, ये एमडीआर के जो भी पैसे इसमें मार्चेंट से लिए जाएंगे तो वो पैसे जाएंगे ये स्टेक होल्डर्स के पास जो लोग के यूपीआई प्रोसेस में जुड़े हुए हैं। मैंने बताया ना देयर आर 3-4 प्लेयर्स जो उसमें हैं। तो अब देखिए जनधन के माध्यम से लगभग 60 करोड़ खाता खोला है और अभी केवल 56 करोड़ हमारे, एक तो क्योंकि बहुत अच्छा काम हुआ है 56 करोड़ लोग आ गए हैं, दूसरा ये है कि इसमें और भी स्कोप है लोग को ऑनबोर्ड करने के लिए। गांव के लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो नॉर्मल फोन है या फोन है भी नहीं, तो वो सब लोगों को अभी अनबोर्ड करने का और स्कोप है। और हम कैशलेस इकोनॉमी की बात जब करते हैं तो कैशलेस इकोनॉमी तभी हो सकता है जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें यूपीआई को अपनाएं। तो इसमें अभी और भी स्कोप है। तो ये कहा जाता है एक कि इसको जीरो जो एनडीआर रेट है और कुछ दिन चलता है और उसके बाद में जब और लोग अनबोर्ड हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ उसमें कुछ रेट शुल्क लगता है, उसमें शुल्क लग रहा है मार्चेंट की जो ट्रांजेक्शन के ऊपर, ये यूपीआई के ऊपर नहीं लग रहा है
1: जी।
0: कोई शुल्क ये ट्रांजेक्शन जो होगा मार्चेंट उसमें भी 1 लाख तक, ये छोटे काश्तकार छोटे एमडीआर वाले हैं, उनको सब्जी वाला है चाय वाला है, 1 लाख तक वो पर मंथ जब उनके पास ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसके ऊपर उनको कुछ P2 वो आते हैं उस कैटेगरी में P2PM तो पर्सन टू पर्सन मर्चेंट, उसमें कोई उनको शुल्क नहीं लगेगा। अगर 1 लाख से किसी महीने में ज्यादा हो गया अगले महीने कम हो गया, पिछले 3 महीने का एवरेज देखा जाएगा, वो एवरेज में अगर ज्यादा हो गया तो फिर उनको उस हिसाब से शुल्क लगेगा। जैसे ही बना गया है 0.04% और वो 300 रुपये की सीमा है, तो ये छोटा सा रकम है तो शुरुआती दौर में थोड़ा सा इसमें समय लगेगा इसको स्टेबल होने में, पर मैं समझता हूँ कि इसको लोग अपनाएंगे और मार्चेंट्स भी अपनाएंगे क्योंकि इतने बड़ी सुविधा है। अब मैं समझता हूँ छुट्टी की प्रॉब्लम है, कैश के गंदे नोट का प्रॉब्लम है और फिर दोबारा उसमें नहीं जाएंगे लोग।
1: शरद जी कार्यक्रम में अब तक हमने समझा कि एमडीआर क्या है और नए एमडीआर फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण बातें भी हमने श्रोताओं के साथ साझा की। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब यूपीआई लॉन्च हुआ तब इसे फ्री रखा गया, अब जब डिजिटल इंडिया स्थापित हो चुका है तो इस चरण में एमडीआर की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? क्या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने की जो कीमत है सरकार इससे वो वसूली करना चाहती है?
2: नमस्कार आपको भी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं। तो इसको हम इसी प्रकार से देखें कि 20,700 करोड़ रुपए इसको साल का चलाने का खर्चा आ रहा है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए के अप्रोक्सीमेटली किसी साल 2100 किसी तो 2200 किसी साल 1900 करोड़ रुपए सरकार इसमें कंट्रीब्यूट कर रही थी, एक तरह से सब्सिडी थी ये। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन लेके आया और इस प्रकार ये फैल गया, लोग इसके इतने आदि हो गए और जो इसकी सुविधा थी आप पलक झपकते ही किसी को कहीं से कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, तो उसको आगे अपग्रेड रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए और सबसे बड़ी बात इसको सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसको सस्टेनेबल तभी बना रहेगा अगर इसमें कोई छोटी सी फी लेके और इसमें लोगों को सुविधा जो मिल रही है वो लगातार निरंतर मिलती रहे। दूसरा इसमें डेटा सिक्योरिटी बहुत अच्छा बहुत बड़ा इशू है, कल को आपके सारे बैंक अकाउंट यूपीआई के जरिए जुड़े हुए हैं, हम सब जानते हैं जो आप बैंक अकाउंट ओटीपी के जरिए अप्रूव करते हैं वो बैंक अकाउंट आपका उसमें जुड़ जाता है, लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 अकाउंट्स उस इंटरफेस में जुड़े होते हैं और इसके अलावा जो पेमेंट ऐप है वो ऐप भी अपना पूरा एडमिन, तो हम पेमेंट कर देते हैं, हमारे लिए एक क्यूआर कोड हमने स्कैन किया और हमने पेमेंट कर दिया, पर उसके पीछे एक पूरी प्रणाली एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है। ये इसमें समझने वाली बात है कि खाली आपने क्यूआर कोड डाला और पेमेंट हो गया ये तो ठीक है, आपको तो सुविधा मिल गई, जिसने पेमेंट लेनी थी उसको भी मिल गई, परंतु इसके पीछे जो पूरी प्रणाली चल रही है उसके पीछे खर्च आता है, उसको मेंटेन करना है, उसमें नए नए अपग्रेड लाने हैं, उसमें टेक्नोलॉजी को और आगे ले जाना है। तो ये सही है बात के जो छोटे व्यापारी हैं 2000 से नीचे पे तो है ही नहीं, आपको पता है जो 2000 से नीचे के ट्रांजैक्शन है वो तो पहले की तरह चलते रहेंगे और P2P पर्सन टू पर्सन आपने अपने दोस्त को पेमेंट करी, रिश्तेदार को पेमेंट करी, जो कि कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, यानी कि आप कोई सामान नहीं खरीद रहे हैं, आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हैं, आप आपस में एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, वो अभी भी वैसा ही बना रहेगा चाहे कितना भी अमाउंट हो, सिर्फ वहां लगाया गया है जहां एमडीआर को मर्चेंट डिस्काउंट रेट ऐसा नहीं है कि इस देश में पहली बार आ रहा है, आप अभी क्रेडिट कार्ड यहां सालों से दशकों से चल रहा है, क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हैं तो अभी भी तो आप मर्चेंट डिस्काउंट रेट पे करते हैं, जो व्यापारी आपसे पेमेंट लेता है उसके ऊपर 1% कहीं 1.5% अलग अलग बैंकों का अलग अलग रेट है, अमेरिकन एक्सप्रेस तो मुझे याद है 3-3.5% तक भी कई दफे ले लेता है, तो बकायदा मर्चेंट का वो कटता है। अब मर्चेंट क्यों देता है उसको, मैंने बहुत सारे मर्चेंट से इतने सालों में बात करी कि मैंने कहा भाई आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट क्यों लेते हैं, वो कहते हैं हम इसलिए लेते हैं कि ग्राहक अगर 10 ग्राहक हमारे यहाँ आए और उसमें से 4 ग्राहक के पास क्रेडिट कार्ड है हम उनको मना कर देंगे, हमारे यहाँ तो साहब ग्राहक पीओ ऐसे नहीं है, कार्ड लेने की सुविधा नहीं है, तो वो ग्राहक वापस चले जाएंगे, वो ग्राहक यहाँ नहीं आएंगे, तो उसको सुविधा देने के लिए हम अपने प्रॉफिट पर थोड़े से चार्ज बर्दाश्त कर लेंगे पर हम उस ग्राहक को वापस नहीं जाने देंगे।

0: करेंगे तो ऐसे ही है क्योंकि अब कैश का प्रचलन समाप्त हो चुका है, लोगों को घर से वॉलेट जेब में रखने की आदत नहीं है। जेन जी तो बिना पैसे लिए चलते हैं, बहुत सारे मुझे यंग लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमारी जेब में कोई कैश नहीं है, हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास यूपीआई है, तो हमें कैश की जरूरत ही नहीं है, कहां नहीं चलता है। तो इस बात को देखते हुए जो दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा 315 लाख करोड़ का साल में ट्रांजैक्शन होना, 24,000 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होना, मैं कैलकुलेट कर रहा था कि पर ट्रांजैक्शन इसकी क्या कॉस्ट आती है अभी जिस लेवल पर है, तो उसमें पर ट्रांजैक्शन हमारी 86 पैसे मैंने देखा कॉस्ट आ रही है। अगर 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे, कितना भी बड़ा ट्रांजैक्शन हो, 86 पैसे उसकी कॉस्ट आती है। तो इससे ये जो 0.4% अभी लगा है, पहली बात तो इसमें 300 रुपए पे कैप लगा के बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि 75,000 रुपए से ऊपर का आप कितने का भी ट्रांजैक्शन करें वो 300 ही रहेगा। जैसे जैसे वॉल्यूम आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसको रीलुक किया जाएगा। और अभी भी मैं मानता हूं कि सरकार के पास सुझाव आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आया अभी 15 अक्टूबर से लगना है, हो सकता है कि इतने सारे सुझाव आ रहे हैं, मर्चेंट से छोटे छोटे बात हो रही है, हो सकता है इस पे पुनर्विचार किया जाए, आगे जाके इस 0.4% को कम किया जाए। मैंने एक अपनी तरफ से निजी सुझाव दिया था कि जो बिजनेसेस जिनका मार्जिन कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट जिसको कहते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो वॉल्यूम पे काम करते हैं, 1-2% 3% उनका मार्जिन होता है, उनको लग रहा था कि भाई 0.4% तो हमें बहुत चुभेगा। तो मैंने सुझाव दिया था कि उन व्यापारियों के लिए जहां पर प्योर ट्रेडिंग है और मार्जिन कम है, वहां पर इसको 0.1% या 0.2% आगे कभी हो सकता है सरकार इस पे विचार करे। तो मुझे लगता है इसको एंड ऑफ द रोड नहीं देखना चाहिए और इसको खाली एक नेगेटिव दृष्टि से नहीं देखना चाहिए।
1: जी विकास जी, अब एक व्यवहारिक सवाल पर आते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि MDR का बोझ किसी न किसी रूप में ग्राहकों तक ही पहुंचेगा। सरकार का कहना है कि ग्राहक से MDR नहीं लिया जाएगा, जो दुकानदार है वो MDR का भुगतान करेगा। इस अंतर को हम कैसे समझें?
2: सर कोहली साहब से मैं सहमत हूँ, यदि एक ही बात है कि इसमें जो हाईवेज की अपने एग्जांपल दिया, वो पैसे सरकार को जाती है, वो कंपनी को जाती है, तो यहाँ पैसे जो है ये स्टेक होल्डर के पास जाएगा, PSB बैंक, PPAP और जो कंसर्न बैंक है। और रहा जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात, वो कहा सही कहा कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, सस्टेनेबिलिटी होना बहुत जरूरी है कोई भी प्रोसेस हम करें, और इतने बड़े स्केल पर ये काम आ गया है जैसे मैंने बताया था शुरुआत में। यह सबसे महत्वपूर्ण कंसर्न है व्यवस्था में, MDR मर्चेंट साइड चार्ज है, तो कंज्यूमर में जो कोई भी इसके चार्जेस नहीं लगना चाहिए। और ऐसे जो प्रावधान ऐसा ही है कि इसमें जो मर्चेंट्स हैं ये इसको पास ऑन नहीं करेंगे कस्टमर को, उसमें करने से उनके दो नुकसान हो सकता है। अगर पास ऑन करते हैं तो उनके जो कंपिटिटर है उनके पास लोग चले जाएंगे। आज वो इंडियन एक्सप्रेस में भी एक इंटरव्यू, नेहरू प्लेस का किसी ने कोई सर्वे किया है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, ये दिया है इंटरव्यू के बाद। दूसरा, जो अनबोर्डिंग कराते हैं अपने एप्स, जैसे गूगल है, UPI है, पेफोन है, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ उनको सम बेनिफिट्स देंगे जिसके तहत वो कंपनसेट उसमें हो जाएंगे। और रहा आपके एसेंशियल सर्विसेज में, वहां केवल 5 रुपए में आपके रेलवे टिकट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें केवल 5 रुपए चार्ज रखा गया है, वो भी जो ऐप जिसका है उसी से वसूल किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में तो ये जो है इसको हो सकता है रिकंसिडर हो जाए, जो एसेंशियल सर्विसेज है उसमें पेमेंट और कम हो जाए या नील हो जाए। दूसरा, जो 1 लाख का उन्होंने रखा है सीमा छोटे MDR के लिए, हो सकता है उसको और बढ़ा भी जाए, 3 लाख कर दिया, 4 लाख कर दिया जाए, 1 लाख हो सकता है कम है आज के तारीख में। तो मैं समझता हूँ ये जब शुरुआत होगी 15 अक्टूबर को, हो सकता है 3 महीने के बाद जब ये देखा जाएगा प्रणाली कैसे चल रहा है, ऐसा तो नहीं है फिर लोग फिर ATM में जा रहे हैं, रुपए कार्ड में जा रहे हैं या कैश से भी ट्रांजेक्शन किया है, ये कतई मैं समझता हूँ सरकार इसको कभी एनकरेज नहीं करेगी इस बात को। और इसके हो सकता है उसके कोई हल निकालेंगे, वो सबका थोड़ा और रेशनलाइज हो जाएगा, जैसे उन्होंने कहा ना इट इज नॉट एंड ऑफ द रोड, इट इज नॉट एंड ऑफ द डे। तो मैं समझता हूँ इट इज डायनेमिक सिचुएशन, ये ऐसा ना इसे फ्लेक्सिबल सरकार का रुख रहेगा, मुझे ये मानना।
1: शरद जी, अगर इसी पहलू को थोड़ा सा आगे लेकर चलें, जो सरकार कह रही है कि दुकानदार या जो भी व्यापारी हैं वो 0.4% MDR वहन करेंगे, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब दुकानदार पर 0.4% का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं अपने उत्पाद का जो मूल्य है वो बढ़ा देंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इससे जो है वो कैश पेमेंट एक बार फिर प्रचलन में आएगा और दुकानदार कह सकता है कि जी आप हमें कैश पेमेंट करिए क्योंकि मुझे तो 0.4% वहन करना पड़ेगा। क्या इसको लेकर रेगुलेटरी प्रोटेक्शन भी है कि दुकानदार ऐसा नहीं कह सकते हैं और वो अपने उत्पाद का मूल्य इस अनुसार नहीं बढ़ा सकते हैं?
0: देखिए, इस बारे में भी मैंने सुझाव के रूप में, मैं बहुत सारे इंटरैक्शंस कल जब से आया है ये कर रहा हूँ, मैंने सुझाव के रूप में इसमें भी एक बात रखी। आपने बात ठीक कही क्योंकि जब छोटे व्यापारी जो हैं जिनसे बात की गई उनका ये कहना था

0: कि भाई एक व्यापारी ने तो ये भी शब्द इस्तेमाल किया, ये तेल तो तिलों में से ही निकलता है। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि भाई हम इसको क्यों बेयर करेंगे, हमारा तो मार्जिन कम है, ये ग्राहक को बेयर करना चाहिए, हम नहीं बेयर करेंगे। तो अभी जब क्रेडिट कार्ड यूज होता था एमडीआर के मामले में, तो उसमें दो तरीके से चार्जेस रिकवर कर रहे थे कुछ एक व्यापारी। कुछ तो सीधा कह देते थे कि जी हम क्रेडिट कार्ड ले लेंगे आपसे, पर आपको जो हम उनसे बैंक चार्ज लेता है 2% 1%, वो आपको एडिशनल हमको देना पड़ेगा। तो वो मान लीजिए 10,000 रुपए की चीज है, तो आपसे वो 200-300 रुपए फालतू ले लिए जाते थे कि भाई ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं क्रेडिट कार्ड से करने की, आप हमें फालतू दीजिए। कुछ लोग इसको मान भी जाते थे और दे देते थे। दूसरा तरीका जो व्यापारी अपनाते थे वो ये थे कि वो कीमत बढ़ा देते थे, यानी कि आपसे वो अलग से कोई चार्ज कह के नहीं लेते थे, पर मान लीजिए कोई चीज 10,000 रुपए की है तो पहले से ही उसको 10,200 रुपए उसकी कीमत रख दी, जिससे वो एडिशनल 200 रुपए में जो उनको एमडीआर भुगतान करना पड़ता है वो करे। तो मैंने सुझाव रूप में इसमें रखा, क्योंकि मंशा एनपीसीआई की सरकार की ये नहीं है कि ग्राहकों पर इसका बोझ डाला जाए, पर क्योंकि व्यापारीगण जो है वो इस प्रकार की सोच रहा है कि हमारा मार्जिन कम हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि कंज्यूमर हेल्पलाइन साथ में निकाली जानी चाहिए, जिसमें कि जो भी ग्राहक हो जिसके साथ ऐसा हो रहा है वो तुरंत वहां फोन करके पिक्चर खींच के अपलोड करके डाल सके कि मैंने इस दुकान से इस समय सामान खरीदा और मुझसे एमडीआर के रूप में अलग से वसूली की गई। हालांकि मैं मानता हूं कि जितने दुकानदार हैं वो खुद उपभोक्ता भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, घर जाते हैं, वो भी सामान खरीदते हैं, पर इस बात को लेके आशंका है। और ये आशंका आपने पूछा कि क्या वो कैश का प्रचलन इससे बढ़ेगा, हो सकता है कुछ दुकानदार ये बात कहें। अब देखिए हर दुकान पर 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के, अगर मैं महीने के 2,000 करोड़ ट्रांजैक्शन लगाऊं तो 66 करोड़ रोज के ट्रांजैक्शन हो गए। अब 66 करोड़ ट्रांजैक्शंस पे सरकार मॉनिटरिंग करे कि कौन दुकानदार या कौन भी वेंडर क्या बात कर रहा है ग्राहक से, ये तो संभव नहीं है कि हम हर ट्रांजैक्शन पे नजर रखें कि ग्राहक ने क्या कहा और क्यों कैश पेमेंट की गई, किन हालातों में कैश पेमेंट की गई, क्या ग्राहक को बोला गया या ग्राहक ने अपनी मर्जी से कैश पेमेंट करी या एमडीआर का जिक्र कर गया। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ये मॉनिटरिंग और ये 24 आवर विजिलेंस रखी जाए। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे आगे चलेगा और अगर ऐसा लगा कि कैश टू जीडीपी रेशियो जिसको हम कहते हैं अर्थशास्त्र में वो बढ़ रही है, कैश की डिमांड सडनली एकदम से बढ़ गई है जब से ये आया है, इसका अर्थ ये होगा कि भाई जो जरूरत है कैश की वो ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब लोग जो है या यूपीआई के आपको नंबर्स कम होते दिखाई दिए, जिस रफ्तार से यूपीआई पिछले 10 साल में बढ़ा है आपको वो सडनली ग्रोथ कम होती दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है जैसा मैंने पहले कहा कि इस पे देन देयर विल बी अ रीथॉट एंड देयर विल बी अ रीविजिट कि हम इसको फिर से सोचें कि अगर लोगों को इस प्रकार से परेशानी हो रही है और जो मर्चेंट्स हैं वो पास ऑन कर रहे हैं लोगों को, और इस समय दिक्कत क्या है कि इस समय महंगाई की जो दर है सीपीआई वो 4.82 आई है
1: जी।
0: तो लोगों को थोड़ा सा महंगाई का जो पेन है वो फील हो रहा है, इसमें तो कोई हम इनसे इनकार नहीं सकते, तो ऑथराइज जो आधिकारिक आंकड़े निकल कर आए हैं हमारे सामने ही है। उसमें अगर ये और जुड़ जाता है, ये अगर दुकानदार इस प्रकार करने लगते हैं या वेंडर्स इस प्रकार करने लगते हैं लोगों के ऊपर पास ऑन, मुझे ऐसा एक और मेरा सुझाव था कि दो हिस्सों में वेंडर्स को बांटे जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा जो बड़े वेंडर्स हैं जो बड़ा काम करते हैं वो तो एमडीआर को पास ऑन नहीं करते हैं, बड़े होटल्स हैं, आप कोई लग्जरी का सामान खरीद रहे हैं, महंगा सामान खरीद रहे हैं, वो लोग उन लोगों के लिए 0.4% मायने नहीं रखता क्योंकि उनका मार्जिन जाता है। पर जहां पर मार्जिन कम है वहां पर मुझे लगता है कि एक रिविजिट किया जा सकता है आने वाले समय पर। ये सब कुछ निर्भर करेगा कोलेटेड डेटा पे कि क्या डेटा निकल के आता है इसके इम्प्लीमेंटेशन के 1-2 महीने 3 महीने के अंदर यूपीआई का ओवरऑल डेटा क्या आ रहा है, उस पर निर्भर करेगा। पर सरकार की मंशा ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के ऊपर भार डाला जाए, लोगों से वसूली की जाए, ये कतई ये मंशा नहीं है। जहां तक व्यापारियों की शिकायत है, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा व्यापारियों की भी जो इश्यूज होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा।
1: विकास जी थोड़ी चर्चा छोटे व्यापारियों की भी कर लेते हैं, छोटे दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले, किराना दुकानदार और छोटे कारोबारियों के लिए जो नया फ्रेमवर्क है उसके अनुसार 1,00,000 रुपए तक प्रति महीने यूपीआई क्यूआर रिसिप्ट्स छोटे मर्चेंट्स के लिए जीरो एमडीआर फ्रेमवर्क है। आपसे समझना चाहेंगे कि 1,00,000 की ही सीमा क्यों रखी गई, क्या इससे छोटे और बड़े मर्चेंट के बीच जो डिस्टिंक्शन है वो बेहतर तरीके से होगा, और क्या छोटे मर्चेंट्स के लिए यूपीआई की उपयोगिता अब भी आप समझते हैं बने रहेगी?
2: मैं समझता हूँ इसमें दो बातें हमें देखना चाहिए। एक, 96% रोज जो एक लगभग आपकी 1 बिलियन ट्रांजेक्शन हो रहा है, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उसमें से 96% से ज्यादा भी है आपके 2000 वाले, तो बाकी बचा 4% का सब हम जो जितने भी उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो रिमेनिंग 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन, इसकी बात हम कर रहे हैं। छोटे मर्चेंट्स के लिए ये जो 1,00,000 का उन्होंने सीमा लगाया है, मैं समझता हूँ इसको सरकार को हो सकता है इसको रिव्यू करेंगे और कोई 3-4 लाख का, क्योंकि आजकल 1,00,000 रुपया कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है और रोज उसकी जो है कोई भी सब्जी वाला भी आजकल 500 रुपये में कोई सब्जी खरीद के ले जाता है, तो मैं समझता हूँ अगर उसके पास 20 लोग आ गए तो मैं समझता हूँ 10,000 रुपया दिन में हो गया,

0: तो इस हिसाब से उसका 1 लाख रुपए थोड़ा सा कम लग रहा है, हो सकता है उसको सरकार रिव्यू करेंगे और उसको थोड़ा हम उसकी बढ़ाएंगे सीमा। पर असली बात यह है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एसेंशियल सर्विसेज को उनका लगभग उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ है, आपके रेलवे टिकट है और इंश्योरेंस पेमेंट है, इस तरफ से जो भी एसेंशियल सर्विसेज है 5 रुपए रखा गया है वो भी ऐप वाला से लिया जाएगा। तो मेरे विचार से तो यूपीआई पर एमडीआर की शुरुआत एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल चेंज जरूर है, पर यूपीआई को फ्री रखना बहुत अच्छा था, लेकिन वो एडॉप्शन अभी 56 करोड़ हो गए हैं, आगे चल के और बढ़ेंगे। तो दिस हैज बिकम क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है, साइबर सिक्योरिटी संबंधित समस्याएं आजकल बढ़ रहा है, तो इनोवेशन की आवश्यकता है, इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इन 4% जो आपके ट्रांजेक्शन है उनमें से कुछ रकम आ जाएगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट में सहूलियत रहेगी
1: जी।
0: बाकी यूपीआई का कोई विकल्प नहीं है जहां हम खड़े हैं इस समय, और ये कोई भी आदमी पूरे कैश इकोनॉमी में नहीं जाएंगे। शुरुआती तौर पर थोड़ा सा हमें वॉच करना पड़ेगा कि 2-4 महीने में क्या उसका असर पड़ रहा है, कुछ भ्रम पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ मार्चेंट्स, बट आई थिंक विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months और सो थिंग्स विल स्टेबलाइज और फिर लोग इसको यूज टू हो जाएंगे
1: जी। शरद जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर आपसे राय जानना चाहेंगे कि यूपीआई अब सिर्फ भारत का डोमेस्टिक पेमेंट सिस्टम नहीं रह गया है, हम जानते हैं कि तकरीबन 10 या इससे ज्यादा देशों में यूपीआई चल रहा है, ऐसे में इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट्स और एनआरआईज के लिए जो सुविधाएं हैं, क्या उसमें डोमेस्टिक एमडीआर फ्रेमवर्क का यूपीआई के ग्लोबल एक्सपेंशन पर भी असर पड़ेगा और वो किस तरीके का होगा?
2: मुझे नहीं लगता उस पर फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है जो लोग इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं उनको पहले से आदत है, आपको जो करेंसी कन्वर्जन होता है उसका चार्ज आपको देना पड़ता है, करेंसी कन्वर्जन के अलावा आपको जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो देने पड़ते हैं, और इसमें अगर आपको ये इस प्रकार से देना पड़ रहा है तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई परेशानी आने वाली है। बल्कि इंटरनेशनली जहां ये यूज हो रहा है वहां पर किसी ना किसी प्रकार से वहां की जो सरकार है, जो बैंकिंग प्रणाली है, उन सबको वो करना पड़ेगा। मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं और मान लीजिए आप किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया और डेटा सिक्योरिटी पूरी नहीं है, साइबर सिक्योरिटी पूरी नहीं है, फायरवॉल्स हमारे सिस्टम में पूरी नहीं है, और मान लीजिए किसी व्यक्ति का 100 रुपए ट्रांजेक्शन करते वक्त उसका 10,000 रुपए उसके बैंक से निकल गए, कहीं कोई लीकेज हो गई, आपका जो पासवर्ड है वो लीक हो गया क्योंकि पूरे फायरवॉल्स नहीं थे वहां पर, तो मैं समझता हूँ वो नुकसान बहुत बड़ा है। लोग इसको इस प्रकार से देखें कि अगर थोड़े से पैसे दे के आपको एक सिक्योर्ड, कन्वीनियंट, फास्ट और बहुत ही इजी आपको एक सिस्टम मिल रहा है थोड़ी सी फी पे करके। मुझे लगता है जो दिक्कत आई वो दिक्कत आई क्योंकि 10 साल एक बहुत लंबा पीरियड था, 2016 अगस्त में मुझे याद है लाया गया था, पहले आदि हो गए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें आदत डाल दी, तो आदत जब पड़ जाती है तो आदत को छुड़ाना थोड़ा सा कठिन काम होता है, और 10 साल पुरानी आदत हो तो और कठिन होता है। तो आई थिंक इसीलिए इस पे इतना कंफ्यूजन और इस पे इतना भ्रम वगैरह जो लोगों के दिमाग में फैलाया जा रहा है या कुछ लोग परेशान है इसको लेके, बट आप इसको अगर ब्रॉड माइंडेडली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लेटफॉर्म आपको दिया गया जो दुनिया में अपने किस्म का यूनिक प्लेटफॉर्म था जिसको बाकी देशों ने भी कॉपी कर रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो ये सदा के लिए कैसे ये निःशुल्क रह सकता है, क्योंकि इसमें सारी जो प्रणाली पीछे काम कर रही है एनपीसीआई, हालांकि मैं एनपीसीआई का एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं तो पीछे 32% प्रॉफिट घटा भी था, एक पर्टिकुलर वर्टिकल का देखूं, ओवरऑल ना देखूं, और एनपीसीआई एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, एनपीसीआई को मुनाफे के लिए काम नहीं कर रही, तो एक तरह से सरकार सब्सिडी दे रही है जो लोग वहां काम करते हैं, और लगातार इसमें आईटी का इसमें रोल है। अच्छा, बीच में जो एप्स काम कर रहे हैं आप देखिए, ये भी एक बात आ रही थी कि क्या ये इसमें अमेरिकन एप्स हैं, गूगल पे है, फोन पे है, ज्यादातर उनके पास करीब 45% के आसपास शेयर है पूरे यूपीआई का, तो ये देखते हुए कि उनके पास शेयर है तो भारतीय कंपनी अब इसमें आना चाहती है, तो अगर उनको कुछ इसमें मुनाफा ही नहीं दिखेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट ही नहीं दिखेगा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्लेयर्स फिनटेक के इसके अंदर आए, तो वो लोग क्यों आना चाहेंगे? वो तो नहीं आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ तो वो कहते हैं जी यहाँ तो सब निःशुल्क है, तो हमें अपनी जेब से पैसा लगाना है। तो मुझे लगता है इन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत ब्रॉड माइंडेड अप्रोच है, और यहीं पर जैसे हम जो आज बातचीत कर रहे हैं इसका लक्ष्य भी मैं ये मानता हूं यही है कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना, लोगों को इस बात से अवगत कराना कि ये सदा के लिए फ्री रहने वाली चीज नहीं है। और एक और सर्वे मैं आपको इंटरेस्टिंग इसमें बताऊं, एक लोकल सर्कल्स ग्रुप है उसका 2025 का सर्वे आया
1: जी,
2: और ये उस सर्वे में निकल के आया कि 57% वेंडर्स को यूपीआई आने के बाद अपने बिजनेस में बढ़ोतरी दिखाई दी। तो आई थिंक लोगों की स्पेंडिंग पावर भी इससे बढ़ी है, वो फायदा सारा वेंडर्स को जा रहा है, किसको जा रहा है? वो मर्चेंट्स को फायदा जा रहा है अगर आपका बिजनेस
1: जी, बिल्कुल।
2: तो इसको वेंडर्स इस तरीके से सोचे कि उनके बिजनेस बढ़ा है और साथ में थोड़ी सी उस पर आपको फी देनी पड़ रही
0: है। ना केवल बिजनेस बढ़ा है, इसमें देखिए एज ए बैंकर मैं बताऊंगा, बैंक में जो कोई लोन प्रपोजल प्रस्ताव आता है तो हम कागज मांगते हैं
1: जी,

0: और ये स्वाभाविक है, बैलेंस शीट मांगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मांगेंगे, लेकिन ये जो आपकी वेंडर की जो इसमें ट्रांजेक्शन जो है रिकॉर्ड हो जाता है, इट इज फुल प्रूफ, इसी ट्रांजेक्शन के बेस पे लोगों को लोन भी आजकल दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि वेंडर्स के लिए ना केवल उनका व्यवसाय बढ़ रहा है बल्कि व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए जो औपचारिकता तमाम पूरा करना पड़ता था पहले, ये केवल उनका वो मशीन से दिखा देते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन ये है, विच इज फुल प्रूफ।
1: जी,
0: तो ये भी है, 6.5 करोड़ मार्चेंट्स आपके गिर गए हैं इसमें। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हिंदुस्तान में कि ना केवल उनको रोजगार मिल रहा है बल्कि बढ़ने का अपार उनको स्कोप मिल रहा है।
1: जी, तो श्रोताओं आज की इस चर्चा का सार यही है कि बदलाव जब भी आता है अपने साथ कुछ सवाल और शंकाएं जरूर लाता है, लेकिन जब बात डिजिटल भारत की हो तो आंकड़ों से ज्यादा भरोसा मायने रखता है। आज हमने जाना कि MDR कोई आम नागरिक की जेब पर बोझ नहीं है बल्कि भारत के सबसे बड़े और भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित, तेज और टिकाऊ बनाए रखने की एक सोची समझी कोशिश है। UPI का सफर सिर्फ एक ऐप से पेमेंट करने तक सीमित नहीं था, ये भारत के एक आम नागरिक को देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने की क्रांति थी और ये क्रांति न रुकी है न रुकेगी और ये आगे भी जारी रहेगी। शरद कोहली जी आपका, विकास नारायण मिश्र जी आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे UPI भुगतान में MDR की नई व्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ बैंकर और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और YouTube चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है।

बेगम हाशमी मोहम्मद, तुसी हाजमी मोहम्मद, तैमूर आजमी मोहम्मद, कलीम अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सोडा इस प्रोग्राम दे विच। लो जी, इस तो बाद जिहड़ा मैसेज है पटेल नगर मलोट तो डॉक्टर रमेश कुमार जजूरिया, गीता रानी जजूरिया, गगनदीप जजूरिया, आरजू जजूरिया ते गुड्डू दा मैसेज है सानू इस प्रोग्राम दे विच। लो जी, बहुत सारे मैसेज आ गए हुए ने और हुण वेला हो गया प्रोग्राम दे पहले गीत दा जी। लो जी, सुन दे इस प्रोग्राम दा पहला गीत।

मैसेज श्रोते बहुत प्यार कर रहे हैं सानू मैसेज भेज के। अगले मैसेज आया जी कनेरा मोहल्ला पटियाला तो बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक, वंश बत्ता मैसेज भेज रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा सा इस प्रोग्राम विच। अगे मैसेज आया जी हीरावाली जिला फाजिलका तो पक्के स्रोता, जे तुसी पक्के स्रोते हो तो असी भी पक्के जड़े आरजे हैं और बहुत बहुत प्यार तुसी दे रहे हो सानू। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साडे इस प्रोग्राम दे विच जुड़न वास्ते। तहे दिलों असी स्वागत करते हैं और गल करते हैं जिहड़े सानू मैसेज भेज रहे हैं उनका नाम सुभाष गुदारा हुणी मैसेज कर रहे ने, बिमला, इंदू, पार्वती, हिमांशु बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े साढ़े इस प्रोग्राम दे विच। अगे मैसेज भेज रहे ने सरवन कहिंदे पूरे परिवार वालों सानू मैसेज आया जी। इस तो बाद मैसेज आया संजय, नमन, अपार उन्हां दा मैसेज सानू आ रहा ने जी। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम दे विच। और इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया कहिंदे ने कि नमस्कार जी प्रोग्राम बहुत वधिया कर रहे हो जी, बहुत बहुत धन्नवाद जी थोड़ा। मैसेज आया जी जखौद राजस्थान तो मैसेज कर रहे हैं, शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदर लाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साडे इस प्रोग्राम दे विच। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज कर रहे हैं रणधीर बांगड़, गुरमेजू, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन, मनकीरत, अमनराज बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साडे इस प्रोग्राम। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया हिमांशी, डॉली सिंह, सलिंदर सिंह, नवराज, सिमर, जशन चंडीगढ़ तो मैसेज कर रहे हैं, तुहाडा सारे स्रोतियां का प्यार करने वाले का बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया चिलकाना तो मुहम्मद जरीफ अंसारी, नैन अंसारी, डॉक्टर आमिर अंसारी, दानिश अंसारी और नाजिम अंसारी सानू मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा साडे इस प्रोग्राम दे विच। और नमस्ते कह रहे हैं सानू जी, प्यार भरी सत श्रीकाल, नमस्कार जी, कहने कोई भी गीत सुना दिओ। आदर्श नगर बलौड़ तो गल कर रहे हैं पंजाब तो, राज शर्मा, मीना शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी शर्मा बहुत बहुत स्वागत है शर्मा परिवार का साडे इस प्रोग्राम दे विच। इस तो बाद मैसेज आया पिंड तेजा मोड़ी अंबाला तो मैसेज कर रहे हैं, बंशी लाल संधु, कबीर ते जसबीर संधु सानू मैसेज कर रहे हैं, वरनीत, पवनीत और संधु सारा संधु परिवार सानू मैसेज कर रहे हैं। अगला मैसेज सानू आया मल्होत्रा परिवार वालों, गुरैन दत्ता मल्होत्रा, शीतल, तनवीर, अनुभव, वीर मल्होत्रा, महेंद्र कपूर की आवाज़ में कहते कोई भी गीत सुना

कहते कोई भी गीत लगा दो जी, शमसूल कुमार राही, शहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान सानू मैसेज कर रहे हैं। सारे स्रोतों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। लो जी हुण वेला हो गया साढ़े इस प्रोग्राम के अगले गीत का जी, आनंद माणो जी इस गीत का।

जी हाँ बिल्कुल, होश भी फिके में रहेगी जब नशा ही उल्फत दचाया हो गए। जी हाँ, प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश चल रहा है और थोड़ी फरमाइश सानू व्हाट्सएप पे आ रही है और थोड़े व्हाट्सएप वाले मैसेज ऐसे पढ़ रहे हैं क्योंकि फोन पर आला था प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जरिया व्हाट्सएप पे थोड़ी फरमाइश पूरी की जा रही है, थोड़े मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं। लो जी हुण वारी है अगले मैसेज सामने आए हुए हैं जिहड़े उन्होंने नाम सलाम दुआ कर

चंचल कुंज कर्व प्रवीण विमान चिराग रजत विमान राजेश विमान गगन जी नमस्कार सत श्री अकाल धन्यवाद मेहरबानी आपकी थोड़ी सब तो पहला मेहरबानी जी बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा सा इस प्रोग्राम में जुड़न लिए इस तो बाद जो साडे तक जुड़ चुके हैं साडे जो अगले व्हाट्सएप पर जो मैसेज आया मोहम्मद आसमान अंसारी मोहम्मद कलीम अंसारी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम से जुड़ने लिए और इसके बाद जे आर पाल के पूरा पाल परिवार सराबा नगर जलंधर तो सानू मैसेज कर रहे हैं सराबा नगर जलंधर तो बहुत लागे है साढ़े जे आन आखते हैं सानू साढ़े इस प्रोग्राम प्रोग्राम भी थोड़ा ही है असं भी थोड़े हैं थोड़ा स्वागत करते हैं प्रोग्राम रानी रूपमती का गीत लौट के आ जा मेरे मीत बिल्कुल जी लौट के लियावांगे मीत में भी इस तो बाद सानू जिहड़े मैसेज कर रहे हैं साडे अगले स्रोता सानू मैसेज कर रहे हैं कह रहे हैं कहते कोई भी गीत लगा दो शुक्रिया करते हैं जी

पर मैसेज भेजे रहे हैं मोहम्मद सैयद अवासी, निगहत परवीन अवासी, शाहानवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान, टपूरा अवासी परिवार सब मैसेज कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है साढ़े इस प्रोग्राम जुड़न लिए। मैं एक बेनती करदा कि जे तुसी एक बार मैसेज कर रहे और थोड़ा मैसेज पढ़िया गया तुसी फिर तो थानू मैसेज ना करो, क्योंकि अगले जेड़े साढ़े होर भी बहुत सारे यहो जे स्रोता ने जेड़े सानू मैसेज कर रहे हैं पर उन्होंने मैसेज नहीं पढ़े जा रहे। अगला जेड़ा मैसेज सानू आया है वह आया है वड़िंग खेड़ा पंजाब तो मैसेज करते हैं मिंटू टोमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, कहते कोई भी गीत लगा दू। जी हाँ बिल्कुल लगावांगे गीत। इस तो बाद जेड़ा मैसेज आया नोहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार, हिमांशु सुधार, पवन सुधार, कहते कोई भी गीत सुना दो। और मैसेज आया चुटाला हरियाणा तो मैसेज करते हैं दारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम थोड़ा सारे का। और इस तो बाद जो मैसेज आया सानू नवतेज सिंह बराड़ पिंड कलकला जिला मोगा, मोगे तो सानू मैसेज आया बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा साढ़े इस प्रोग्राम च आने का। और सारे के सारे स्रोते जोड़े सानू मैसेज कर रहे हैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद साढ़े नाल जुड़न लिए। असी सारा एक परिवार और मिलकर इस प्रोग्राम का आनंद माणना है। लो हुण वारी है साढ़े इस अगले गीत की।

जी हाँ बिल्कुल, प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश चल रहा और ये असी थोड़िया फरमाइशा लेनी है। जिमें जिमें थोड़े व्हाट्सएप के मैसेज आए जा रहे हैं और असी थोड़े फरमाइशा पूरी करते रहेंगे जी। जी हाँ, फरमाइशी प्रोग्राम के हूँ जो अगला मैसेज आया है शिवाजी चौंक कटनी तो जो मैसेज आया अनिल तमरकर, अमर तमकर, दिलीप वर्मा, राजू, रजन, रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता, अरुण, संजय, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना मोना, हनी यस, सौम्या ते उना दे मम्मा पापा पूरे दे पूरे परिवार वालों सानू मैसेज आया। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा साडे इस प्रोग्राम ते जुड़न लई। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया, सत श्री अकाल कहिंदे ने इकबाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम ते जुड़न लई। रजिंदर कौर, अमनदीप सिंह हठूर, सिमरजीत कौर पिंड हठूर तो गल कर रहे हैं जिला लुधियाना, जी हाँ बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम च। इस तो बाद जो सू मैसेज आया, मैसेज करते ने MLB रोड ग्वालियर तो सू मैसेज आया सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या खुराना, SK पप्पी, बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम दे विच जुड़न वास्ते। और अगला जिहड़ा मैसेज बहुत खूबसूरत तरीके नाल फुल बूटियां नाल सानू मैसेज भेजा है सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा अदीब, इब्राहिम ते नाजिया दा मैसेज आया, कहिंदे कोई भी गीत सुना दिओ। इस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया पटेल नगर मलौड तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोजिया, गीता राणी, गगनदीप, आरजू ते गुड्डू, मैसेज आ रहे ने सानू। लो जी, इस नाल ही हुण वेला हो गया प्रोग्राम दे अगले गीत दा जी, आनंद माणो जी इस गीत दा।

जी हाँ, हुण तुसी सुन रहे सी बॉर्डर मूवी का एक गीत, और बहुत फेमस गीत सी। हुण भी गीत ये जिंदा है, बहुत प्यारा गीत है। इस तो बाद जिहड़े सानू मैसेज कर रहे ने, हुण वारी है उन्हां दे मैसेज पढ़न दी। मैसेज आया सानू सहारनपुर तो, मैसेज आया जनकपुरी तो। जॉन रोजी पर्ल ते विलिस सानू मैसेज कर देने, कहिंदे गीत लगा देना कोई भी। उस तो बाद जिहड़ा मैसेज आया सदर बाजार कुरावली तो, मैसेज आया अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा जी। बहुत सारा प्यार आ रहा जी सानू सरोतियां वालों। इस तो बाद हुण वारी है अगले गीत दी, आनंद माणो जी इस गीत दा।

जी हाँ, प्रोग्राम तुहाडी फरमाइश चल रहा और बहुत ज़्यादा समान ही रह गया साडे कोल, सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट है। 8 मिनट दे विच तुहाडियां फरमाइशां जिहड़ियां आ गईआं और असीं पूरियां करदे हां। लो जी, मैसेज कर रहे ने साडे अगले स्रोता, सानू मैसेज कर रहे ने, कह रहे कि फिल्म जनून गीत दे बोल ने मिलते मिलते हसी वादियों में। जी हाँ, बिल्कुल गीत लगावांगे जी। मैसेज करदे ने जिला अंबाला तो, हरियाणा तो गल कर रहे ने, राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन ते पूरे परिवार वालों मैसेज है जी। सत श्री अकाल, बठिंडे तो सानू मैसेज भेज रहे ने रविंदर सिंह, गगनदीप कौर, जसमीन कौर, गुरलीन कौर, शिंदरपाल, कहते कोई भी गीत सुनाओ जी, बिल्कुल सुनावांगे जी गीत भी। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तनवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिका, बलवीर सिंह हुणी मैसेज कर रहे ने जी। हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारे दा साडे इस प्रोग्राम च जुड़न वास्ते। लो जी, आनंद माणो जी इस गीत का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर पर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में 5वें सेमीकॉन इंडिया का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन में सहयोग बढ़ाने, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने को वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है।

0: गृह मंत्रालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार यह कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब में मक्का के नजदीक ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सऊदी अरब पर हमले में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इस समझौते से न्यूजीलैंड से भारत को होने वाले 57% निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके पूरी तरह से लागू होने के बाद 95% निर्यात पर शुल्क हटा दिए जाएंगे या काफी कम हो जाएंगे। सभी भारतीय वस्तुओं को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और खासकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि यह पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of close collaboration between the government and the semiconductor industry in shaping India's technology future. Mr. Modi stated this while chairing the Semiconductor Roundtable with leading global CEOs in New Delhi today. Prime Minister called for greater industry participation in scaling, innovation and emerging technologies such as artificial intelligence, AI and quantum computing. Mr. Modi reiterated the government's commitment to a predictable and responsive policy environment while emphasizing that policies must evolve in line with technological advancements and industry requirements. The roundtable was held ahead of the inauguration of the 5th edition of Semicon India by Prime Minister Modi in New Delhi tomorrow. The Union Cabinet has approved the increase in the wage ceiling for mandatory coverage under the Employees Provident Fund organization from 15,000 rupees to 25,000 rupees per month. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement while addressing the media after the Cabinet meeting in New Delhi today. He said the decision is expected to benefit over 51 lakh additional employees. Mr. Vaishnaw said the revised wage ceiling will come into effect from Vishwakarma Jayanti tomorrow.
2: 25,000 rupees per month salary will be the new ceiling for PF deductions. इससे करीब 51 lakh employees को इसका benefit मिलेगा, जो कि 15 to 25 वाले band में थे, they will start getting covered in the new PF rules. भारत सरकार का इस पे estimated government expenditure रहेगा about 11,339 crore rupees every year.
1: The government has declared Pakistan-based Shehzad Bhatti Network as a terrorist organization under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA. The terrorist group is involved in smuggling of arms, explosives and narcotics across borders, apart from inciting youths and petty criminals into terrorism. The Union Home Ministry has issued a gazette notification in this regard. A special NIA court at Jagdalpur in Chhattisgarh's Bastar district today sentenced all 10 convicts to death in the 2013 Jhelum Valley Maoist attack case. The convicts have been given 30 days to appeal against the verdict in the High Court. On 25th of May in 2013, 27 people, including several senior Congress leaders, were killed and 30

0: दोबारा भी कॉल करोगे। बिट्टू जी पसंद है कि सुन लो, पहला कुछ व्हाट्सएप मैसेज फटाफट शामिल कर लेने हैं जी। वड़िंगखेड़ा पंजाब तो सानू मैसेज भेज रहे हैं मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, कहते कोई भी गीत सुना दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजने लिए। पिंड थाना बठिंडा तो हरजिंदर शिंदा, जसवीर जस्सी सीता ते कीता। बठिंडा तो ही रविंदर सिंह गगनदीप कौर जसमीन कौर मुरलीन कौर सिंदरपाल, कहते कोई भी पंजाबी गीत सुना दो। पंजाबी गीतों का फरमाइश प्रोग्राम, अपनी पसंद का कोई भी पंजाबी गीत सुना दे। इस तरह लिखे सन भेज रहे शिवाजी चौंक कटनी तो अनिल अमर दिलीप वर्मा राजू रजन संजीव वर्मा विपिन गुप्ता अरुण संजय सोनी पवन यादव सुनील लालू सोना मोना हनी यस सौम्या तो उनके मम्मी पापा, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंडी हाजरी मोड़ तो नथू राम शर्मा ललित शर्मा इंदिरा शर्मा सुरेश शर्मा, कहते कोई भी पंजाबी गीत सुना दो। मैसेज मिले जी पटेल नगर मलोक तो रमेश कुमार जजोरिया गीता रानी जजोरिया गगनदीप आरजू ते कुटू। एमएसए पेरे ने किशन लाल मिश्री देवी मनोज कुमार पुष्पा राणी शैलेंद्र कुमार पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डब वाली, एक दिन कोई भी पंजाबी गीत सानू सुनवा दिओ। इन्हां सब दी रली मिली फरमाइश है और साढ़े बिट्टू जी इन प्यारे स्रोता कह रहे हैं सुनना चाहते हैं सरदूल सिकंदर का गीत अमर नूर के नाल। लो जी एक युगल गीत सुनते हैं तो इंजॉय करो जी साढ़े बिट्टू जी की पसंद प्रोग्राम चल रहा जी सौगात।
1: एक गभरू ते मुटियार दे बड़े चिरां प्यार पिछू एक दिन ऐसा आंदा है कि गभरू नूं घर दी बहुत वड्डी मजबूरी करके विआह किते होर करवाउणा पैंदा है ते मुटियार उहदी खुशी समझ के सबर दा घुट भर लैंदी है ते विआह तों बाद अचानक दोनां दी मुलाकात हुंदी है। गभरू मुटियार नूं कहिंदा है कि जो हो गया उहनूं सुपना समझ के भुल जा तूं किते विआह करवा लै। तां मुटियार कहिंदी है ना वे सजणा इन्नी बददुआ ना दे सारे किते तेरे वर्गे हो गए।

0: ਹੈਲੋ।
1: हेलो
0: ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ, ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ?
1: सर नमस्कार जी, मैं कांता वर्मा बोल रही जी,
0: कांता वर्मा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोग्राम सुगात में। क्या हाल है आपके?
1: बहुत बढ़िया है जी।
0: मौसम कैसा है हिमाचल का?
1: मौसम बस कल तो बारिश हुई थी जी, आज अभी बादल है जी।
0: मतलब पहले वाली गर्मी अब नहीं है, मौसम ठीक हो गया है ना?
1: हाँ जी, ठंडा हो गया मौसम ना।
0: ठीक है ठीक है।
1: हाँ जी, जैसे कल संक्रांत है ना, तो कल से ठंडा हो जाना।
0: ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है जी। आज कौन

0: गीत सुनाएंगे आप हमें? पहले बताइए आप गीत सबको कौन सा सुनवाना चाहेंगे प्रोग्राम में?
1: आप गुरदास मान की आवाज में सुना देना सर जी अपनी पसंद से बढ़िया सा।
0: ठीक है जी, अब आप सुनिए क्या गीत सुनाना चाहते हैं।
1: भेड़ा तेरिया हो भेड़ा तेरिया हो चुगे दिया फाट नील माँ पढ़नी हो तेरे नैनारी किताब नील माँ बिच नाड़ुए हो मेरा हो घराट नील माँ। हाँ जी
0: आज में बहुत अच्छा गीत कांता वर्मा जी आपने सुनाया, कॉल करने के लिए शुक्रिया। अब आपकी पसंद का गीत गुरदास मान की आवाज़ में सुनते हैं जी, धन्यवाद।

व्हाट्सएप मैसेज सनी मिलिया जी, कृष्णा पार्क दिल्ली तो, सुखविंदर सिंह जौड़ा, स्वीटी दीवाना, गुरुवंत सिंह जौड़ा, यह सुनना चाहते हैं जी हंसा हंसा गाया हुआ कोई भी पंजाबी गीत। तो आओ जी फिर पहला सुनते हैं हदीके का गाया हुआ एक पंजाबी गीत, उस तो बाद सुनेंगे हंसा हंसा गाया हुआ एक पंजाबी गीत।

व्हाट्सएप मैसेज सनम मिलिया जी कृष्णा पार्क दिल्ली तो सुखविंदर सिंह जौड़ा स्वीटी दीवाना गुरुवंत सिंह जौड़ा यह सुनना चाहते हैं जी हंसराज हंस का गाया हुआ कोई भी पंजाबी गीत तो आओ जी फिर पहला सुनते हैं हदीके का गाया हुआ एक पंजाबी गीत उस तो बाद सुनेंगे हंसराज हंस का गाया हुआ एक पंजाबी गीत

एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। लो जी अगला व्हाट्सएप मैसेज सानू भेज रही ने अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा, प्रतीक्षा संधु ते मैक्स। कहते हैं जी कोई भी सानू पंजाबी गीत सुना दिओ, बहुत बहुत शुक्रिया। रहन वाले ने जी कुलराम रोड हरगोबिंद नगर नवां शहर दे, इन्हां दा बहुत बहुत स्वागत है, नाल नाल शुक्रिया जी। लकी हनुमानगढ़ राजस्थान तो मैसेज भेज रहे हैं, इन्हां दे नाल ने एकम, त्रिशा, अर्शिता ते आवेश। यह सुनना चाहते हैं सुरजीत पिंदरखे का कोई भी पंजाबी गीत। लो जी इन्हां दी पसंद दा गीत इन्हां तक सुनना पहुंचाने जी, आओ इंजॉय करिए इस गीत नूं।

बहुत ही प्यारा गीत सानू सुनवाया तरसेम जी ने और उम्मीद करते हैं तुम भी इस गीत का पूरा पूरा आनंद माणिया होगा। अगला खत सानू भेज रहे ने चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल संगीता जिंदल हंसमुख जिंदल यह सुनना चाहते हैं एमी विरक का कोई भी पंजाबी गीत। लो जी प्रोग्राम की अगली पेशकश तुहाडे तक पहुँच रही है जी। लो जी प्रोग्राम की तारीफ कर रहे ने प्रेम कुमार रहेजा सरांदी बाजार पटियाला तो कहते अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हो तो मैं सारा प्रोग्राम सुन के सुनूंगा। प्रेम जी बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। अगर तुझको खास किस सुनना चाहते हो जरूर मैसेज करो जी।

प्रॉब्लम चल रही जी सुगात सर्किट के मुताबिक इसलिए रात के 12:43 हुए ने, जिस तरह कि मैं तुम्हें शुरू शुरू दस्या सी प्रोग्राम दे कि साढ़ा सात सवेरे 1 बजे तक रहेगा। अगर तुम भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हो तो सू फटाफट कॉल करो जी, साढ़ा नंबर है 0181-3342-171 और वट्सअप है 94-56-36-077। अगला मैसेज सू मिल रहा जी अनारकली बाजार जगराओं तो, भेजने सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा ते बहुत सारे साथी। यह सुनना चाहते हैं

पुराना गीत कोठी। इस गीत तो लंबे मैंने काफ़ी मुशक्कत करनी पई क्योंकि महेंद्र कपूर जी की आवाज़ों के कोठी गीत युगल गीत है अनुराधा पौडवाल जी के नाल। तो अगर तुम फरमैश भेज दौ तो कोशिश करो कि प्रॉपरली सही तरीके जरा सिंगर का नाम दसो लभन थोड़ी आसानी होंगी है। ठीक है जी, थोड़ी पसंद का गीत अनुराधा पौडवाल और महेंद्र कपूर की आवाज़ों युगल गीत तक पहुँच रहा जी। मैसेज लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

इस गीत की फरमाइश सानू भेजी जी नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान तो साढ़े साथी ने जी सुरन नरेंद्र सुधार मनोज सुधार हिमांशु सुधार बहुत बहुत शुक्रिया जी मैसेज भेजने के लिए आओ आनंद मानते हैं गुरु नानक पुलर के गाए हुए इस पंजाबी गीत का।

0: दीवाजदी कड़ा वजदा कड़ोली वजदी कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी
1: सुन मुंडिया
0: कित गागर वजदी।

ਜੋਰ ਲੜਦਾ ਦਰਾਣੀ ਲੜਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ।

0: साचे ते पवना पया, पवना ते जल होए, जल ते त्रिभुवन साजिया, कटकट जोत समोए। ये फरमान अकाल पुरख दी महिमा बयान करता है। सृष्टि दे आरंभ विच कुछ भी नहीं सी, अरबद नरबद तंदुकारा वाली अवस्था सी। अकाल पुरख अपनी अफूर अवस्था विच बैठा होया सी, ना तरत सी, ना आकाश सी, ते ना ही पताल सी, ना दिन सी, ना रात सी, ना चंद्रमा सी, ते ना सूरज सी। बस अकाल पुरख अपनी सुन्न अवस्था विच, भाव शून्य अवस्था विच आसन लाई बैठा सी। अकाल पुरख दी उत्पत्ति तो बाद सच होंद विच आया, उपरंत तिन्ने पवन धरती आकाश ते पताल साजे गए। सृष्टि दी रचना, खंडा ब्रह्मंडा दी रचना हुई, कुदरत दी रचना हुई। सृष्टि दे जीव रचे गए, जीव जंत वनस्पत आदि दी रचना हो गई। अकाल पुरख दी सर्वोत्तम कृत अर्थात मनुखा जून होंद विच आई। समय दे परिवर्तन दे नाल नाल मनुखी सुभा दे परिवर्तन दी गल मन्नी जांदी है, क्योंकि चंद सूरज ग्रहां तारियां नक्षत्रां दे परिवर्तन दा मनुखी सुभा उपर डूंगा प्रभाव पैंदा है। जदों सूरज एक रास तों दूजी रास विच जांदा है तां ओ क्रांति आउंदी है जिसनूं संक्रांति कहा जांदा है, ते जदों चंद्रमा पूरन हुंदा है तां उसनूं पूरन मास कहा जांदा है। गुरबाणी विच रुत्तां दे परिवर्तन दी गल अते समें दे परिवर्तन दे नाल मनुखी सुभा उपर इस दे असर दी बात कीती गई है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने तुखारी राग विच श्री बारह मां दी रचना कीती, ते साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी ने मांज राग विच श्री बारह मां दी रचना कीती कि किस तरह उस अकाल पुरख दे हुकम विच हर एक परिवर्तन नूं सुखावा बनाउणा है। सरवण करदे हां श्री बारह मां मांज विचों अज आरंभ होए महीने दा पाठ ते पाठ दी व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती है ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरा।
1: असुन प्रेम उमाहड़ा क्यों मिलिए हर जाए, मन तन प्यास दर्शन घणी कोई आण मिलावे माए। संत सहाई प्रेम के हों तिनके लागा पाए, विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी नाई जाए। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आघाए, आप त्याग बिनती करें

प्रभ बिन दूजा को नहीं, नानक हर शरण आए। असु सुखी वसंदयां, जिना मया हर राय। असु सुखी वसंदयां, जिना मया हर राय। असू दे महीने दा संदेश।

उपदेश ये ठंडी मिठी रुत्त भादों का दुचित्तापन खत्म हो गया है। ठंडी मिठी रुत्त प्रेम ठंडा है, प्रेम मिठा है, प्रेम विच गरमाश नहीं भाव, प्रेम विच जलन नहीं, दूजे नू जलाना नहीं, ईर्षा नहीं, द्वेष नहीं, तृष्णा नहीं। इस वास्ते प्रेम ठंडा है, प्रेम रसदायक है। जिसनू रोज़ रोज़ याद करिए, याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। जैसे भोजन छक लिए, छकया हुआ भोजन कुछ समय बाद पच के रस बन के खून बन जाता है। जो रगां दे गर्दिश करता है, शरीर दे जो गर्दिश करता है खून, वो पहले भोजन सी। खादा हुआ भोजन कुछ समय बाद पच के रस बन के खून बन जाता है और नसां दे दौड़ता है। बार बार जिसनू याद करिए, जिसका सिमरन करिए, जिसनू चेते करिए, एक दिन सिमरन ही प्रेम बन जाता है, एक दिन याद ही प्यार बन जाती है। और फिर प्यार दा धागा फिर टुटदा ने, हर वक्त वो प्रेम दी तार अंदर बनी रहती है। अस्सू दा महीना उस जीव स्त्री दा समझ लो जिस दे अंदर प्रेम दी उमंग पैदा हो गई है, तरंग पैदा हो गई है। ये इस तरह है जिवें खादा होया भोजन वाकई खून बन गया। कई दफ़ा कई लोग खांदे पींदे ते बहुत ने, पर खून नहीं बनता। और ऐसे वैद आचार्य भी कहिंदे ने शरीर विच नुक्स है कि खांदा पींदा सब कुछ है पर खून नहीं बनता। कई लोग सत्संग करदे ने, बाणी पढ़दे ने, जप तप करदे ने, पर उन्हां दे अंदर प्यार नहीं पैदा हुंदा, प्रेम नहीं पैदा हुंदा। लाजमी कुछ मानसिक खराबी है, शरीर विच कुछ नुक्स होवे तो खादा होया भोजन खून नहीं बनता। मन विच प्रबल नुक्स होवे तो कीता होया जप, कीता होया तप प्रेम नहीं बनता। इलाज है शरीर नू ठीक रखण दा, ताकि खादा होया भोजन खून बन सके। सत्संग इस वास्ते है कि मन विचों सारियां खराबियां, सारे विकार निकलन, ताकि कीता होया जप, कीती हुई याद प्रेम बन सके। और प्रेम अस्सू दा महीना है, ठंडा मिठा महीना है। अस्सुन प्रेम उमाहड़ा, क्यों मिलिए हर जाए। अस्सू दा महीना मन विच चाव पैदा हो गए, उमंग पैदा हो गई, हरी किवें मिले, हरी किवें मिले। जिस दे लई प्यार पैदा हो जाए, बार बार मन उसनू मिलन नू लोचदा है, उहदे दर्शना नू लोचदा है। मन तन प्यास दर्शन घणी, कोई आण मिलावे माए। हुण तन मन विच सिर्फ इक्को ही दर्शना दी प्यास है और बहुत है, हे माँ कोई भी आण के मिलावे। सुभावक माँ दा रिश्ता ही ऐसा है, कोई गहरी चोट लग जाए मुँह माँ निकल जाता है, कोई गहरी खुशी प्राप्त हो जाए हृदय च होक माँ दी निकलती है। कोई इस ढंग दा ये संबंध है तो प्रेम दी इतनी वड्डी घटना घट जाए ते माँ चेते ना आवे, ऐसा हो नहीं सकदा, ऐसा हो नहीं सकदा। हे माँ कोई आण के मिलावे, जिस दे लई इतना प्रेम पैदा हो गया, दर्शना दी चाहत पैदा हो गई है। संत सहाई प्रेम के, औतन के लागां पाए। प्रेमियां दे मददगार ने कौन? गुरु। प्रेमियां दे मददगार ने कौन? संत जन। मैं उन्हां दे पैरी पैना, क्यों? क्यों मेरे प्रेम नू कोई दिशा दे सकदे ने, वो मेरे प्रेम नू मार्ग दे सकदे ने, ताकि मेरा प्रेम परमात्मा दे दर्शन कराण दे सफल हो सके, सहायक हो सके। इतनी गल तो स्पष्ट है कि प्रेम तो बिना हिरदे दी शुद्धि नहीं होंदी। बड़े तो बड़े दानियां दे मन भी मैले रहिंदे ने, बड़े तो बड़े ज्ञानियां दे मन भी मैले रहिंदे ने, वड्डी तो वड्डी सेवा करन वालियां दे चित भी कठोर बने रहिंदे ने। लेकिन जिस हिरदे च प्रेम पैदा हो गया और जिस दे प्रति प्रेम पैदा हो गया है, वह हिरदा शुद्ध हो जाता है, वह हिरदा पावन हो जाता है। जिस नाल प्रेम है उस नाल छल करना बहुत औखा है, जिस नाल प्रेम है उसनों धोखा देना बहुत औखा है, जिस नाल प्रेम है उस नाल कपट करना बड़ा औखा है। तो परमात्मा का प्रेम तो समूह ब्रह्मंड नाल प्रेम है, पूर्ण।

पूरन प्रेम प्रतीत सजे ब्रत गोर मणि मठ भूल न माने। ओ खालिस है, ओ शुद्ध है, ओ पावन है, जिस दे अंदर पूर्ण ब्रह्मंड दा प्रेम पैदा हो गया, ओ ब्रह्मंड दे प्रति दयालु हो जाएगा, ओ ब्रह्मंड दे प्रति सेवा भाव नाल देखेगा, ओ ब्रह्मंड दे किसे नाल भी छल ते कपट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उस दे अंदर प्रेम पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया। प्रेम ही हिरदे नु शुद्ध कर देंदा है, पावन कर देंदा है, और प्रेम दी इस सुरत नु, प्रेम दे इस धागे नु संत जन

0: छिनालवी छल ते कपट नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके अंदर प्रेम पैदा हो गया है, प्यार पैदा हो गया है। प्रेम ही हिरदे नु शुद्ध कर देंदा है, पावन कर देंदा है। और प्रेम दी इस सुरत नु, प्रेम दे इस धागे नु संत जन परमात्मा तक लै जाण विच सहायक ने, मददगार ने। विण प्रभ क्यों सुख पाईए दूजी ना ही जाए। परमात्मा तो बिना परम आनंद की प्राप्ति कितों होवे, दूजी होर कोई थां ही नहीं है। जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। प्रेम एक ऐसा रस है जिन्हां ने भी चख लिया उन्हां दे हिरदे विच भुख नहीं रहिंदी, सदा हिरदे तृप्त रहिंदे ने, रजे हुए रहिंदे ने। आप त्याग बिनती करें लेहु प्रभु लड़ लाए। प्रेम नाल भिजे हिरदे किस तरह जीवदे ने। इस तरह दियां जीव इस्त्रियां हर वक्त बेनती विच जीवदियां ने, अरदास ते जोरी विच जीवदियां ने। ए प्रभु तू अपने लड़ ला ले, अपने नाल जोड़ ले। जो हर कंत मिलाइया से विछड़ कते न जाए। जिन्हां नूं परिपूर्ण परमात्मा ने अपने नाल मिला लिया, जोड़ लिया, वह फिर कदी बिछड़दे नहीं। संसार विच मित्र मिले है बिछड़ सकता है, पुत्र मिले है बिछड़ जाएगा, परिवार मिले है बिछड़ जाएगा, धन संपदा मिली है बिछड़ जाएगी, सब कुछ बिछड़ जाता है। पर मिलिया हो ही ना बिछड़े, जे मिलिया हो जे कृपा परमात्मा मिल जाए, प्रभु मिल जाए, फिर विछोड़ा है ही नहीं। से विछड़ कते ना जाए। प्रभु विण दूजा को नहीं नानक हर सरनाए। जो मिल के कदी विछड़े ना, परमात्मा तो बिना होर कोई भी नहीं, होर कोई भी नहीं। असु सुखी वसंदया जिना मया हर राय। असु दा महीना उना लई सुखमई होंदा है। जिन्हां दे मन असु दे महीने दी तरह ने, वह सुखमई ने, और उना दे ते हर वक्त प्रभु दी कृपा बनी रहिंदी है, हर वक्त परमात्मा दी मेहर बनी रहिंदी है। वह बख्शिश दे पात्र बने रहिंदे ने, प्रेम नाल तृप्त रहिंदे ने, प्रेम नाल ठंडे रहिंदे ने, और सरबत दे भले विच जीवदे ने, सरबत दा भला मंगदे ही रहिंदे।
1: आप जी सरवण कर रहे सो श्री बारहवां मांज विचों इस महीने दा पाठ ते पाठ दी व्याख्या। पाठ ते व्याख्या कीती सी ज्ञानी संत सिंह मस्कीन होरां। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी अपने उचारित एक शब्द विच फरमाउंदे ने कि सच्चे सुख दी प्राप्ति वास्ते उस प्रभु दा नाम जपना चाहिदा है। जिहड़े वडभागे प्राणी उस प्रभु दा नाम जपदे ने, उना उत्ते ग्रहां दा कोई असर नहीं हुंदा, क्योंकि उना नूं सब तो उत्तम प्रभु दा नाम प्राप्त हो जांदा है। ओ फिर शगन ते अपशगन दी विचार भी नहीं करदे, बस उस अकाल पुरख दी कीर्ति ही करदे ने ते आनंद विच विचरदे ने। सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। सरवण करदे हां भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, गरह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन किया होया ये शब्द। अकाल पुरख प्रभु का नाम सुखदायक अते कल्याणकारी है, इसे करके ता हिदायत है। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो, नाम गोबिंद का सदा लीजै। मिटह कमाणे पाप चिराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै। पर इस नाम नू ता ही जपया जा सकदा है जिकर पखंड आदि छड़ के मन कपट तो रहत हो जावे। ता ही निता प्रति उस अकाल पुरख प्रभु दा नाम लिया जा सकदा है। रामकली कर दूजा सुरलेख अधीन उचारे गए शब्द विच भगत नामदेव जी इस तत् की प्रोड़ता करते ने। सुनदे हां जसजीत कौर होरां पासों वार्ता। हर का नाम नित नितह लीजै,
1: ए पंक्ति रामकली राग विच भगत नामदेव जी दे मुखार बिन तो उच्चारण कीती जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पवित्र रंग 973 ते सुभाए मान है। आज तो 725 साल पहले दे समय दे आम लोकां दियां नजरां विच

से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। इस शब्द गायन कीता सी पाई भगवंत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

कौड़ी बिन सतगुरु किने ना पाए, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु चाप रखे अनुकार प्रगटा सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया। उत्तम है विचार है जिन सच्चे सिओ चित लाया, जग जीवन दाता पाया, जग जीवन।

0: निभासी।
1: श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जिते बरस बरस, पढ़िए जिते मास, पढ़िए जिते आरजा, पढ़िए जिते सास। नानक लेखे

0: empate.
1: सवैये महले पहले के एक ओंकार सत गुर प्रसाद एक मन पुरख ते आए।

भगत पाए रस जानो, कभी कल सो जस गावो गुरु नानक।

अपरंपर अवतार भरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठार रग ते।

ਸੋ ਜਥ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਕਭੀ ਕਾਲ।

गुण गावे रविदास, भगत जय दे तरलोचन। नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन, भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने। योग तेहान गुर ज्ञान, बिना प्रभ अवर न जान। सुख देओ परीखत गुण रवे, गौतम रिख जस गायो। कब कल सुजस नानक गोर, नित नव तन जग छायो। सुख देओ परीखत गुण रवे, गौतम रिख जस गायो। कब कल

0: जिन वेद व्याकरण विचार ब्रह्मा गुण उच्चर जिन कुम सब श्रेष्ठ सवारी ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कल सुजस नानक गुरु सहज जोग जिन मान्यो ब्रह्मांड खंड पूर्ण ब्रह्म गुण निर्गुण सम जान्यो जप कल सुजस नानक गुरु सहज जोग जिन मान्यो।
1: गुण गावे नवनाथ तन गुर साज समायो मां दादा गुण रवे जैन चक्कर वै कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो पार्थर गुण उच्चरे सदा गुर संग रहंतो दूर बापुर रंगरे गुर नानक जस गायो कब काल सजस नानक गुर कट कट सहज सुमायो कब काल सजस नानक गुर कट कट सहज सुमायो।
2: सच सभा दी बाण सच सच्चे पै धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप अपुल ना भुल्लो रतन नाम आपार कीम ना पवै अमुल्लो जे कृपाल होयो गोविंद सर्व सुख

जाको मन ध्यान तारे फेरत सकल जोग कबहु को पावे आत्म पर गास को वेद बाणी सहित बेरंच जस गावे जाको सेव मन गह ना तो जात का बलास को जाको जोगी जाति सिद्ध साधक अनेक ताप जटा झूठ भेख किए फेरत उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए।

भूले सोते दारा सेओ प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत।

जित प्रभु आवे चित, जित देन विसरै पार ब्रह्म, फिट पलेरी रुत्त।

लाटंग दो धोती वस्त्र कपाटंग जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफो कुट निश्चो कर्मं कहो नानक निश्चो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी।